ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 अगस्त 2026 सुबह के 5:54 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

लीजिए पेश अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। आज उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की यह चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में आयोजित उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन उनके 3 दिवसीय दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। 2400 लोग अभी भी लापता हैं। 4400 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया गया है। नेपाल सरकार ने संकट की घड़ी में तत्काल मदद के लिए भारत की सराहना की। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल पनबिजली परियोजना की सुरंग का जायजा लिया। ओडिशा में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना। यूक्रेन के बूचा जिले में रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी कामगारों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों से घुटने की चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं और भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय अनुसार मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका साथी आपका हौसला है, हिम्मत है, धैर्य है। भाई जीवन के संघर्ष में कितने भी बड़े या मुश्किलों का रास्ता कितना भी लंबा हो, लेकिन अगर आपके पास ये तीन हथियार है ना, तो आपकी जीत पक्की है। बस याद रखिए, झरनों से इतना मधुर संगीत कभी ना सुनाई देता अगर राहों में उनके पत्थर ना होते। FM रेनबो स्टेशन ऑफ द नेशन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, मेरा नाम पूजा शुक्ला।

अगले पल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, लेकिन यही जो इंतजार है ना ये कमाल है। हर घड़ी बढ़ते पल के साथ, एक पल खुशी तो अगले पल मायूसी, लेकिन ये समय है जो रुकता नहीं, थमता नहीं, बस चलता रहता है।

बढ़ता रहता है और इसी चक्र को जीवन कहते हैं। अब इस जीवन चक्र में आप उलझते हैं या साथ साथ आगे बढ़ते हैं, ये तय आपको करना है। लेकिन हम और आप FM रेनबो पर दिल से दिल के कनेक्शन के साथ लगातार आगे बढ़ते हैं और ये रिश्ता हमेशा हमेशा यूं ही बना रहेगा। फिलहाल 6:16 एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

और FM रेनबो पर दिल से दिल के कनेक्शन के माध्यम से हमें आपसे ये कहना है कि अगर खुद से आपको प्यार है तो अपने सपनों का कारोबार खुद कीजिए, सपने देखिए और किस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है ये खुद तय कीजिए। और ये तय है कि चुनौतियां जरूर जरूर जरूर आएंगी, लेकिन पुनः प्रयास करने से कभी ना घबराइए, क्योंकि अगली बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। बस ये अनुभव है जो आपसे साझा कर रही हूँ। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपका अपना सुप्रभात। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

0: आप जैसा वाकई कोई नहीं। जिंदगी की ताल से बस ताल मिलाकर चलिए। मुश्किल तो सच है जिंदगी का, बस ये सोचिए कि आने दो, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा, ये ठान के चलता हूँ। बस सोचते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका दिन बेहतरीन गुजरे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब प्रस्तुत है एफएम रेनबो पर प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के अष्टम अध्याय पर, जहां पर महाराज परीक्षित सुखदेव जी से ऐसा उपदेश चाह रहे हैं जिससे अगर देह में कोई आसक्ति उनकी रह गई है तो वो भी चली जाए और वो अनासक्त होकर के भगवान के चरणों में मन लगाकर अपने उस देह रूपी कलेवर को त्याग कर सकें। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि प्रभु की कथाओं का अगर कोई, उनकी लीलाओं का अगर कोई नित्य श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो उसे और कोई चेष्टा नहीं करनी होती, बहुत जल्दी ही भगवान उसके हृदय में उदित हो जाते हैं। और ये देखिए कितना शुभ समाचार है, भगवान अपनी लीलाओं को इस धराधाम पर इसलिए प्रकट करते हैं ताकि उनके बारे में सुनकर जीव उनमें अनुरक्त हो जाए, जीव आकर्षित हो जाए और भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने लगे, कीर्तन करने लगे। भगवान अपनी लीलाओं को गोलोक धाम से इस प्रपंच में लाकर अवतरित करते हैं। प्रपंच में ये माया का संसार है, यहां सब कुछ जड़ है, यहां कुछ भी स्थाई नहीं है और यहां के जो जीव हैं बहुत दुख पाते हैं, बहुत दुख, बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है और शरीर का दुख उनको भी दुख देता है। कोई अपना मर जाता है तो बड़ा दुख होता है, कोई बीमार हो जाता है तो बड़ा दुख होता है, शरीर को कष्ट हो जाता है तो बड़ा दुख होता है, कुछ कमा नहीं पाते हैं तो बड़ा दुख होता है, कोई हमसे ज्यादा तरक्की कर लेता है तो बड़ा दुख होता है। यहाँ दुख की कमी नहीं है, दुख ही दुख, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है ना। कोई हमें कष्ट देता है या हमारा मन ही हमको कष्ट दे देता है, कभी प्रकृति हमको कष्ट देने लगती है, कष्ट ही है इस जगत में। लेकिन इस जगत में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत आनंद में रहते हैं, अगर देखा जाए ध्यान से तो कई बार उनके पास कोई ऐसा सामान नहीं होता है उनके घरों में जिसे हम कहें भाई बहुत बड़ा फर्नीचर है, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर घर है, बहुत गाड़ियां हैं, कुछ भी नहीं, कहीं भी पड़े हैं छोटे से कमरे में। ऐसे भक्त जिनके पास उनकी संपत्ति के रूप में होते हैं कुछ ग्रंथ और उन ग्रंथों का स्वादन करते हैं वो, उनके पास उनका धन होता है सत्संग, भक्त संग, भक्त संग में वो भगवान की लीला कथाओं का आस्वादन करते हैं और अत्यंत आनंद में रहते हैं। निरानंद तो उनको छू भी नहीं जाता, कोई दुख उनको स्पर्श ही नहीं कर सकता, वो अतिशय सुख में रहते हैं। दुख वहां होता है जहां वासनाएं होती हैं, दुख वहां मिलते हैं जहां कामनाएं होती हैं, दुख वहां मिलते हैं जहां अपने शरीर से प्रेम हो जाता है या शरीर से जुड़े हुए लोगों से प्रेम हो जाता है, दुख वहां मिलते हैं। लेकिन जहां आसक्ति भगवान के चरणों को केंद्रित कर लेती है, भगवान की लीला कथाओं में मन डूब जाता है, भगवान की लीलाओं का चिंतन ये मन करने लगता है, भगवान की निकटता का एहसास होने लगता है, भगवान पर मन आश्रित हो जाता है, ये जीवन आश्रित हो जाता है, उनका आश्रय ले लेता है, तब वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भगवान ऐसे भक्त को आत्मसात कर लेते हैं और इसके लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि हजारों साल की कोई तपस्या करे तब भगवान हृदय में प्रविष्ट होंगे, नहीं, या कोई भूखा रहे, प्यासा रहे तो भगवान आ जाएंगे, नहीं, या कोई बहुत उच्च कुल में जन्म ग्रहण करे तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, या कोई अपने बाल बच्चों की खूब सेवा करे, पत्नी पति की खूब सेवा करे तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, तो फिर कैसे प्रकट होंगे। तो उसी का उपाय बता रहे हैं, सबसे आसान उपाय है, श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम काले नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि।
भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं बिना देर लगाए जब श्रद्धा के साथ हम उनकी कथाएं सुनते हैं। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानाम भावसरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए महाराज परीक्षित, जो इतने मन से हरि कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा मन से सुन रहे हैं, वो इतने मन से कथा क्यों सुन रहे हैं? तो हमें ये जानकारी तो है ही, सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया।

कि भगवान की कथा सुनने से ही कल्याण होगा, कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री हरि अपने भक्तों के दास सख्य आदि भाव रूपी कमल आसन में कथा के रूप में ही प्रविष्ट होते हैं और अपने भक्त के समस्त पाप काम क्रोध आदि मलिनता को सर्वतोभाव से अर्थात कुछ भी अवशेष ना छोड़ते हुए दूर कर देते हैं। जिस प्रकार शरद ऋतु के आगमन पर समस्त नदियों सरोवरों के जल की मलिनता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, उनका मैलापन समाप्त हो जाता है, वो साफ हो जाती है, तो ऐसे ही जो प्रभु हैं वो कानों में प्रविष्ट करते हैं, कानों के जरिए हृदय में भाव सरोरुहम, यहाँ शब्द आया है, यानी भाव युक्त हृदय रूपी कमल में प्रविष्ट होते हैं। देखिए, भगवान की कथा को सुनते सुनते ही भगवान के लिए भाव प्रकट होते हैं और ये भाव हमारे संस्कारों के अनुसार प्रकट होते हैं। किसी के हृदय में भगवत कथा सुनते सुनते भगवान के प्रति दास्य भाव प्रकट हो सकते हैं, किसी के हृदय में वात्सल्य भाव का प्राकट्य हो सकता है, किसी के हृदय में मधुर भाव का प्राकट्य हो सकता है। तो ये भाव ही मानो भगवान के बैठने का कमल आसन हो। अगर कोई भगवान की कथा सुन रहा है और उसके हृदय में कोई भाव ही उत्पन्न ना हो तो क्या भगवान उसके हृदय में प्रविष्ट नहीं होंगे? तो उत्तर है कि अगर कोई श्रद्धा से भगवान की कथा सुन रहा है तो कथा सुनकर के हृदय में भाव उपजेंगे ही। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान की कथा सुने तो भाव ना उपजे, ये असंभव है। अगर किसी को भूख लगी हो, वो भोजन कर रहा हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पेट नहीं भरा। अगर पेट भर करके भोजन किया गया है तो पेट भरेगा ही, है ना? तो ऐसे ही कोई भगवान की कथा सुन रहा है श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ कि हाँ भगवान की ये लीलाएं चिदानंदमयी हैं, ये लीलाएं अप्राकृतिक हैं, यहाँ प्राकृत अंश कुछ नहीं है, श्री हरि सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, भगवान की लीलाएं भी चिदानंदमयी हैं, यहाँ जड़ता कुछ नहीं है, माया यहाँ छू नहीं सकती, माया आ नहीं सकती, माया का प्रवेश नहीं है, लीलाएं जैसी भी हों पर वो माइक नहीं है। तो जिसको ये पूर्ण विश्वास हो भगवान पर, भगवान की लीलाओं पर, उनकी कथाओं पर, तो इसे ही कहते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा शरणागति से ही उत्पन्न होती है, ये भी याद रखना होगा। यानी अगर कोई भगवान की कथा सुन रहा है और भगवान के प्रति शरणागत है, शरणागति के लक्षण यही है कि प्रतिकूल से वर्जनम और अनुकूल से संकल्प, जो अनुकूल है भगवान की भक्ति के उसका संकल्प कि हाँ मुझे ये करना है और जो प्रतिकूल हैं उसको त्यागना है, मेरी वो रक्षा करेंगे ही। और बड़ी विनम्रता के साथ भगवान की कथाओं का सेवन करना है, श्रवण करना है, भगवान में पूर्ण विश्वास रखना है। तो इस तरह से शरणागति के साथ ही अगर कोई भगवान की कथा सुनता है तो ये कहा जाएगा कि वो भगवान में श्रद्धावान भक्त है। इसीलिए यहाँ कहा प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, भाव सरोरुहम, यानी जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, जिन्होंने भगवान के चरणों की शरणागति ले ली है, तो वो भगवान की कथा सुनते सुनते हो जाते हैं भावुक भक्त। जब भगवान के लिए भाव उत्पन्न होते हैं तो भगवान को अपने हृदय में प्रकट कराने के लिए उस भक्त को कुछ खास नहीं करना पड़ता, बस भगवान की कथा सुनते सुनते वो भावुक रहे, दास सख्य आदि किसी भी भाव का उदय उसके हृदय में होगा और तब उस

0: भाव रूपी कमल का आसन भगवान ग्रहण करते हैं कथा के रूप में प्रविष्ट होकर। तो अगर कोई ये कहे कि अच्छा दास सख्य आदि भाव अगर भक्त में उत्पन्न हो ही गया तो फिर मलिनता रह ही नहीं जाएगी, फिर भगवान कैसे पाप और काम क्रोध आदि मलिनता को दूर करते हैं। जब भाव आ गए तो इसका अर्थ यही है ना कि पाप समाप्त हो गए, काम क्रोध आदि मलिनता समाप्त हो गई। तो उत्तर ये है कि भाव तो प्रकट होने लग जाते हैं परंतु मलिनता अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। हमारे जो संचित कर्म हैं, संचित पाप हैं, प्रारब्ध हैं, ये सब अभी भी पड़े रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, देखते हैं आहा कथा सुनते सुनते ये भक्त मेरे प्रति दास भाव से युक्त हो गया, सख्य भाव से युक्त हो गया, तो भगवान उसके हृदय में कथा के रूप में प्रविष्ट होते हैं और समस्त पाप काम क्रोध आदि मलिनता को सर्वतो भाव से यानी पूरी तरह से दूर कर देते हैं, पूरी तरह से। और यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया ये कोई छोटा मोटा उदाहरण नहीं है, इम्पोर्टेंट उदाहरण है। कहा गया कि जैसे शरत ऋतु आती है तो समस्त नदियों और सरोवरों का जल पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है यानी मलिनता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो भगवान ही भक्तों का इतना हित साधते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के कान के छिद्र से हृदय रूपी कमल में प्रविष्ट करके काम क्रोध हिंसा आदि समस्त मलिनता को नष्ट कर देते हैं और कथा रूप में प्रविष्ट होते हैं। हालांकि देखा जाए तो भगवान तो परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में सदा ही हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, अवस्थित हैं, लेकिन वो उदासीन भाव से अवस्थित हैं, यानी हम कुछ भी कर लें वो मना नहीं करेंगे। और साक्षी हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, दृष्टा है, अनुमंता है, साक्षी हैं, पर उदासीन भाव है। परंतु जब कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान कानों के छिद्र के द्वारा भक्त के हृदय कमल में प्रविष्ट होकर जीव को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। यहां उनकी उदासीनता नहीं है, जो अंतर्यामी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में है, चाहे जीव नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे पापी हो, चोर हो, हत्यारा हो, कैसा भी क्यों ना हो, सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं उदासीन भाव से, इनडिफरेंट होकर के, यानी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो देख रहे हैं, ना वो मना करेंगे ना वो अपनी ओर आकर्षित ही करेंगे। परंतु भक्तों के भगवान कानों के छिद्र के द्वारा भक्तों के हृदय रूपी कमल आसन में विराजमान हो जाते हैं और भक्तों को अपने प्रति आकृष्ट करते हैं, खींचते हैं। ये भगवान ही की शक्ति है कि माइक आवेशों से युक्त जीव को पूरी तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। भगवान जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान के प्रति आकर्षित हो सके, उन्मुख हो सके, बस वो एक इच्छा व्यक्त करता है कि मैं आपकी तरफ मुड़ना चाहता हूँ, वो इच्छा व्यक्त करता है मैं आपका होना चाहता हूँ, बाकी कार्य तो भगवान ही कर देते हैं। हमें तो सिर्फ भगवान की कथा सुननी होती है और बस बाकी तो काम होता चला जाता है, फिर हम वैसे ही चलते हैं, वैसा ही कार्य करते हैं और वैसा ही सब कुछ होता है जीवन में जो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति के अनुकूल हो। यानी अब प्रेम मिलेगा तो इससे पहले भगवान अब हमें ये दिन दिखाएंगे, ऐसा होगा, सब कुछ के नियंत्रक भगवान हो जाते हैं। एक भक्त का जीवन बड़ा ही सुंदर हो जाता है भगवान के आश्रय को प्राप्त करके। तो ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, जानेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा और हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भक्त के कानों के छिद्र से कथा के रूप में भक्त के हृदय में प्रविष्ट होते हैं और भक्त के भाव अनुसार यानी उसका भाव भगवान के प्रति यदि दास्य भाव का है, सख्य भाव का है, उस भाव के अनुसार भगवान उसके हृदय रूपी कमल पर विराजमान होते हैं और उस भाव के अनुसार ही भगवान भक्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वरना जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान को अपने बल पर प्राप्त कर सके। हमने ये बात जानी है ना। और फिर भगवान धीरे धीरे शमलम यानी काम क्रोध आदि मालिन्य को दूर करते हैं। अगर कोई कहे ठीक है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, भाई ज्ञानी और योगी भी तो ये कर सकते हैं, तो इसके उत्तर में ही कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी घड़े में जल है और उसमें फिटकरी डाल दी गई, तो कलश का जल जो है वो शोधित हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन नदी पुष्करणी सरोवर का जल शोधित नहीं होता है। हम उसमें कुछ ऐसा नहीं डाल सकते हैं कि नदी का जल शोधित हो जाए। मन तो नदी की तरह ही है ना, चलायमान चलता रहता है, चलता रहता है हा? और अगर मान लीजिए फिटकरी डाल दी जाए जल में, गंदे जल में जो कि घड़े में है, और लगा कि साफ हो गया, परंतु वो पूरी तरह साफ कहाँ होता है, वो जो मल है वो कलश के अंदर ही नीचे बैठ जाता है। थोड़ा सा हिलाया जाए उस जल को तो फिर से उसमें गंदगी ऊपर आ जाती है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो या तपस्या हो, ये सब चित्त की मलिनता को पूरी तरह दूर नहीं कर सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति में बदलाव आता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है और पूरी तरह से तो वो बदलाव भी नहीं आता है ना? तो थोड़ा बहुत मलिनता ये साधन दूर कर सकते हैं निश्चित रूप से, परंतु पूरी तरह से व्यक्ति बदल जाए, एक क्रोध ही महाप्रेमी हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो किसी प्रकार से सामान्य हृदय की मलिनता ही दूर हो पाती है, लेकिन फिर से अगर विषय का संग मिल गया तो चित्त में फिर से काम आदि मलिनता आ जाती है। जिस प्रकार से प्रथम स्कंद में व्यास नारद जी का जो संवाद था उसमें देवर्षि जी ने कहा था, यमादि भी अर्थात नियत काम लोभ में आसक्त चित्त व्यक्ति मुकुंद की सेवा की तरह जिस प्रकार क्षमता प्राप्त करता है, पवित्र होता है, इस प्रकार यम नियम आदि योग पथ के द्वारा भी नहीं हो पाता है। यम नियम योग आदि के द्वारा इस प्रकार आत्मा की शांति नहीं हो पाती जिस प्रकार भगवान में आसक्ति के द्वारा हो पाती है। तो हृदय में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण सबकी मलिनता को पूरी तरह से अपसारित कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका दृष्टांत दिया महाराज परीक्षित ने। उन्होंने कहा जैसे शरद काल आता है, शरद ऋतु आती है, तो नदी का जल हो, सरोवर का जल हो, सब पूरी तरह साफ हो जाते हैं, मलिनता पूरी तरह समाप्त हो जाती है ना। तो कोई सोचे हम तपस्या या ध्यान के द्वारा प्रायश्चित कर लेंगे तो हमारे पाप दूर हो जाएंगे, तो उत्तर है नहीं नहीं सारे पाप कहाँ दूर हो पाते हैं, पाप का अवशेष रह जाता है, और वो भी यानी तपस्या ज्ञान मार्ग ये भी सबके लिए संभव ही कहाँ है। और अगर किसी के लिए संभव हो तो किसी किसी का पाप कुछ अंश में कुछ काल के लिए ही शांत होता है, परंतु श्री कृष्ण कथा के रूप

कथाओं का श्रवण करता है, ऐसे जो भक्त हैं उनके हृदय में भगवान अवस्थित हो जाते हैं और वहां जितनी भी अभद्रता है, मलिनता है, भगवान उसे दूर कर देते हैं। तो हालांकि श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप में यानी परमात्मा के रूप में, क्योंकि परमात्मा भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश हैं श्री कृष्ण के, तो वो परमात्मा अंतर्यामी रूप में तो जीव के हृदय में सदा है ही, पर हमने जैसा जिक्र किया कि उस अवस्था में भी वो उदासीन भाव से ही विराजते हैं। परंतु जब वो कथा के रूप में जीव के कर्ण द्वार से होकर प्रविष्ट करते हैं, तब वो अपने बैठने के स्थान पर विराजमान होते हैं और तब जीव के हृदय में दास से सख्य आदि भाव को प्रस्फुटित कर देते हैं और इसके द्वारा आनुषंगिक भाव से जीव के हृदय का काम क्रोध आदि मल धीरे धीरे दूर हो जाता है, भगवान ही दूर करते हैं। तो वही वाली बात है, अगर कोई ये कहे ज्ञानी योगी भी तो अपने काम क्रोध आदि रूपी मल को दूर कर ही देते होंगे, तब हरि कथा का श्रेष्ठत्व कहाँ है। उसके उत्तर में ही बोला गया था कि जिस प्रकार घड़े में स्थित जल को किसी वस्तु को मिलाने से, चाहे वो फिटकरी हो चाहे कोई और वस्तु, उसके द्वारा शोधन किया जाता है, तो वो जो घड़े में जल है बस वही शोधित होता है, पर अन्य पात्र में जो जल है वो शोधित नहीं होता है। नदियों का जल शोधित नहीं होता है और ये जल भी शोधित होता है, रिफाइंड होता है, साफ होता है, तो भी जो मैलापन है वो कुंभ के यानी जो घड़ा है उसके तल देश में ही जमा रह जाता है ना। तो इसी प्रकार से काम क्रोध आदि रूपी मल कुछ समय के लिए समाप्त दिखते जरूर हैं, परंतु थोड़ा सा अगर हिलाया जाए, थोड़े से अनर्थ आए, तो फिर से ये प्रकट हो जाते हैं ज्ञानियों तपस्वियों के हृदय में, मगर एक भक्त के हृदय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां वो अपनी चेष्टा से प्रयास कर रहे हैं और यहाँ भगवान भक्त के लिए सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा एक बद्ध जीव की आत्मा जिस प्रकार से शांत होती है, वैसी शांति अष्टांग योग ज्ञान कर्म आदि के उपदेशों के द्वारा वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ज्ञान कर्म योग आदि द्वारा अनावृत शुद्ध कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है। जागतिक कथा जिस प्रकार से देश काल पात्र आदि द्वारा सीमित रहते हैं, वैसी कृष्ण कथा नहीं है, है ना। यहाँ देश काल पात्र का कोई महत्व नहीं है, कृष्ण कथा और कृष्ण एक ही वस्तु है, ये आपको बताया था। श्री कृष्ण ही कथा के रूप में स्वयं सेवा को प्राप्त करने की, जिन जीवों में उन्मुखता है भगवत सेवा को प्राप्त करने की, उनके हृदय रूपी कंदरा में प्रविष्ट हो जाते हैं ठाकुर जी कथा रूप में और जीवों के समस्त प्रकार के हृदय मल को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए जो लोग श्री कृष्ण कथा को तप कर्म ज्ञान और योग के समकक्षा में रखते हैं, उनके समान समझते हैं, तो वो नाम अपराधी हो जाते हैं और फिर वो कृष्ण कृपा से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कथा साक्षात श्री कृष्ण है ये जानना होगा। इसलिए श्री कृष्ण कथा का श्रवण, श्री कृष्ण कथा का कीर्तन जीव मात्र का ही परम साध्य और साधन है, जीव मात्र का ही। अगर सफलता हासिल करनी है, और सफलता की जो परिभाषा है वो यही कि भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, इस मनुष्य जीवन में भगवत सेवा की प्राप्ति हो, यह है सफलता। पैसा प्राप्त हो, पद प्राप्त हो, लोगों का सम्मान प्राप्त हो, यह सफलता नहीं है। इसको तो हमारे यहाँ विष्ठा कहा गया है, ये पंक है, पंक कीचड़, जिसमें आदमी एक बार गिरा तो वो उसे अमृत मान लेता है, वहां से निकल नहीं सकता है, ना ही वो निकलना चाहता है, तो फिर कहाँ से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कैसे भजन ही होगा। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है और इसे ही जारी रखेंगे हम अपने आने वाले कार्यक्रमों में। सुनते रहिए समर्पण।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: पेश है AIRFM रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शफकत मिर्जियोयेव के साथ आज द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की है 4थी यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में आयोजित उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

यह सम्मेलन उनके 3 दिवसीय दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। 320 से अधिक विदेशी नागरिक सहित 2400 लोग अभी भी लापता है। 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। यूक्रेन के बुचा जिले में रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी कामगारों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के लिए प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों से घुटने की चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं। और भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समयानुसार मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। ये थे AIR रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार।

વાણી આકાશવાણી मैंने कहा जी गुड वाली मॉर्निंग आप सभी लोगों को, प्यार भरा नमस्कार आप सभी लोगों को, अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी भाषाओं के अंदर प्यार भेज रहा हूं। ये प्यार आप सभी लोगों के बहुत काम आएगा, क्योंकि कहते हैं कि अगर जो चीज आप किसी को देते हो दोगुनी होके आपके पास वापस आती है। देखते ही देखते अगस्त का महीना भी खत्म होने वाला है, मतलब आज और कल भाई दो दिन बचे हैं। गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा सा सोच रहा था कि बरसात का महीना भी खत्म हो गया, यानी कि सितंबर का महीना दो दिन के बाद शुरू हो जाएगा। पर कहते हैं कि अगस्त के महीने के बाद अगर देखा जाए तो त्योहार जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अब आप वहां पर त्योहारों की जो कहते हैं ना तैयारियां हैं वो शुरू कीजिए, आने वाले दिनों की तैयारी शुरू कीजिए, नए नए कपड़ों की तैयारी शुरू कीजिए, रंग और रोगन की जो तैयारी है वो शुरू कीजिए, और इसके साथ साथ थोड़ा सा घूमने की, हंसने की, एक दूसरे को साथ में ले जाने की, खुशियां एक दूसरे के साथ मिलकर मनाने की। और हाँ, मैं यहां पर तैयारी करता हूं आज के सर हमारे शोज के लिए, तो फिर सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर आपके साथ आकाशवाणी रेनबो पर। मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला। और संडे का दिन है, संडे का उठ गए कि नहीं उठ गए?

0: आप सिर्फ दिल की बात करते हैं, बंदे ने पूरा का पूरा शरीर आपको दे दिया।
1: यानी कि सब बंदा अब आपके हाथ में है, आपके लिए हाजिर है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का शो आपके लिए कर रहा है, आकाशवाणी रेनबो पर कर रहा है, और जहां पर कोई नहीं वहां पर आकाशवाणी, यानी कि स्टेशन ऑफ द नेशन आपके साथ में है। अब 30 अगस्त का इतिहास क्या कहता है साहब? 30 अगस्त के इतिहास की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें आज ही के दिन की, 30 अगस्त 1836 की हम बात करते हैं, जहां पर आप देखेंगे आज ही के दिन मेलबर्न शहर की स्थापना हुई थी। बात करते हैं 1928 की, 30 अगस्त की, जब द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की भारत के अंदर स्थापना हुई थी। 1900

1949 की वो ऐतिहासिक तारीख थी 30 अगस्त की, जब भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। आगे लेके चलते हैं आपको 1984 की तरफ। 30 अगस्त की वो तारीख थी कि जब आप देखेंगे अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने पहली बार उड़ान भरी थी।

आगे लेकर आते हैं, आपको आगे लेकर आते हैं। जब धीरे धीरे अब जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखेंगे, आप अगर अब 91 की बात करते हैं 30 अगस्त 1991 को अजरबैजान ने 1991 में सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ...2002 की वो तारीख थी जब आप देखेंगे कि वहां पर अमेरिका की जो सबसे बड़ी एक कंपनी थी और अमेरिका के अंदर ही जो उस कंपनी की तीसरी बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी को दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी बनी थी वहां पर। इसके साथ साथ में 2002 की वो तारीख थी जब ऑस्ट्रेलिया ने विश्व नौकायन में गोल्ड मेडल जीता था। 30 अगस्त की तारीख थी वो इतिहास के अंदर जब 2009 में जब इसरो यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान प्रथम औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था। इतिहास के पन्नों में इतना नहीं है, इतिहास के पन्नों में आगे हम आपको यह बताएंगे कि आज किसके साथ आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो फील गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड। अरे कितनी बार गुड बोलता भाई। विशाल डडलानी, शिल्पा राव, यहां पर रेडियो पर मैं आपके साथ में।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। आपके साथ रेडियो पर जो आवाज आ रही है वो मेरी है, मेरा नाम मनीष आजाद रेडियो वाला है। बात कर लेते हैं उस इंसान की, उस व्यक्तित्व की जिन्होंने इस धरती पर आकर एक अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं भगवती चरण वर्मा जी की, आज आपकी जयंती है। कहने के लिए आप उपन्यास कर रहे हैं लेकिन कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जो लोगों के जहनों में आज भी बसी पड़ी हैं। लेखन पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख रूप से अपने काम किया, कवि के रूप में भी कई आपके रेडियो के जो रूपक, महाकाल की हम बात करें, कर्ण की बात करें, द्रौपदी की बात करें, जो 1956 ये अगर आप वस्तु में देखेंगे त्रिपथका के नाम से संकलन के आकार में प्रकाशित हुई थी। कई सारी आपकी अलग अलग कृतियां हैं लेकिन जो आपकी प्रसिद्ध कविता थी भैंसा गाड़ी, वो आधुनिक कविता के इतिहास में अपना ही अलग महत्व रखती है। बावजूद उसके आपका खुद का कहना है कि मैं मुख्य रूप से उपन्यासकार हूं, कवि नहीं। आज मेरा उपन्यासकार ही सजग रह गया है, कविता से लगाव छूट गया है। कई सारे जो उनके चाहने वाले हैं वो भी इस बात को मानते होंगे कि कहीं ना कहीं वर्मा जी का जो लगाव था वो कविता से धीरे धीरे धीरे अलग होता चला गया। और कई सारे लोग उनको कहा कि आपके जो जितने भी उपन्यास हैं वो ज्यादा महत्व रखते हैं। भारत सरकार की तरफ से आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उपन्यासों की में अनेक जो ऐसे उपन्यास हैं जो आप देखेंगे, अपने खिलौने, पतन, तीन वर्ष, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, रेखा, कई सारे ऐसे उपन्यास हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप एक अलग एक इतिहास लिखने की तैयारी में होते हैं तो दुनिया आपको उस रूप में याद करती है। तो आज साहित्यकार कहें, उपन्यासकार कहें, कवि कहें, भगवती चरण वर्मा जी की आज जयंती है। हम आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से उनको शत शत नमन करते हैं।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

देखिए साहब, आज भी जो गीत है ना कहीं वो गीत आप लोगों को बड़े पसंद आते हैं। मतलब गीत संगीत कहते हैं कि अगर कुछ खुशी का मौका है तो आप गाना सुनो, कोई गम हो गया है तो आप गाना सुनिए, कहीं किसी को कुछ बात कहनी है दिल की तो गाना सुनाइए। मतलब हर जगह गाना है, लेकिन इस गाने के पीछे कहते हैं साहब गाने लिखे जाते हैं। अब गाने जब लिखे जाते हैं तो कोई ना कोई तो लिखेगा ना, इसलिए उनको गीतकार कहा जाता है। और आज जिनकी जयंती है उनका नाम शंकरदास केसारी लाल। ये नाम अब जिनका नाम पड़ा आगे चलकर क्या, शैलेंद्र प्रसिद्ध उनका नाम। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार उनको फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। होठों पर सच्चाई रहती है ये आपको पता हो, मेरा जूता है जापानी, आज फिर जीने की तमन्ना, ऐसे कितने सारे गीत हैं जो उनके द्वारा लिखे गए हैं। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी हो, होशियारे रमैया अवस्था भैया, बहुत सारे। कहते हैं कि गीतकार शैलेंद्र जी ने राज कपूर, वहीदा रहमान और अभिनीत तीसरी कसम फिल्म का निर्माण भी किया था। बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, एक नहीं दो नहीं, फिल्मों के तो खैर लंबी सारी होती हैं। अगर आप मेरे हिसाब से फिल्मों की अगर बात करेंगे तो श्री 420 की बात कर लीजिए, आप चाहे गाइड की बात कर लीजिए, संगम की बात कर लीजिए, दिल अपना प्रीत पराय की बात कर लीजिए, काला बाजार आप देखिए, खोया खोया चांद, मुझे एकदम से याद आ गया, तो वो कितनी बड़ी चीज़ है। गुलजार साहब के शब्द हैं शैलेंद्र जी के लिए कि बिना एक शंकर शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जा सकता है। उनके गीतों को खुरच कर देखेंगे तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त होंगे। उनके एक गीत में ना जाने कितने गहरे अर्थ छिपे होते थे। सोचिए इतना बड़ा खुद गीतकार, वो जब उनको कहते हैं तो कैसा लगता है। फिल्मफेयर का पुरस्कार पहली बार उनको मिला 1958 में, ये मेरा दीवानापन है, यहूदी फिल्म का, बहुत मेरा भी फेवरेट रहा है, मेरे पिताजी का भी बड़ा फेवरेट था ये। 1959 में फिर सब कुछ सीखा हमने अनाड़ी के लिए, उसके बाद 1968 में मैं गाऊं तुम सो जाओ, ब्रह्मचारी, इसके लिए भी उनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार से नवाजा गया। तो साहब गीतकार से निर्माता भी बने और तीसरी जो कसम फिल्म आई थी वो भी उन्होंने उसका निर्माण किया। पूरा बॉलीवुड आज उनको शत शत नमन करेगा, साथ साथ में आकाशवाणी की पूरी टीम भी शत शत नमन करती है।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
2: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
1: आयुष्मान भारत अब इलाज की चिंता से आजादी।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का

भाई अगर आप इश्क वाले हो तो आप सलाम कीजिए, अगर आप नहीं हो तो फिर सलाम मत कीजिए। उन्होंने कहा कि आ गए ये इश्क वाले तो करो सलाम। अब आपको ये कौन सी कैटेगरी में अपने आप को रखना है वहां पर आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी भी ऐसी है, आपको लगता है कि साहब हम तो भाई ये घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, यानी कि हम जिसको कहते हैं WFH, ये वाला जो आजकल चैप्टर है साहब बहुत सारे घरों के अंदर शुरू हो गया कोरोना के बाद से, ये वाला तो जो शब्द है वर्क फ्रॉम होम, कितनी सारी ऐसी कंपनियों ने तो ये डिक्लेयर ही कर दिया साहब कि हमारा कोई ऑफिस नहीं है। भाई साहब आप अपने घर से काम कीजिए, घर पर ही आप अपना ऑफिस जो है उसका सेटअप अगर आपको बनाना है बना लीजिए, हम आपको उसके भी पैसे दे देंगे, कमाल हो गया साहब। लेकिन ये वर्क फ्रॉम होम कभी कभी तो अच्छा लगता है, ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, बस ऊपर जो सामने से वो लैपटॉप पे जो स्क्रीन दिख रही है वहां तक आप वो टाई वाई पहन के बैठ जाइए, बाकी आप जैसे मर्जी रहिए, घर में काम भी करते रहिए, बर्तन भी मांज रहे हैं आप, बच्चों को स्कूल से भी लेकर आ रहे हैं, काम भी चल रहा है, ऐसा बहुत सारी जगह पर है। सही, बिल्कुल एक बिल्कुल ठीक ऐसा है कि जिस तरह से आप छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं, 2-3 दिन 4 दिन तो साहब बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद घर की याद सताने लग जाती है। सीधा इसका संपर्क ऐसा ही है साहब, ये भी इसी तरह से है कि वर्क फ्रॉम होम शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगने लगा, लेकिन अब बहुत सारी समस्याओं का सामना हो रहा है, युवाओं को चिड़चिड़ा बना रहा है साहब ये WFH। 580,000 से ज्यादा कर्मचारियों के ऊपर यह शोध किया गया, शोध करने के बाद यह पाया गया कि मानसिक परेशानियों के अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है उसका 1/3 जो कारण है वो WFH है। घर से काम करने वाले कर्मियों में अकेलापन, दुनिया से कटे होने की भावना, सामाजिक स्तर पर उनका संपर्क टूट जाना, वर्क फ्रॉम कहते हैं ना जो रिमोट वर्क हो गया, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, बस आपको वो ऑर्डर दिया वो आपको काम करके रखना पड़ेगा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि भाई साहब आप क्या करते क्या हो, मतलब आपको घर पे सारा दिन घर पे रहते हो काम करता है, तो अब ये जो चीजें हैं चिड़चिड़ापन जो है ना बढ़ रहा है ना प्रॉब्लम। इसीलिए कहते हैं हर चीज ठीक रखती है साहब, वो कहते हैं आप जिम में जाकर ही अपने आप को कसरत कर सकते हो ना, घर पर आप कभी कसरत कर पाए हो कभी ढंग से? आप अगर आप घर पे कसरत कर लेते तो ये जो आगे हल्की सी वैसे भी फुटबॉल से निकल रही है जिसको आप कम करने की रोजाना सोचते रहते हो, जो आप घर में बोलते रहते हो टायर जैसा तेरा पेट हो रहा है, आपका भी तो हो रहा है भाई साहब, ये टायर जैसा पेट जो है अगर आप इसको कम करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो जिम में ही हो पाएगा ना, योगा की क्लास योगा के सेंटर पे जाके होगी या पार्क में जाके होगी, जो एक्सरसाइज पार्क में योगा में हो जाएगी वो घर पे कैसे हो जाएगी? सीधा ऐसा ही है, जो काम ऑफिस के माहौल में जाकर ऑफिस के लोगों के बीच में बैठकर ऑफिस के डेस्क पर बैठकर बॉस की थोड़ी सी डांट सुनकर होगा वो घर से कैसे हो जाएगा साहब? इसलिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप सोचिए, बाकी समझदार आप मुझसे ज्यादा हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का सफर आपके साथ, रेडियो पर आवाज मेरी आ रही है, मनीष आजाद रेडियो वाला।

अगर शंकर महादेवन साहब अगर ये देसी गर्ल की जगह देसी बॉय बोल देते क्या जाता है इनका, कुछ जाता, हम लोगों की भी थोड़ी सी तारीफ हो जाती। हम क्या देसी नहीं है, हम क्या इस देश में नहीं रहते, हम भी अपनी आवाज उठाएंगे और आगे जाएंगे। लेकिन पहुंच के कहां जाओगे फिर उसके बाद, वापस तो आपको इधर ही आना पड़ेगा। कहां पर? आकाशवाणी रेनबो पर, क्योंकि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर चल रहा है। रेडियो पर जो आवाज आ रही है ना, इस बंदे की है, क्योंकि बंदे का नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला है। आप आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं पता है तुहानू? गुरु रंधावा। आ हा हा हा, गुरु रंधावा के साथ साथ आज हैप्पी वाला बर्थडे है चित्रांगदा सिंह का। आप उनके साथ भी अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बाय वन गेट वन जी, आप भी अपने साथ साथ हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो खुशी मनाओ, नाचो गाओ। इसके बाद आप चाहे फिर इधर या उधर कहीं भी चले जाओ, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी आप भी हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सेलिब्रेट कीजिए। इसके बाद

आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाता है। एक नहीं दो नहीं कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जहां पर लगातार आप देखेंगे कितने सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, छोटे छोटे छोटे छोटे मजदूर, छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन उनके बिना हमारा जीवन जो है वो साहब चलता नहीं है। बहुत सारे कामों के लिए आपको वहीं जाना पड़ता है। तो आज का दिन जो है लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहीं पर भी अगर आप देखेंगे जो छोटे छोटे काम हैं, तो आज उनके दिवस के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी इस उद्योग से जुड़े पड़े हैं। ठीक है साहब, मैंने आपको बता दिया, अब आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सेलिब्रेट कीजिए ना।

खिटपट सोनी है तुम्हारी बड़ी हिट हिट सोनी। भैया कमाल हो गया, मैं गाना मेरे को याद हो गया। लो जी नीरज श्रीधर की छुट्टी करके मनीष आजाद को उसकी जगह डाल दो भाई साहब, लेकिन गाने के पैसे भी दे देना। तुलसी कुमार की तरह नहीं गा सकते, लेकिन हाँ नीरज श्रीधर से बोलेंगे भाई साहब हम भी थोड़ी सी आपके गानों की लाइन को याद कर लीजिए। अब आप बने रहिए, पूजा आ चुकी है, क्योंकि वो 8 बजे से 9 बजे तक आपको झमाझम म्यूजिक के साथ साथ में आपको बैक टू बैक कुछ काम की खबर भी देंगी। बंदा मिलेगा आपसे 9 बजे, जब होगा दिल के तराने, गाने नए पुराने।

एफएम रेनबो पर लीजिए पेश है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ आज द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का ये चौथा दौर है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में आयोजित उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन उनके 3 दिवसीय दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। 320 से अधिक विदेशी नागरिकों सहित 2400 लोग अभी भी लापता हैं। 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मौसम विभाग ने ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी कामगारों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा घुटने की चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं। और भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय अनुसार मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: तेरे लिए लाए,
1: दिल भी लाए, दिमाग भी लाए, हम भी आए और तुम भी आए, और हुआ दिल से दिल का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर, जो है स्टेशन ऑफ द नेशन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मेरा नाम पूजा शुक्ला। इन फूलों की तरह महकती सुबह में खुशियों की मिठास घुल जाए, हर पल मुस्कान साथ रहे और आपका दिन खूबसूरत बन जाए।

दो दिल नहीं, लाखों करोड़ों दिल मिल चुके हैं एफएम रेनबो पर। हम और आप जब हो साथ तो बन जाती है हर बात, पर बात लेकिन सिर्फ मौसम की जाए तो बात थोड़ी थोड़ी बिगड़ी बिगड़ी नजर आती है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से अच्छी बारिश नहीं हुई, जिसके चलते तापमान में तेजी के साथ इजाफा हुआ है और अगले 10 दिन बाद फिर से अधिकतम तापमान 36 तक पहुंच गया। बीते 6 दिनों में ही दिल्ली के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री का इजाफा हुआ है और मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 2 दिनों के बीच भी मौसम की यही स्थिति बनी रहेगी, यानी टेम्परेचर रहेगा हाई, उमस से हम रहेंगे बेहाल। लेकिन इसका एक फायदा यह है कि मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की जो हवा है वो बिल्कुल साफ सुथरी बनी हुई है। तो भाई इस स्वच्छ हवा का आनंद लें, घर से बाहर निकलें, संडे का दिन है, मौज मस्ती का दिन है, घूमें फिरें, लेकिन कहीं भी जाएं सुनते रहें एफएम रेनबो, जो है स्टेशन ऑफ द नेशन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मेरा नाम पूजा शुक्ला। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
6: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

0: आशा यूनिट बाल विवाह मुक्ति के लिए नालसा की पहल। अब हर जिले में मौजूद विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़िए, हेल्पलाइन नंबर 1500 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: संडे की खुमारी में हैं, अब आप उठेंगे आराम से, तैयार होंगे और सोचेंगे कहाँ चलें। तो चलना कहाँ है ये हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का आकर्षण है, दिल्ली की रौनक है उद्यान, अमृत उद्यान। और आप वहाँ कैसे जाएं, कहाँ, किस मेट्रो स्टेशन के करीब है, और भी बहुत सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो बस अब इस पल जुड़िए रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ है कुमार समरेशी जो कि पीआरओ म्यूजियम राष्ट्रपति भवन है। सर बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार एफएम रेनबो पर आपको।
1: नमस्कार।
0: हमारे लिसनर्स संडे है तो ये सोच रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे कि चलते हैं कहीं घूमने, और घूमने के लिए सबसे बेहतरीन आजकल जो है वो है अमृत उद्यान जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा आकर्षण है। तो सर ये बताइए कि क्या रौनक है, चूंकि 16 अगस्त से शुरुआत हो चुकी है, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कितनी रौनक इस बार अमृत उद्यान में और कितना अलग पिछली बार से?
1: देखिए पिछले कुछ सालों से हमने समर एनुअल्स अमृत उद्यान लेकर आए हैं, और पहले क्या होता था कि सिर्फ विंटर एनुअल्स होते थे ट्यूलिप्स के टाइम पर, बट अब ये समर एनुअल्स मॉनसून फ्लावर्स जो होते हैं उसको भी हम शोकेस कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन के बैकग्राउंड पे। तो जैसा कि आपने बताया ये इसकी शुरुआत हो गई है और लगभग आधा समय बीत चुका है और 15 सितंबर तक ये चलेगा, और हमने बहुत इजी कर दिया है प्रोसेस इस बार रजिस्ट्रेशन का। आप एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन आपको करानी होगी, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था कि लोग आते थे और फिर वो ऑन स्पॉट गेट के पास रजिस्ट्रेशन करके चले जाते थे, अभी क्या करना है आपने, आपको एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करानी है, और वो भी हमारे राष्ट्रपति भवन का जो आधिकारिक वेबसाइट है visit.rashtrapatibhavan.gov.in, इस पे जाकर आप अपने स्लॉट चूज कीजिए और फिर आप अमृत उद्यान आ सकते हैं।
0: यानी श्रोता थोड़े से तो हो गए हैं निराश, क्योंकि आज के आज तो वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ आज रजिस्ट्रेशन करवाएं तो वो जाएंगे मंगलवार को, क्योंकि सोमवार को बंद होता है।
1: जी जी जी, और ये इसलिए किया गया है कि आप अगर आप अमृत उद्यान आ रहे हैं तो फिर आप अपने स्लॉट चूज करके आएंगे तो भीड़ से भी बचेंगे, और फिर क्या होगा कि आप क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, अपनी मेमोरीज बना सकते हैं अमृत उद्यान में।
0: बिल्कुल।
1: तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखकर हमने इसको किया, आप एक दिन पहले सिलेक्शन करें अपने डेट का और टाइम का और उसी हिसाब से आप आए। और टाइमिंग्स 10 बजे से लेकर 6 बजे तक है, और लास्ट एंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 बजे शाम को होगी, तो इस चीज को आप फॉलो करिए। और आने के लिए भी फ्री शटल सर्विस सेंट्रल सेक्रेटरिएट से राष्ट्रपति भवन ने स्टार्ट की हुई है, आप वहां से आ सकते हैं, निशुल्क है ये, और राष्ट्र अमृत उद्यान की विजिट भी निशुल्क है, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग आने के लिए।
0: और सवाल ये भी कि अब लोग घूमने आते हैं तो बच्चे भी आएंगे और खाने पीने की जिद भी करेंगे, तो क्या जो ईटेबल्स हैं वो अलाउड हैं अंदर?
1: ईटेबल्स आप पानी का बॉटल और मोबाइल फोन और आप कम से कम सामान लेकर आए, बिकॉज पहले प्रोविजंस होती थी फूड स्टॉल्स की जो नहीं है, लेकिन पानी, गर्मी है, पानी की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब चीजें जरूर की गई हैं। तो मेरा मानना है कि आप घर से आए, कम सामान लेकर आए, ऐसे क्लॉक रूम है वहां पर, अगर आप कोई सामान ला रहे हैं और डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मोबाइल्स जरूर अलाउड है, तो आप मोबाइल्स के साथ पिक्चर्स ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को और को भी मोटिवेट कर सकते हैं कि अमृत उद्यान किसी भी दिन विजिट करें। और साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन संग्रहालय भी बगल में ही है, तो अगर आप आ रहे हैं तो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय आए, जो पेड होता है 50 रुपीज पर हेड चार्जेस होती है, वो ऑन स्पॉट मिल जाती है बुकिंग।
0: जी, एक बार फिर से आप दोहरा दें समरेश जी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको राष्ट्रपति भवन के जो आधिकारिक वेबसाइट है visit.rashtrapatibhavan.gov.in, इस पर आप जाएं, आपको अमृत उद्यान का एक पेज मिलेगा जहां पर आप क्लिक करके कितने लोग आप लोग हैं उसको आप स्लॉट चूज कीजिए, वो बुक कीजिए, निःशुल्क है, और आपको एक पास जनरेट हो जाएगा, वो आपको लेके गेट नंबर 35 पर आना पड़ेगा और वहां से आप एंट्री कर सकते हैं।
0: जी बहुत धन्यवाद आपका समरेश जी जुड़ने के लिए, और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हमारे तमाम श्रोताओं के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
1: थैंक यू।
0: तो हमारे सभी श्रोता जो सुन रहे थे हमें, आपने जाना कि आज संडे है, जाना चाहते हैं घूमने, लेकिन अमृत उद्यान नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले होता है, तो आज कीजिए रजिस्ट्रेशन। उसके बाद दिल्ली में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक के लिए सुनते रहिए FM रेनबो, जो कि स्टेशन ऑफ द नेशन।

0: हमारा मन भी बस यही कहता है कि कहीं दूर मत जाइए, क्योंकि इस जिंदगी को, एफएम रेनबो को जिसकी जरूरत है वो है आपकी दीवानगी। मस्त रहिए, मगन रहिए, जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना बिताएं, आराम से चैन के साथ गुजारें और सुनते रहिए एफएम रेनबो, स्टेशन ऑफ द नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी, एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी।

सुंदर तो हमारी दिल्ली भी हो रही है और इसके पीछे की वजह है सड़कों पर घटते निजी वाहन। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है छोटी बसों की कनेक्टिविटी बढ़ी है। जी हाँ, यही वजह है कि दिल्ली में छोटी ई बसों की बेहतर कनेक्टिविटी का असर अब निजी वाहनों पर दिख रहा है। अब लोग जो हैं वो अपने निजी वाहन यानी कार या दुपहिया छोड़कर इन बसों में सफर करते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इससे सड़कों पर निजी वाहन का दबाव कम हो रहा है। दरअसल ये अध्ययन है IIT दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर का, जिसमें दावा किया गया है कि इन बसों में सफर करने वाले 13% वो यात्री हैं जो पहले अपनी कार या फिर दोपहिया से ऑफिस, दुकान, कॉलेज या दूसरे स्थानों पर जाते थे। तो परिवहन माध्यम बदलने वाले अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पहले बसों की कनेक्टिविटी बेहतर नहीं थी और मेट्रो की सुविधा से वो दूर थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदले हैं। तो छोटी बसों की कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है और 82% यात्री सीधे सीधे मंजिल पर पहुंच रहे हैं। सर्वे ये कहता है कि छोटे आकार की देवी बसें जो हैं उसमें सफर करने वालों की संख्या जो है वो 82% है और सीधे ये लोग बिना भटके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और यही वजह है कि इसकी उपयोगिता बढ़ रही है। और यही तो हम भी चाहते हैं कि दिल्ली संवरे, दिल्ली सजे, सुंदर दिल्ली, हमारी दिल्ली, आपकी दिल्ली। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

ऐसी ही दीवानगी से भरे हुए हैं हम लोग, क्योंकि दीवाना बना रही है पल पल बदलती टेक्निक। अब देखिए ना, अब इंस्टा पर जो मेटा इंस्टा है वो रील बनाने वालों के लिए एक नया फीचर ला रहा है, फर्स्ट ड्राफ्ट नाम का ये फीचर। वीडियो क्लिप में मौजूद लंबे साइलेंस और जो अनावश्यक पॉज होता है ना, उसको अपने आप हटा सकेगा। इससे यूजर्स को वीडियो की शुरुआत एडिटिंग में कम समय लगेगा। इसका मकसद

0: और जादू यूं ही एफएम रेनबो पर लगातार चलता रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे बेहतरीन कार्यक्रम आप तक हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ हैं मनीष आजाद रेडियो वाला, और कार्यक्रम का नाम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। मनीष, कौन से तराने प्ले करने वाले हो?
1: जब दिल के तराने गाने नए पुराने की बात है तो फिर नए होंगे, और उसके अंदर जो पुराने गाने का जो तड़का होगा ना, उसकी बात ही कुछ अलग। वो कहते हैं ना कि जब आप गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं, लास्ट में बोलते हैं भैया जरा सा इसमें चाटनी से वो लगा के दे देना जरा, तो वो वाला गाना मीठे वाला होगा उसमें।
0: और ये बताओ, चूंकि आज संडे है और संडे तो होता है फंडे, तो क्या ये कार्यक्रम लोगों को और भी ज्यादा गुदगुदाने, हंसाने और ऊर्जा से भरने वाला है?
1: मैं तो हर किसी से एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके पैर नहीं उठते, आप कहते हो नहीं साहब हम तो डांस नहीं कर सकते, एक बार जरा हमारी महफिल में आके देखिए, उसके बाद पता लग जाएगा आपको पैर
0: तो
1: उठता
0: नहीं उठता। सांच को आंच क्या, चलते हैं और मिलते हैं आपसे फिर।
1: फिर क्या, आप तो लगातार सुनते रहिए रेगुलर, क्योंकि जहां कोई नहीं वहां हम लोग हैं, और जहां हम सब हैं तो फिर उसके बाद आकाशवाणी हमारे साथ।
0: फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूजा शुक्ला का नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: पेश है AIR फिल्म रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशगंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो की कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौर पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक की जयंती समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमानों को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। यह बात उन्होंने न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में आयोजित उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन उनके 3 दिवसीय दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई। 2400 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की 4थी खेप भेजी गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी कामगारों के रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की राहत अवधि को खत्म करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा घुटने की चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं। और भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समयानुसार मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। ये थे AIR फिल्म इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: दीदी ने कितने प्यार से बोले रेनबो 102.6 पर। तो बस 6 पर शुरू हो चुका है दिल के तराने, गाने नए पुराने, यानी कि बैक टू बैक म्यूजिक, झमाझम वाला संगीत। जैसे मौसम कभी कभी औसम हो जाता है ना साहब, आपके आने से ये मौसम और भी ज्यादा औसम हो चुका है, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे बैक टू बैक म्यूजिक में, जहां पर होंगे एक से बढ़कर एक गाने। तो शुरुआत आपके पैरों को थिरकाने की हम यहां स्टूडियो के अंदर करेंगे डांस, और आप वहां पे करेंगे डांस। कौन मारेगा चानस ये देख लेते हैं हम, कैसे ऐसे शुरू हो जाओ।
3: दिला दे घर,
2: वो क्या देख रहे हो,
3: दिला दे घर,
2: वो शुरू हो जाओ।
3: बना दे घर, दिला दे घर।
2: One, two, three, start.

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: है भैया दिल के तराने गाने नए पुराने के अंदर समय हो चुका है आपको ये मौसम का हाल बताने का, क्योंकि मौसम इस समय जो कहता है गर्मी हो गई साहब। देखिए इतनी बारिश होने के बाद भी ऐसा लगता है मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस, उसमें से थोड़ा सा कम कर दो मिनिमम वाली बात, यानी कि जब थोड़ी सी उमस उमस आपको लगेगा एसी काम कर रहा है एसी चला दो, घर से जैसे घर के अंदर आप जाते हैं घर आते ही बोल एसी जरा ऑन कर दो भाई क्योंकि गर्मी लगती है, यानी कि आप देखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस कम वाला है, ये बहुत जरूरी है निकलना। तो मेरे हिसाब से कहीं इधर उधर जाने की आप कोशिश कीजिएगा, वो भी समय से निकल जाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग ठंड ठंड में निकल जाना भैया, तो ठंड ठंड में अगर आप निकल जाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर गर्मी आपको सताएगी, फिर मत कहिएगा गर्मी लग रही है। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर दिल के तराने गाने नए पुराने 9 बजे से 10 बजे तक वाला। बंदे की आवाज आ रही है।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

का हो जागा, कहीं कहीं निकलना है क्या तुमको? बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा तुम्हें लग रहा कि जाना है भाई तभी निकलना? देखो हम पाई बता देते हैं, लेकिन आज कुछ भी कहो तुम भाई साहब, आज बिल्कुल जो है ना ये रोड बिल्कुल चकाचक है, बिल्कुल चकाचक है। और जैसा जो चकाचक बताए हम आपको, इस समय आप कहीं भी चले जाइए सारा का सारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। हैं? देखो आप इस समय अगर वजीराबाद वाले रोड पर हो और जहां से आप सूरघाट की तरफ बढ़ते हो, थोड़ा सा आपको विलंब होगा, हम उसके लिए माफी चाहते हैं पहले से ही, लेकिन थोड़ी सी ही देर के लिए है, बस 10 और 20 का स्पीड में गाड़ी चल जाएगा बिल्कुल ठीक से। इसके बाद तो सारा का सारा आज हमको बिल्कुल चकाचक लीला लीला ही दिख रहा है, कहीं लाल नहीं है। जो भी लाल होगा हम आपको पहले से ही बता देंगे। ओ लव जी, हम बोले लाल लाल और आपका सामने ही दिख गया ये। मधुबन चौक यानी कि प्रीतमपुरा की तरफ अगर आप जाएंगे तो आउटर रिंग रोड पर, जैसे ही आप मधुबन चौक पर शिवा मार्केट की तरफ लेफ्ट में लेंगे, थोड़ा सा विलंब वहां भी आपको करना पड़ेगा, थोड़ा ही है बाकी तो ठीक है, क्योंकि जो चौराहा है ना, जब आप वहां से रोहिणी ईस्ट की तरफ भी बढ़ेंगे वहां भी थोड़ा सा जाम, और अगर पीछे की तरफ बढ़ेंगे वहां भी थोड़ा सा जाम। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ जाएंगे तो वो बिल्कुल चकाचक है, तो वैसे बंद है तो फिर चकाचक तो होना ही है ना। अब इसका बाद में भैया भैया देखो भाई, सब जगह बिल्कुल ठीक चल रहा। ओए लो ये मोहन नगर पे भाई साहब देख रहे हैं, जब भी हम देखते हैं यहाँ पर हमेशा जाम लग रहा, क्यों? एक तो वो जब आप राजेंद्र नगर की तरफ से आते हैं, फिर उधर से इधर से मुड़ जाते हैं, जब वो आनंद विहार वाले रोड से सीधा आगे जाते हैं, तो जो आगे यू टर्न दिया है ना मोहन नगर से मेरठ वाला जो रोड है, गाजियाबाद वाला रोड जाने की तरफ से, दो तरफ से ट्रैफिक आ जाता है, इस चक्कर में थोड़ा सा आपको विलंब हो रहा होगा, बाकी तो

वो भी है चकाचक। देखिए भाई साहब, बिल्कुल इतना यहां से लेकर वहां दूर तक नीला लाइन दिख रहा है। कहां पर? अगर आप अक्षरधाम से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं, बताइए तो सही, अगर आप दीपाली चौक से मंगोलपुरी फ्लाईओवर होते हुए मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया पीरा गढ़ी उसके बाद भी आप देखेंगे तो पश्चिम बिल्कुल चकाचक रोड है। जाएंगे तो आप सही जल्दी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज संडे है ना, सब लोग घर में ही रहते हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं अगर बहुत जरूरी हो तो भाई सब निकलिएगा, वरना बिल्कुल निकलने का कोई भी जरूरत नहीं है। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के सफर का दूसरा घंटा, जहां दिल के तराने गाने नए पुराने। बादशाह जी को बुला के लाए हैं आपके लिए। हाँ भैया जरा शुरू हो जाओ।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: नानसा का जागृति यूनिट मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में कानूनी सहायता के लिए कॉल करें 1500 पर।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
5: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
6: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
7: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1455।
6: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: आपने, थैंक यू सो मच। संडे को ऐसा लगा कि आपने बिल्कुल मंडे वाली फीलिंग आगे, संडे को मंडे वाली फीलिंग, मंडे को संडे वाली फीलिंग, अरे ऐसा होना चाहिए। हमारे साथ गुप्ता परिवार जुड़ा हुआ है ओखला संगम विहार से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार के संतानी अकोला महाराज जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच है। आपको भी अजय झारखंड से हमारे पास, थैंक यू सो मच भाई। जिन्होंने भैया जी ने अपना नाम नहीं लिखा उनको भी धन्यवाद हम देना चाहते हैं, और आपने शानदार खूबसूरत मौसम बना दिया है, और ईस्ट और वेस्ट रेनबो इज द बेस्ट, बहुत धन्यवाद हम करते हैं आपको, धन्यवाद जी साहब। बहुत अच्छी जानकारी लगी है भगवती चरण वर्मा जी के बारे में आपने, बहुत अच्छी। पंकज ने अमरावती महाराज से हमें बताया है, थैंक यू सो मच है। इसके साथ साथ वर्मा परिवार हमारे साथ जुड़ा, बहुत शुक्रिया। अगर किसी का नाम ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर नहीं ले पाए तो हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे जाने के बाद हिमानी स्टूडियो के अंदर प्रोग्राम आ चुके हैं लेकर, कौन सा, वेस्टर्न म्यूजिक। इसके बाद आशुतोष भारद्वाज आपके साथ होंगे, मेरा वाला सॉन्ग। राजेश कुमार आपके साथ में होंगे, प्रोग्राम होगा उनका आशियाना। उसके बाद में प्रियंका त्रिपाठी आपके साथ, रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम होगा। वीर दमन सिंह मैसेज मसाला मिक्स, ताहिर हसन प्रोग्राम करेंगे आपकी याद आती रहे, और भाई साहब मैं जरा उंगे को उस तरफ को थोड़ा सा पल्ले माए को जाती रहे, ठीक है। तो आप अपना रखिए ध्यान, सुनते रहिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली, एनसीआर का सफर यहीं तक था, दिल्ली के तराने गाने नए पुराने बैक टू बैक के साथ अब चले, बाय बाय।
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है, लड़ी है, लड़ी है, लड़ी है, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी, लड़ी।

0: ड्रग से मुक्ति पाएं, नालसा का साथ अपनाएं। नालसा की डॉन यूनिट से संबंधित जानकारी के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
3: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
2: आयुष्मान भारत अब इलाज की चिंता से आजादी।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर, कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति। महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारे ना
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
1: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉ

0: लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
8: नमस्ते सर, नमस्ते।
7: भाई मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
8: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
7: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
8: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, तारकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
7: कृष्णा जी आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
8: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे

0: इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे, तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको किसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान

समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने, इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है।
लेकिन अब ऐसी लाखों

माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से
स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई।

यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी।

भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है, पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था, इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने

0: आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6। और अभी फिलहाल कुछ ही पल पहले आपने सुना माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का 137वीं कड़ी, और इसमें उन्होंने कई सारी बातों का विशेष जिक्र किया। और आज उन्होंने बात की मुंबई के रहने वाले श्री कृष्ण शेषाद्री जी से, और बिल्कुल जिन्होंने एक बहुत ही रोचक काम किया और एक अलग अनुभव के साथ काम किया है। बिल्कुल कोई उनका हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं था, ना ही उनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन उन्होंने एक वेबसाइट बना दी और बिल्कुल इस वेबसाइट का नाम भी बहुत ही सिंपल रखा है, bharatrajya.com। और बिल्कुल इस वेबसाइट पर आप जाएं और यहाँ पर कोई भी वर्ष आप चुन के डालेंगे तो यहाँ आपको आसानी से पता लग जाएगा कि उस समय भारत के किस हिस्से में किसका शासन था। तो ये बहुत एक सिंपल उन्होंने नाम रखा है www.bharatrajya.com, और इसके लिए उन्होंने ओपन भी रखा है सबके लिए। अगर कोई सजेशन देना चाहता है तो अपने सजेशन के माध्यम से इस वेबसाइट को वो और भी इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। और बिल्कुल साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के बारे में, और इस अभियान के तहत इस समय पूरे देश में वो तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। और बिल्कुल ये आखिरकार हर युवा जो है भारतीय, भारत का, उसकी हेल्थ का सवाल है, उसकी हैप्पीनेस का सवाल है, उसके उज्ज्वल भविष्य का सवाल है, और ये हम सभी का संकल्प होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप भी इसके बारे में कोई पावरफुल स्लोगन देना चाहते हैं तो वो भी उन्होंने इनवाइट किया कि आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। और युवा म्यूजिशियंस है, जो यंग म्यूजिशियंस हैं, उनसे भी बोला है कि कोई सॉन्ग बनाए इसके लिए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग बनाए जिससे कि ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हम अपने युवा को दे सकें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप भी कोई दिल छू लेने वाला शॉर्ट प्ले बना सकते हैं जिससे ड्रग के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हम साफ कर पाएं। और कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए भी बिल्कुल उन्होंने कहा कि कमी नहीं है हमारे देश में, और लगातार इतने सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स अपने कॉन्टेंट के माध्यम से सभी को इंस्पायर कर रहे हैं, तो वो भी अलग अलग भाषाओं में कॉन्टेंट बनाएं और इस दिशा में अपना प्रयास शेयर करें सभी के साथ। और बिल्कुल अपने प्रयासों को आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से हैशटैग के थ्रू शेयर कर सकते हैं, हैशटैग है नशा मुक्त युवा। और बिल्कुल आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उनको इस हैशटैग के थ्रू शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, और अपनी भागीदारी इस रूप में निभा सकते हैं। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6।

बिल्कुल, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात की और लाखों माताओं बहनों को इस योजना से बिल्कुल एक नई ताकत मिल रही है और महिला सशक्तिकरण के रूप में इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएँ हैं, यानी कि देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएँ इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। और साथ ही साथ कुछ चुनिंदा उन्होंने बात की महिलाओं के बारे में। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाया करती थी और फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीज़ें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बटाया करती थी और मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की ज़रूरत थी। पीएम स्वनिधि ने उन्हें आर्थिक मदद मिली और उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया और कारोबार का विस्तार किया। साथ ही साथ बेंगलुरु की TS निगम्मा जी भी एक मिसाल हैं और बहुत प्रेरणा देती हैं सबको। निगम्मा जी ने अपने पति के साथ मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया था, काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की ज़रूरत थी और निगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। साथ ही साथ जब तक महिलाओं का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य भी बढ़ता है और बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की ज़रूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर भी आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप और बिल्कुल इसको हम सलाम करते हैं। साथ ही साथ सलाम करते हैं अपने तिरंगे को भी, क्योंकि इस साल सूर्य पथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर में एक अनोखी यात्रा पर निकला था। फिजी के सुबह में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया, इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा फहराया गया था और बिल्कुल इससे देश के साथ साथ हमारा जुड़ाव और गहरा होता चला जाता है। बिल्कुल हमारे तिरंगे को हम सलाम करते हैं और आप सब बिल्कुल एकजुट होकर उसको सलाम करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

और आज के मन की बात कार्यक्रम में बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमें सुनने को मिली। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, और वहां दो दोस्त हैं आकाश और रोहन, और बिल्कुल उनके आसपास उन्होंने देखी कि इलाके में काफ़ी गंदगी है। और बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े, और धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे और एक टीम भी बन गई उनके साथ में, जिसका नाम उन्होंने रखा क्लीन अप पटवाई। और ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों की सफाई कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा भी हटा चुके हैं, और साथ ही साथ इस बार श्री अमरनाथ यात्रा भी बिल्कुल चली, और स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी प्रेरक तस्वीरें देखने को मिली यहां पर कि कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी और यात्रियों ने मिलकर काम किया और दिन रात सेवा में जुटे रहे। और इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मेट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हमने बताया कि 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया और 10,000 से अधिक यात्रियों को रेस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया, और यहाँ एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। और यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर से बायोगैस उसको में बदला गया, और उसी से क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योति प्रज्वलित की गई थी। तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छी मिसाल है देश भर में सभी के लिए। और अब अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप भी मन की बात में इसको शेयर कर सकते हैं, और ये कार्यक्रम में शामिल भी हो सकती है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। सभी से आप भी सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6।

और बिल्कुल आज हमने सुना मिशन शक्ति सेट के बारे में और इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सिखाने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली थी, जब गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। और इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्रा एक साथ यहां पर इसमें शामिल हुई। और भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में चुनी गई छात्राओं भी इसमें शामिल हुआ और इसमें हिस्सा लिया उन्होंने। और इस पूरे प्रयास का लक्ष्य बहुत ही खास था कि पूरी तरह छात्रों की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की एक तैयारी है बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल को भी अहमियत दी और कहा कि ये केवल मिट्टी के दिए खरीदने तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसका विजन बहुत बड़ा है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की पहुंच इसकी जन भागीदारी बढ़ानी है। और क्रिएटिव वर्ल्ड के साथी और इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज को भी इसमें अहम भूमिका निभानी है। और साथ ही साथ अनेक लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो कि छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बदलाव लेकर आ रहे हैं, उनके बारे में भी आप मन की बात में जरूर लिख सकते हैं और अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे कि देश में दूर दराज बैठे लोग आपकी बातें सुनकर आपके कार्य को देखकर इंस्पायर हो सकें और आपसे प्रेरणा ले सकें। फिलहाल आप भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी 102.6।

0: And before we lose control, let's take an itsy-bitsy little break. I'll see you on the other side. Please stay with me.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
2: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी
3: न तेज बारिश से दिक्कत न ट्रैफिक का झंझट नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत घंटों का सफर मिनटों में
0: Welcome back. You're with us on Akashwani Rainbow. The show's called Play It Cool. And we have messages here from M. Rajkumar from Trichy, Tamil Nadu. And of course, this is Rajkumar K. Santani from Akola, Maharashtra, who has also marked his attendance. And in the meantime that he is typing, well, let's move on. We were talking about communication. Yes, communication. It has become such an important skill in these days. I mean, forget us elders. Even young children are under the scanner. Right down to the admissions in school. Even, you know, the very young children, they're very excited. The parents are very excited that they are about to get their children finally into school life. But when they go there, they are

0: That was Jonas Brothers and Rascal Flatts with the I Dare You. And of course, I dare not dare you. I can just request, please allow me to take a teeny weeny itsy bitsy break, and I will see you on the other side.
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
5: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
4: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
6: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
7: इग्नोर नहीं, याद करो।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
10: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
11: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
12: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
13: आज की रात मजा,
12: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
11: म्यूजिक मस्ती।
14: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
15: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
11: म्यूजिक मस्ती।
0: Welcome back, you're with us on Akashwani Rainbow. The show's called Play It Cool. And yes, your messages are super cool. And I have this message here from Abhi. And Abhi, I wish you had written where you're writing in from. But anyway, you've sent a beautiful message.

0: Lakshya, I hope that worked for you. And of course, please allow me to take yet another break, and I will see you on the other side of this break.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ. गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर.

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दो दिन की आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचे। वे अलापुजा में केरल कौमोदी दैनिक में जयंती समारोह में शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में आयोजित उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन उनके तीन दिवसीय दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल्स के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। मध्य नेपाल में अचानक आई बाढ़ के मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 734 हो गई। 2500 लोग अभी तक लापता हैं। मौसम विभाग ने उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी ललियान ने जुआला चांगेत को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है। और भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ 2020 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समयानुसार मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। तो ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हाँ जी मैगा जी, मैं आ गया हूँ आपके साथ आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में। और यहाँ पर आप अपने गानों की रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे साथ लाइव, और सुन सकते हैं आपके फेवरेट गाने जो भी आप सुनना चाहते हैं बिल्कुल। और हम आते हैं आपके लिए, बहुत इंतजार करते हैं आपके लिए आपके मैसेजेस का। 9868107070 ये नंबर है, नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में आकाशवाणी रेनबो FM रेनबो के नाम से, और जुड़ जाइए हमारे साथ। अपनी रिक्वेस्ट है कोई भी, वो अपना गाने का नाम बताइए, फिल्म का नाम बताइए, सिंगर का नाम बताइए, और जुड़ जाइए। क्यों पसंद है आपको वो गाना वो भी हमें बताइएगा जरूर। क्या कुछ मेमोरी आपके साथ उस गाने की, और कैसे एंजॉय कर रहे हैं आज का दिन वो भी बताइए, क्या कुछ कर रहे हैं आज। फिलहाल सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो। मैं हूं आशुतोष आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, गुड आफ्टरनून।

हाँ, क्या बात है जी, आप बिल्कुल मूड में आ चुके हैं और हम भी बिल्कुल आपके साथ फ्लेवर में जुड़ चुके हैं। मेरा वाला सॉन्ग में आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है आकाशवाणी रेनबो पर, और हमारे पास रिक्वेस्ट इतनी बार बार क्या आ रही है भाई साहब, मैं क्या बताऊँ आपको। क्या क्या शामिल करें, कैसे शामिल करें समझ नहीं आ रहा, और अगर कोई छूट जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। और फिलहाल जो बिल्कुल मैसेज हमारे पास आ रहा है, पहला यश सिंधे इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और बिल्कुल एक बहुत ही अमेजिंग याद दिलाने इन्होंने दिलाई है आज हमें, और फिल्म साजन के 35 साल पूरे हो गए हैं जी। बिल्कुल आज के दिन वो रिलीज हुई थी 1991 में, अमेजिंग फिल्म थी और रोमांटिक थ्रिलर फिल्म, और बिल्कुल दो अवार्ड भी इस फिल्म को मिले थे, फिल्म फेयर अवार्ड्स, और बिल्कुल और नामांकन भी बहुत सारे हुए थे, नॉमिनेशन इतने सारे हुए थे इस फिल्म के। लेकिन बहुत ही अमेजिंग यादें हैं इस फिल्म के साथ हमारी, बिल्कुल आपके लिए वो गाना हम जरूर चलाएंगे इस फिल्म से। फिलहाल हमारे पास और कौन कौन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सौरभ बनेजा इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है, और कहते हैं कि काली हमें तो बस गाने सुनने हैं और कोई भी हो, हमारी कोई चॉइस नहीं है, आप जो बजाएंगे हमें वही पसंद है, थैंक यू सो मच, बस ये कंफर्ट जोन हमें मिलता रहे आपकी ओर से, थैंक यू सो मच। हितेंद्र दास इस वक्त एसएम से हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं। और कविता इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड से टिहरी गढ़वाल से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास है, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना, और ये है राहत इस वक्त हमारे साथ, और ये बिजनौर से हमें सुन रहे हैं, और सुनीता शर्मा इस वक्त शालीमार बाग से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, थैंक यू सो मच आपका भी जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। और निर्भय कुमार सिंह पटना से बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बिल्कुल बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। और अमित उपाध्याय इस वक्त सासाराम से, हेलो हेलो कैसे हैं आप, और साथ ही साथ जावेद आलम इस वक्त जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इस्लाम सलमानी महिपालपुर से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और साथ ही साथ सत श्री अकाल पाजी, कैसे हैं आप, हम बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। और ये हमें मैसेज भेज रहे हैं प्रदीप सलूजा इस वक्त जनकपुरी से, और मैजेंटा मेट्रो के पास हैं जी, थैंक यू सो मच इतनी सारी जानकारी देने के लिए और बिल्कुल कनेक्ट रहने के लिए हमारे साथ, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं और स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं कि हम आपको लगातार सुन रहे हैं। फिलहाल साजन फिल्म का ये अमेजिंग ट्रैक खास निकल रहा है, आइए इस गीत को सुनते हैं और इस शो को आगे बढ़ाते हैं। आप भी अपने मैसेज लगातार हमारे साथ शेयर करते रहिए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, उसका रीज़न भी शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल, और हमने आपके मैसेज में वो प्यार देखा है जो आप भेजते हैं, बिल्कुल उसको दिल से आप लिख के भेजते हैं। फिलहाल हमारे पास और भी बहुत सारे तमाम मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, और साथ ही साथ अफसाना खानम भी इस वक्त हमारे साथ हापुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से कनेक्टेड है और बिल्कुल सुनना चाहती हैं एक और बहुत ही बेमिसाल गीत। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, हम बिल्कुल चलाएंगे। और फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं अमित, इस वक्त सासाराम से कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ एक और मैसेज है मोहम्मद वसीम का, इस वक्त हमारे साथ पहलगांव कश्मीर से हमारे साथ कनेक्टेड है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरुण गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मौसम गुप्ता, शिवम गुप्ता बिल्कुल कनेक्टेड हैं हमारे साथ ओखला संगम विहार से, और गुड आफ्टरनून हमें भेज रहे हैं इस वक्त रमेश कुमार विश्वकर्मा, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और ये हैं वाराणसी से, इस वक्त हमें सुन रहे हैं ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और साथ ही साथ रिंकू कुमार, रजनीश कुमार, अरुण कुमार, संजय कुमार भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और बुलंदशहर से हमें ये सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बहुत सारे स्टिकर्स भेजे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख के भेज रहे हैं, और फूल बहुत सारे हमारे सामने डांस कर रहे हैं, बट नाम नहीं लिखा आपने, नाम प्लीज़ लिख दिया कीजिए जब भी आप मैसेज भेजते हैं। जैद इस वक्त हमारे साथ गाज़ियाबाद से कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ होली चौक उत्तम नगर से हमारे साथ जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल और अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बिल्कुल 9868107070 ये नंबर है, इस पे हमें मैसेज कीजिए, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं, रीज़न ज़रूर बताइएगा उसका। और साथ ही साथ सलीम अख्तर इस वक्त रेशमा बेगम के साथ सुन रहे हैं अलीगढ़ से, इस वक्त हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम भी जवाहर कैंप कीर्ति नगर से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। और एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, और आनंद विहार से रेलवे कॉलोनी से इस वक्त हमें सुन रहे हैं किशन वंजानी और नीलम स्वाति और किशु, इस वक्त हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और बिल्कुल एक मैसेज और आया बट नाम नहीं लिखा है, तो जब भी आप मैसेज भेजें नाम प्लीज़ अपना मेंशन किया कीजिए जब भी आप हमें मैसेज भेजते हैं। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग ट्रैक हम निकाल रहे हैं फिल्म मोहब्बतें से, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, बहुत ही रोमांटिक ट्रैक है, इस मौसम में बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ट्रैक को सुनते वक्त आपको। और इस बीच एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है मलकापुर से, अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, कविता इस वक्त हमारे साथ सुन रही हैं, और ये भी थोड़ी सी नाराज़ हैं, कह रही हैं कि गाने नहीं सुन पाती हैं वो अपने फेवरेट वाले, बट डोंट वरी, हम कोशिश पूरी करेंगे कि अगर आपका गाना मिल जाता है तो हम ज़रूर उसको प्ले करेंगे। फिलहाल इस गीत को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर।

0: आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
1: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
8: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
9: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
10: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
9: म्यूजिक मस्ती।
11: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
12: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
9: म्यूजिक मस्ती।

बिल्कुल जी, वेलकम है एक बार फिर से आपका। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और फिलहाल हमारे पास मैसेज आ रहा है मेरठ कैंट से, बिल्कुल दिग्गज दर्शन और कविता गौड़ इस वक्त हमारे साथ सुन रहे हैं ये प्रोग्राम। और बिल्कुल इनका मैसेज मिस हो गया था, सबसे पहला मैसेज इन्होंने हमें भेजा था और ये गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग गाना है, हमने क्यों कर दिया आपके लिए, आपको पता लग ही जाएगा कि कौन सा गाना है आपका। फिलहाल हमें सुनते रहिए और स्टे ट्यून्ड और लोगों को भी सुनाते चले जाइए। फिलहाल एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है और ये है इस वक्त अमित सासाराम से हमारे साथ कनेक्टेड है और प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और साथ ही साथ सलीम अख्तर, रेशमा बेगम इस वक्त अलीगढ़ से भेज रहे हैं कि हम भी हैं। बिल्कुल हम भी हैं, हमें याद है। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे कैसे बढ़ो, इतने सारे लगातार भरमार हो गई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है मैसेज की। और एक और मैसेज है डॉली का, इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हाँ गाना सुनना चाहती हैं, लेकिन कहते हैं कि पहली पसंद किसकी है, हमको हम इसे चुरा लो, क्या बात है क्या बात है। मतलब गाना अच्छा लगा इनको, थैंक यू सो मच, ये सुन के ही हमें अच्छा लग गया, पढ़ के हमें अच्छा लग गया। और पुनीत सिंघल इस वक्त हमारे साथ अमिता सिंघल के साथ ये सुन रहे हैं। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास है और ये नमस्कार भेज रहे हैं मुरादाबाद से इस वक्त मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी और लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, ये सभी हमारे साथ मिलकर ये वाला प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और राजकुमार इस वक्त अकोला महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड, गुड आफ्टरनून भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल जो जो बातचीत हो रही है हमारे मैसेज की, वो उनको बहुत पसंद आ रही है और गाने भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। और बिल्कुल रक्षाबंधन बिल्कुल अच्छा से बीता, बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन हमारी प्यारी बहन एमपी से इनके पास नहीं आ पाई और बिल्कुल दो छोटी छोटी उनकी बेटियां हैं, बिल्कुल उनकी पढ़ाई की वजह से वो नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अगर उनसे वीडियो कॉल की होगी ना तो बिल्कुल आपने बिल्कुल उनको मिस नहीं किया होगा। और उन्होंने राखियां कुरियर पर भिजवा दी और उनको मिल भी गई, बहुत अच्छा लगा। और आपने बिल्कुल आज थोड़ा सा दूर से इस बार राखी मनाई।

0: लेकिन मना ली फाइनली, उनसे बात की, अच्छा लगा। और रविंद्र इस वक्त हमारे साथ सिरसा हरियाणा से कनेक्ट हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुज राठी इस वक्त मेरठ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और बिल्कुल वो भी गाना सुनना चाहते हैं, लेकिन ये वाला गीत बहुत ही अमेजिंग है, एनर्जेटिक है, उदित नारायण की आवाज़ में है, फिल्म गदर एक प्रेम कथा से। आइए इस गीत को सुनते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग। और अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो भाई भेज दीजिए 9868107070 पर।
1: मैं

बिल्कुल। और बिल्कुल इस जो प्रोग्राम की ना खासियत ही है कि हम बिल्कुल इतना प्यार बांटते हैं और कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए छोड़ आते हैं, एक दूसरे के दिलों में हम जगह बना लेते हैं। और फिलहाल आपके मैसेजेस के माध्यम से हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 90s का जो दौर है ना बिल्कुल वापस लौट चुका है, बैक टू हम बिल्कुल 90s के उस म्यूजिकल दौर में पहुँच चुके हैं। और इतने अमेजिंग ट्रैक्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 1:36 हो चुके हैं और साथ ही साथ 40 सेकेंड्स भी हो चुके हैं, अपनी घड़ियाँ मिला लीजिए। और फिलहाल आज वैसे तो छुट्टी का दिन है, संडे मना रहे हैं हमारे साथ आप, तो हमें आपके साथ जो ये टाइम है ना बहुत अच्छा लग रहा है। और फिलहाल स्मिता इस वक्त स्मिता सिंह मेघालय से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत ही अमेजिंग ट्रैक इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, वो हम बिल्कुल आपके लिए क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा सैड सॉन्ग है, बट ऐसे तड़क भड़क वाले गानों के बीच ऐसा वाला गीत भी बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल हमारे साथ राखी शायद हमारे साथ जुड़ी हैं इस वक्त और वो भी मैसेज भेज रही हैं हमें, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है और ये है इस वक्त हमारे साथ हर्षवर्धन पांडे, हरवंश पांडे, AK पांडे, और ये इस वक्त हमारे साथ पन्ना से कनेक्टेड है, मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और एक और मैसेज हमारे पास ये आ रहा है बुलंदशहर से मिस अब्बासी का, और उनके पूरा परिवार इस वक्त हमें सुन रहा है, फारूक अली खान, फैजी, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा इस वक्त हमें सुन रहे हैं। और एक और मैसेज है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट रहे हैं, थैंक यू सो मच। स्नेहा भी इस वक्त हमारे दिल्ली से जुड़ी हैं और कनेक्टेड हैं हमारे साथ, हेलो बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये भोपाल से इस वक्त कोलार रोड से राम बाबू मालवीय, मनीषा मालवीय इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हमें नमस्कार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल ये जो ट्रैक है ना वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा है इस ट्रैक को सुनने बगैर। फिलहाल आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 9868107070, इस पर आपको मैसेज भेजना है, अपने गाने का नाम, गाने के बोल भेजना है, मूवी का नाम भेजना है, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका, क्यों सुनना चाहते हैं वो गीत, वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करना है आपको। आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, आशुतोष आपके साथ जुड़ा हुआ है।

नहीं जी, आपको आंख बिल्कुल नहीं ऐसे भरनी है, मुस्कुरा कर रहना है और मुस्कुराते रहना है हमारे साथ, क्योंकि हम आपसे ये वादा मानते हैं। और फिलहाल अनुज राठी इस वक्त मेरठ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और अपनी दोस्त पूजा के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं राजा हिंदुस्तानी का बहुत ही अमेजिंग ट्रैक उदित नारायण की आवाज़ में। बिल्कुल हम आपके लिए क्यों करेंगे दोस्त, और बिल्कुल आपको इसको थोड़ी देर में आपको सुनने को मिलेगा ये वाला गीत। और साथ ही साथ हमारे साथ उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज घोरवाल, कमला रानी और भानु प्रकाश इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और जर्मनी से सनी कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच इतनी दूर से हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए आपका। वीरू बख्शी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड, और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बड़े अच्छे लग रहे हैं इनको, और हमारे जो श्रोता है जो गाने इतने अच्छे अच्छे रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो गाने तो अच्छे होने ही हैं बिल्कुल। और बिल्कुल एक और मैसेज आ रहा है, और ये है प्रणव शिंदे मुंबई से, कहते हैं कि सभी की रिक्वेस्ट बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, बिल्कुल आपने सही फरमाया जी, सभी की रिक्वेस्ट बहुत अच्छी है, गाने बड़े अच्छे अच्छे सुनते हैं लोग, है ना। हमें तो बिल्कुल आज उनकी रिक्वेस्ट सुनने के बाद ये लग रहा है, और बिल्कुल माई ब्रदर ये गाना सुन रहे हैं और उनके लिए ये गाना वो सुनवाना चाहती हैं। स्नेहा इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, और नीतू उपाध्याय इस वक्त, अनु उपाध्याय, रीना पांडे और अक्षिता पांडे इस वक्त सासाराम बिहार से कनेक्टेड है। फिलहाल ये वाला गीत निकाल रहे हैं हम आपके लिए, कनेक्ट रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6, और प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग आशुतोष के साथ।

और हमारे पास मैसेज आ रहा है रिंकू कुमार का, रजनीश कुमार का, अरुण कुमार और संजय कुमार, और ये बहुत ही एक अमेजिंग गाना सुनना चाहते हैं मुकेश साहब की आवाज़ में, धरती कहे पुकार के। और बिल्कुल उस फिल्म से ये वाला गीत हम जरूर आपके लिए प्ले करने वाले। और मैसेज हमारे पास आ रहा है एक और, ये है हमारे साथ कमलेश मुकुंद सचिन दीपांशु इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं दिल्ली से, लेकिन फिलहाल हम ये वाला गीत मुकेश साहब की आवाज़ में प्ले करने वाले हैं खास आपके लिए। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी 102.6।

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है, तू

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: बिल्कुल जी, और वेब्स ओटीटी को डाउनलोड कर लीजिए और सुनते रहिए हमें लगातार ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से भी। फिलहाल बस अब चलने का वक्त हो चुका है, लेकिन चलने से पहले एक और रिक्वेस्ट है राजेश कुमार की। इस वक्त हमारे साथ गोवा से, नॉर्थ गोवा से कनेक्टेड हैं और गाना सुनना चाहते हैं। मन फिल्म का बहुत ही अमेजिंग गाना है वाला। मोहम्मद फुरकान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, कोई बात नहीं भाई साहब। असद प्रकाश सनोठिया इस वक्त रोहिणी से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास ये आ रहा है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, प्लीज़ अपना नाम जरूर मेंशन किया कीजिए। और यशोदा इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है डॉली जी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच, एंजॉय किया आज आपने अपना हमारा शो। और साथ ही साथ कीर्ति निर्मल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन अब चलने का वक्त हो चुका है, राजेश आ चुके हैं स्टूडियो में और बिल्कुल जुड़ेंगे कुछ ही पलों में आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, आशुतोष लेते हैं आपसे अनुमति। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और संडे को ऐसे एंजॉय करते जाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा पहल से राष्ट्रीय ध्वज ने संपूर्ण धरती की अद्भुत यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज केरल के अल्पुड़ा में दैनिक केरल कौमुदी के 115वें वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में

हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। मध्य नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 734 हो गई है। 2500 लोग अभी तक लापता हैं। चीन में भारतीय दूतावास ने सूचित किया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों ने नेपाल में हाल की अचानक बाढ़ में लापता हुए विदेशी नागरिकों की सूचना देने के लिए 24 घंटे चलने वाली अंग्रेजी भाषा में हॉटलाइन शुरू की। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने चिली के सैंटियागो में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध उपमंत्री पाला एस्टेवेज वेन्स्टीन के साथ बैठक की। मौसम विभाग ने ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी ललियान जुआला चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है। और भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समयानुसार मैच रात 8 बजे। FM रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है छोटे उस्ताद। और इस प्रोग्राम को लेकर मैं आप तक पहुंचा हूं, मेरा नाम है राजेश कुमार। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हम बात करते हैं अपने छोटे उस्तादों की, नन्हे मुन्ने साथियों की, उनके साथ क्या क्या चीजें चल रही हैं। एज ए पेरेंट आप सभी लोग जो लगातार उनका ध्यान रखते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, और कुछ और बातें होती हैं जो हम सब एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो अगर आज के छोटे उस्तादों की बात करें तो समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदली हैं। हम जब बच्चे थे तो हमारे समय में कुछ चीजें अलग थी, लेकिन अब चीजें अलग है। आज किसी बच्चे के सामने पढ़ाई से जुड़ा कोई सवाल आता है तो जवाब तुरंत नहीं मिलता, तो उसके पास एक आसान रास्ता है और वो है AI से पूछ लेना। सवाल लिखिए और कुछ ही सेकंड में जवाब सामने। किसी अध्याय को आसान भाषा में समझना हो, किसी शब्द का मतलब जानना हो, या किसी विषय पर जानकारी चाहिए हो, AI काफी मदद कर सकता है। सोचिए, जिस चीज को समझने में कभी आधा घंटा लग जाता था वो अब कुछ मिनट में समझ आ सकती है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल हमारे सामने भी आता है, और सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या हम AI का इस्तेमाल पढ़ाई को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं या अपनी मेहनत बचाने के लिए? दोनों में थोड़ा फर्क है, और शायद इसी फर्क को समझना आज बहुत जरूरी हो गया है। तो आज छोटे उस्ताद में हम फर्क समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे लिए, जो हमारे छोटे उस्ताद हैं उनके लिए AI का इस्तेमाल करना बहुत आसान तो है, लेकिन उससे उनके लिए क्या वाकई में फायदा है, या फिर कुछ नुकसान भी लेकर आया है AI? इन सभी चीजों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं इस गीत के साथ।

हमारे नन्हे उस्तादों के लिए, छोटे उस्तादों के लिए खेलना जितना जरूरी है, पढ़ना भी उतना जरूरी है, और जितना जरूरी पढ़ना है उतना जरूरी खेलना भी, यानी कि दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। और इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा ये जाता है कि कुछ बच्चे पढ़ते तो खूब है, लेकिन जब आउटडोर एक्टिविटीज में भाग लेते हैं या फिर उनके शारीरिक विकास की बात करें, तो अगर वो जब खेलते नहीं है ना बाहर जाकर मैदान में, पार्क में, या फिर कुछ इस तरह का आउटडोर गेम, तो फिर उनके साथ लगता है कि शारीरिक विकास जो है वो हो तो रहा है, लेकिन जितना चुस्त उस बच्चे को होना चाहिए शायद उतना चुस्त नहीं है। तो खेल हमारा जो है बहुत एक तरह से व्यक्तित्व बनाने में भी मदद करते हैं, तो खेलना भी ज़रूरी है पढ़ने के साथ। तो पढ़ने की हम बात कर रहे थे, और पढ़ने से ही ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि बच्चे जो हैं AI की मदद से भी अब पढ़ रहे हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को विज्ञान का कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, वो AI से कहता है कि इसे मुझे बिल्कुल आसान भाषा में समझाओ। AI उसे उदाहरण देकर समझा देता है। यहां तक तो बात अच्छी है, लेकिन अगर उसी बच्चे को होमवर्क मिला और उसने सवाल पढ़े बिना ही पूरा होमवर्क AI से करवा लिया, तो अगले दिन क्या होगा? होगा क्या? कॉपी में उत्तर बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन अगर शिक्षक उसी बात को अपने शब्दों में पूछ ले कि बताइए, अपने शब्द में बताइए जो लिखा है आपने, तो फिर जवाब देना हो जाएगा मुश्किल। यानी काम तो हो गया, लेकिन पढ़ाई कहीं पीछे रह गई। शायद इसीलिए AI को हम एक ऐसे दोस्त की तरह देखें जो जरूरत पड़ने पर मदद करता है, लेकिन हमारी जगह पढ़ाई नहीं करता, और हमें उसे हमारी जगह पढ़ाई करने भी नहीं देना है।

सावन आया और आकर चला गया और अब भादो आ गया है। मौसम तो यूं ही आता है और जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहती हैं और वो है हमारे नन्हे नन्हे साथियों की, नन्हे मुन्ने दोस्तों की, छोटे उस्तादों की जो जिज्ञासा है, जो नए नए सवाल हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और वो लगातार एक से बढ़कर एक होते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि वाकई में जो बच्चे ने सवाल पूछा है तो बहुत इंटरेस्टिंग और इसका जवाब भी उतना ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना सवाल इंटरेस्टिंग होता है और जवाब भी उतना इंटरेस्टिंग होता है, फिर वो जो सवाल है हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो इस तरह की कुछ यादें हम बनाते हैं अपने छोटे उस्तादों के साथ जब ये जो लगातार सीखने की प्रक्रिया में हम उनके साथ होते हैं। और हम आज जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से होमवर्क करने में AI की मदद ली जा रही है और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं और क्या उसका हमारे छोटे उस्तादों पर असर पड़ रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक तरीका हम मिलकर आजमा सकते हैं और वो ये है कि कोई सवाल अगर आया तो पहले खुद कोशिश करें, अगर जवाब नहीं मिलता है तो AI से पूछें, लेकिन सीधे पूरा उत्तर लेने के बजाय

ये कह सकते हैं कि मुझे एक संकेत दो या फिर इसे एक उदाहरण देकर समझाओ, फिर जो समझ में आया उसे अपनी भाषा में हम लिख सकते हैं। जैसे अगर गणित का सवाल है तो पहले खुद हल करने की कोशिश करें, जब खुद हल ना हो पाए और ज़रूरत पड़े तो AI से अगला कदम समझने की कोशिश हम कर सकते हैं। अगर इतिहास का सवाल है तो पहले किताब पढ़ना, फिर AI से जो कठिन हिस्सा होता है उसमें अगर हमें किताब में समझ में नहीं आ रहा तो हम AI से पूछ सकते हैं। इससे AI हमारे लिए काम करने के बजाय हमें काम समझने में मदद करेगा और शायद पढ़ाई भी थोड़ी कम बोझ वाली लगेगी। और कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और जब उसमें हमारा मन लगने लगता है ना, तो फिर वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और एक एक करीब करीब कहते हैं ना कि किसी चीज़ में एकदम बारीकी से जब किसी को समझने की हम कोशिश करते हैं तो फिर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं और इस तरह से हम अपने आप को और बेहतर बना पाते हैं।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है छोटे उस्ताद, मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, छोटे उस्तादों की हम बात कर रहे हैं और AI का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं अपने होमवर्क को करने के लिए या फिर किसी और काम में या कोई भी जब हम सवाल

हल होता है हमारे सामने, हम उसमें फंस जाते हैं और सोचते हैं कि इसका जवाब जल्दी से जल्दी हमें मिले, तो हम एआई का इस्तेमाल कर लेते हैं। और खासकर आज हम बात कर रहे हैं छोटे उस्तादों के साथ जब इस तरह की चीज़ें चलती हैं उसकी। तो आप भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, आप भी अपनी बातें बता रहे हैं हमें और कह रहे हैं कि क्या खास है एआई में और एआई के साथ साथ कुछ चीज़ें जिनका ध्यान हमें रखने की ज़रूरत है। डॉली लिखती हैं कि एआई का फ़ायदा है लेकिन बच्चे जब हर सवाल के लिए इसका यूज़ करते हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा, मेमोरी पर भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा एआई की जब बात चली है तो प्रदीप सलूजा जी जनकपुर के हमारे रेगुलर लिसनर हैं, इन्होंने क्या किया कि एआई अपनी एआई का इस्तेमाल किया और एक अपनी फ़ोटो भेजी है, लिखा है कि ये मेरी पिक एआई बॉस ने बनाई है, एकदम आपको टॉम क्रूज की तरह बना दिया है और बहुत कमाल की पिक आपने बनाई है। और देखिए अब एआई का इस्तेमाल हर कोई अपने हिसाब से करता है और अच्छा लगा कि आप सभी लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एआई के इस्तेमाल के साथ साथ कुछ सावधानियां भी ज़रूरी हैं। राजकुमार के संतानिया एकोला महाराष्ट्र से भी इस विषय पर अपनी बातें लिख रहे हैं। और सत्यप्रकाश सनोठिया ने लिखा रोहिणी दिल्ली से कि जब नया नया कैलकुलेटर आया तो लोगों ने अपने दिमाग से गणना करनी छोड़ दी, इसका नतीजा ये हुआ कि दिमागी गणना करने की शक्ति अत्यंत मंद पड़ गई। ऐसा ही एआई के साथ भी हो रहा है, बिल्कुल सही आपने कहा है। हमें लगातार अपनी कोशिश जो है वो जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनको इस्तेमाल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अभी नहीं कल्पना कर पा रहे हैं लेकिन आने वाले समय में वो चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही हैं। तो तकनीक का हमें इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में करना है, लेकिन हमें एक ऐसा भी बैकअप रखना है ताकि कभी किसी तरह की अगर मुश्किल आए तो फिर हमारे लिए ऐसा ना हो कि हम पूरी तरह से उस तकनीक पर निर्भर हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं लगातार इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी बातें भी हम तक पहुँचा रहे हैं और हम बहुत सारी बातें और भी आपको बताने वाले हैं।

0: बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
6: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
5: इम्पॉसिबल
6: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
9: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
8: अल्फा जेन,
9: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक। हिमालय की गोद से लेकर
8: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
9: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
8: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
9: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
8: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
9: तो सुनना ना भूलें
8: रेनबो डेस्टिनेशंस
9: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छोटे उस्ताद में। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कैसे हमारे जो छोटे उस्ताद हैं एआई का इस्तेमाल करते हैं अपने होमवर्क में, और किन किन चीजों से उन्हें दो चार होना पड़ता है, किन चीजों की

में जरूरत है उन्हें बताने की कि इन चीजों का आप ध्यान रखिए ताकि आपके लिए आसान हो, आपकी पढ़ाई बेहतर हो और आप भविष्य में अच्छा कर पाए। तो एआई की हम बात कर रहे थे, एआई के साथ एक और सावधानी जरूरी है कि ये है बात कि जो जवाब एआई देता है वो हर बार सही हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी वो ऐसी भी बात बता सकता है जो सुनने में बिल्कुल सही लगे लेकिन असल में गलत हो। नाम, तारीख, घटना, आंकड़े या किसी किताब के बारे में भी गलती हो सकती है। बच्चे को ये पता भी नहीं चलेगा कि जवाब गलत है क्योंकि एआई अक्सर जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है। इसलिए खासकर किसी प्रोजेक्ट या परीक्षा की तैयारी में मिली जानकारी को किताब, शिक्षक या भरोसेमंद वेबसाइट से एक बार जांच लेना हमेशा अच्छा रहता है। एआई से जवाब मिल जाना और सही जवाब मिल जाना ये दोनों हमेशा एक बात नहीं है क्योंकि कई बार आपने भी महसूस किया होगा अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ जानकारियाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें कुछ त्रुटि भी दिखाई देती है। तो ये चीज़ें जो हैं मान लीजिए कभी बहुत गंभीर अगर बात नहीं हुई तब तो चल जाता है लेकिन पढ़ाई की अगर बात हो और वो बात जो हमेशा हमारे दिमाग में रहेगी, हमारे जहन में रहेगी, तो इन सभी चीज़ों पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। और कहा भी जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी रॉन्ग बिकॉज मॉडल्स प्रिडिक्ट लाइकली वर्ड्स इंस्टीड ऑफ वेरीफाइंग फैक्चुअल ट्रुथ। तो फैक्चुअल ट्रुथ जो है बिना उसको वेरीफाई किए अगर एआई इस तरह से जवाब देगा तो हमारे लिए भी मुश्किल होगी और हम नहीं चाहते कि हमारे जो छोटे उस्ताद हैं वो किसी भी मुश्किल में पड़े क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है जब हम किताबों से पढ़ते हैं या फिर कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से कोई जानकारी हासिल करते हैं लेकिन वो जानकारी होती है एकदम पुख्ता, बहुत सटीक और वो हमेशा हमारे काम आती है।

बिल्कुल, साथ चलने से ही मंजिल नजर आएगी। जब छोटे उस्तादों को मिलता है बड़े उस्तादों का साथ, यानी कि पेरेंट्स का साथ, उनके साथ साथ फैमिली के जो और लोग हैं उनका साथ मिलता है, तो फिर बहुत सारी जो मुश्किलें होती हैं वो आसान हो जाती है। और इसी गाने में अभी जो हमने सुना उसमें एक लाइन थी कि मेहनत के आगे सब तदबीरें बेकार, होती उसकी जीत है जो ना माने हार। तो हार हमें बिल्कुल नहीं मानना है, और हार जो है वैसे भी बहुत कुछ सिखा कर जाती है, तो हार को भी हमें एक पॉजिटिव तरीके से लेना है। मान लीजिए कोई सवाल हम हल नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम उसको सीखने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, और थोड़ा सा समय अगर हम देंगे

तो फिर समय के साथ सब चीजें हमें आ जाएंगी और हम उस सवाल को हल भी कर लेंगे। वैसे अगर बात करें हम एआई से जुड़ी हुई और हम छोटे उस्तादों और एआई के जो आपसी समीकरण की बात हम कर रहे हैं और आप भी लगातार इसमें अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं। कासगंज से मास्टर राधेश्याम कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम स्वयं हल करते हैं तो वो ज्ञान स्थायी होता है, जबकि एआई के प्रयोग से ज्ञान जो है वो स्थायी नहीं होता है। ये बात इन्होंने कही है। और ये भी बात है कि सतप्रकाश सनोठिया जी रोहिणी से कहते हैं कि कई बार एआई ने मैथ्स के प्रश्न गलत बताए, संदेह हुआ तो रीचेक करने को कहा तो उसने गलती मानी और फिर सही उत्तर बताया। वैसे देखा जाए तो एआई भी अभी छोटे उस्ताद की तरह ही है, बच्चा ही है। हाँ, ये अलग बात है कि जब हम उसको गलती का एहसास कराते हैं तो बहुत ही मासूमियत के साथ सॉरी सॉरी सॉरी, ये शायद आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गलत हुआ मेरे से, ऐसा एआई बोल भी देता है, सॉरी भी बोल देता है। लेकिन अभी हम एआई को अभी क्या, कभी भी ऐसा हो कि हम कहते ना कि मानव जो मस्तिष्क है वो अपने आप में बेमिसाल है, बहुत सारी संभावनाएं समेटे हुए, और एआई भी तो हमने ही बनाया है। तो एआई का इस्तेमाल करते समय हम ये ध्यान दें कि एआई जो है गलती कर सकता है। एक और परेशानी तब हो सकती है जब हम एआई पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, जैसे हर सवाल का जवाब एआई से पूछना, हर निबंध उससे लिखवाना, हर कहानी उससे बनवाना, या किसी भी विषय पर अपनी तरफ से सोचने की कोशिश ही नहीं करना। धीरे धीरे हमें आसान रास्ते की आदत हो सकती है, फिर जहाँ थोड़ा सोचने, पढ़ने या गलती करने की ज़रूरत होगी वहाँ भी हम तुरंत तैयार जवाब ढूंढेंगे। पढ़ाई में सिर्फ सही उत्तर मिलना ही काफ़ी नहीं है, सवाल को समझना, गलती करना, फिर से कोशिश करना और अपनी बात खुद कहना भी सीखने का हिस्सा है। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे लिए पढ़ाई भी आसान हो जाती है और आने वाला रास्ता भी।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है छोटे उस्ताद, मैं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, छोटे उस्ताद किस तरह से अपना होमवर्क करते हैं, एआई का कैसे इस्तेमाल करते हैं और किन चीजों को ध्यान से देखने की जरूरत है, कहां हमें सावधान रहने की जरूरत है, इस पर हम आज लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और अब तक तो बात हमने की होमवर्क तक, लेकिन अब थोड़ा उससे आगे जाते हैं। एआई से बात करते समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें अपनी निजी जानकारी जो है वो बिल्कुल ना डालें, अपना पूरा पता, फोन नंबर, पासवर्ड, स्कूल की ऐसी जानकारी जिससे पहचान हो सके, या परिवार से जुड़ी निजी बातें साझा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चों को यह समझना भी जरूरी है कि इंटरनेट पर हर दोस्ताना दिखने वाला व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता है। अगर एआई कोई वेबसाइट या ऑनलाइन व्यक्ति ऐसी जानकारी मांग रहा है जिससे बच्चा असहज महसूस करे, तो वहां रुक कर किसी बड़े से बात करना बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं ऐसी जिनमें हम सभी लोगों को कोई भी जो तकनीकी रूप से चीज हमारी जिंदगी में आ रही है, जिसका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और आजकल जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड चल रहा है, जिस तरह से जो बहुत सारी चीजें आप अखबारों में लगातार पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, तो उसमें हमें कोशिश यही करनी है कि जब जरूरी हो ना तभी हम इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करते समय भी हम कुछ चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें जो हमारी निजी जानकारी

है वो हम बिल्कुल भी इस तरह की वेबसाइट्स पर या एआई पर साझा ना करें जिससे उसका दुरुपयोग हो सके। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और जब इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए तकनीक का इस्तेमाल आसान हो जाता है और हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल चलती रहती है।

बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे जो छोटे उस्ताद हैं उनको जरा भी कम समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो ठानते हैं और जब वो मेहनत करने पर लग जाते हैं तो हमारे जो बच्चे होते हैं ना, उनका दिमाग इतना उर्वर होता है, इतना उपजाऊ होता है कि वो हर चीज़ समझ लेते हैं, हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं। और जो बचपन में कुछ अच्छी चीज़ें जो वो सीख लेते हैं तो ज़िंदगी भर उनका साथ देती हैं और फिर वो ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। हम छोटे उस्तादों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी है, AI की जब हम बात कर रहे हैं तो छोटे उस्तादों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके बारे में भी, उनकी भी बात की जाए। माता पिता के लिए शायद सबसे अच्छा तरीका ये है कि वे AI को केवल मोबाइल की एक और चीज़ मानकर रोकने के बजाय कभी कभी बच्चे के साथ बैठ कर देखें कि वो इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। बच्चा अगर कहता है कि मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों ना साथ बैठ कर AI से पूछें और फिर देखें कि जवाब सही है या नहीं सही है। इससे होगा क्या, इससे बच्चे को भी लगेगा कि AI कोई छिपाकर इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है, और माता पिता को भी समझ में आएगा कि बच्चा इसका इस्तेमाल किस तरह कर रहा है। बातचीत जितनी खुली होगी उतनी ही आसानी से गलत इस्तेमाल की बात भी सामने आ सकेगी। और जब हम एक

चीज़ बच्चे को पूरी तरह से बताते हैं, उसके नुकसान, उसके फ़ायदे, उसके साथ जो सावधानियां हैं वो बरतना हम उसको सिखाते हैं, तो फिर उसके लिए आसान हो जाता है तकनीक को अपनाना, तकनीक के साथ आगे बढ़ना और तकनीक का कितना अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है उसको भी समझना।

बिल्कुल इस गीत की तरह ही अपने छोटे उस्तादों की कल्पनाओं को उड़ान देना, उन्हें जिंदगी में हरदम कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करना, नया हासिल करने के लिए कहना, ये बहुत जरूरी है। और दोस्तों अब समय है कि आने वाला क्या नया है आपके लिए वो बताना है हमें, यानी कि आने वाले कुछ प्रोग्राम जो है वो कौन कौन से होने वाले हैं जो अगले कुछ घंटों में आप सुनने वाले हैं। तो 3 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी। इसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर चित्रा वासु, सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी, इनसे आप बातचीत सुन पाएंगे। इसके बाद 4 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है रेनबो जीनियस। एक बार फिर से मैं और आप होंगे इस प्रोग्राम में आपके साथ। बीच में जब मैं इस प्रोग्राम के बाद आपके लिए कुछ सवाल चुनूंगा और उन सवालों को आपसे पूछूंगा 4 से 5 के बीच में, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके बाद आप सुन पाएंगे 5 बजे से प्रोग्राम हमारा जिसका नाम है सिटी लाइट्स, शहर की तमाम हलचलों गतिविधियों को लेकर आप तक पहुंचेंगी प्रियंका त्रिपाठी। और इसके बाद 6 बजे होगा प्रोग्राम जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स, वीर दमन सिंह इस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से वापस आते हैं अपनी बातों पर, जो हम बात कर रहे थे ना छोटे उस्तादों की, AI की बात कर रहे थे, कैसे वो होमवर्क करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सवाल ये नहीं है कि AI बच्चों के लिए अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर AI से हमें कोई मुश्किल

0: વાણી આકાશવાણી આકાશવાણી દિલ્હી પ્રસ્તુત કરતા હૈ વિશેષ ફોન ઇન કાર્યક્રમ રેડિયો ડોક્ટર.
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है. आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है. नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे इस बेहद खास फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में. आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में समाज में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती, यानी व्यक्तित्व विकार या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. अक्सर हम किसी को या किसी के अजीब से व्यवहार को देखकर या उसका

0: गुस्सा या नखरा देखकर हम कुछ और समझने लगते हैं और ये भी नहीं समझ पाते हैं कि इसका कारण कुछ और भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार और हमारे सोचने का तरीका भी एक बीमारी का रूप ले सकता है? लेकिन खबर यह है आपके लिए इस कार्यक्रम में कि इस समस्या का समाधान मुमकिन है और इसमें होम्योपैथी एक बहुत ही अनूठी भूमिका निभा सकती है। होम्योपैथी केवल शारीरिक बीमारियों का इलाज नहीं करती बल्कि ये सीधे हमारे मन, भावनाओं और व्यक्तित्व पर भी काम करती है। आज इस एक घंटे के शो में हम समझेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथी इसमें कैसे मदद कर सकती है। अगर आपको या आपके किसी अपने को किसी ऐसी समस्या से आप इस समय रूबरू हो रहे हैं जहां पर आपको ये एडवाइस चाहिए कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस तरह होम्योपैथी से निराकरण इसका आपको मिल सकता है, तो आप इस कार्यक्रम में सही जगह पर जुड़े हैं। आप हैं एफएम रेनबो पर 102.6 पर और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग भी आप सुन रहे हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। और आज का विषय पुनः आपको एक बार बता दें, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी, व्यक्तित्व विकार और होम्योपैथी। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक हर बार की तरह एक विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर चित्रा वासु। आप एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं, एमडी इन होम्योपैथिक फिलोसफी हैं, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में आप कार्यरत हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चित्रा आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
1: गुड आफ्टरनून मैम एंड थैंक यू सो मच।
0: एक बहुत ही संवेदनशील विषय आज हम चुनकर लाए हैं डॉक्टर चित्रा और चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं जो इस तरह की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं पर कई बार खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, झिझकते हैं या किसी और कारण से समय पर डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी कन्फ्यूजन के चलते, तो वो जरूर आज के कार्यक्रम से कुछ लाभ ले पाए, आपसे अपनी समस्याएं बांट पाए और कुछ ऐसी जानकारियां आप उन तक पहुंचा पाए जिससे उनका जीवन थोड़ा सरल हो पाए। ये ऐसी कोशिश, ऐसी मंशा के साथ आज का ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम विषय को समझ लें, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की आज हम बात करने वाले हैं। क्या होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और कितनी तरीके के, कौन कौन से?
1: एब्सोल्युटली मैम, सो डिसऑर्डर के बारे में पता करने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा पर्सनालिटी क्या है
0: जी,
1: फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, फिर डिसऑर्डर।
0: बिल्कुल।
1: सो पर्सनालिटी क्या है? हर इंसान को एक पर्सनालिटी है, वो बहुत रिलेटिव है, वो एक पैटर्न है, वो एक इंसान कैसी फील करता है, कैसी थिंक करता है, अपनी रिलेशनशिप कैसी बिल्डअप करता है विद अदर्स एंड विद द सोसाइटी, और एक स्टिमुलस आने वक्त कैसे वो मीनिंगफुली अंडरस्टैंड करता है। दैट द करेक्ट वर्ड इज परसेप्शन, हाउ ही इज परसीविंग दैट स्टिमुलस, राइट, मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट स्टिमुलस। सो अपनी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के अनुसार देन आफ्टर दैट वो रिस्पॉन्स देता है दुनिया को या लाइफ को या लाइफ सिचुएशन को। सो दैट इज पर्सनैलिटी। एंड इफ समबडी इज शाई या कोई इंट्रोवर्ट है या स्टबर्न है या कैरिस्मैटिक है या कॉन्फिडेंट है एंड यू कांट लेबल हिम एज हैविंग सम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दीज आर ट्रेट्स। सो ट्रेट्स, वी ऑल आर हैविंग ट्रेट्स। आई टोल्ड यू ना, पर्सनैलिटी इज समथिंग विच इज शेप्ड बाय सो मेनी फैक्टर्स। क्या क्या हो सकता है? इनहेरिटेंस, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस हो सकता है, अपनी टेम्परमेंट, अपनी न्यूरो डेवलपमेंट, फैमिली रिलेशनशिप, अटैचमेंट, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, फिर अपनी एजुकेशन, कल्चर, अपने सामाजिक लाइक सोशल एनवायरनमेंट, लाइफ एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। अब एक कब डिसऑर्डर बन जाते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज की प्रोग्राम में वी आर डीलिंग विद दैट। सो डिसऑर्डर कब होता है? वेन ये जो पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस अंदर चल रहा है ना अपनी दुनिया में, जो मैंने बोल दिया थिंकिंग प्रोसेस या फीलिंग, इमोशनल रेगुलेशन, इसमें एक पैटर्न चेंज हो जाता है, लाइक
0: डिसबैलेंस समझ सकते हैं।
1: Exactly.
0: क्या? कि कुछ बैलेंस बिगड़ जाता है।
1: और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक ही दिन के लिए या एक ही सिचुएशन पर नहीं, इट शुड बी परसिस्टेंट, परवेसिव होना चाहिए, मतलब अक्रॉस ऑल द सिचुएशन, हर सिचुएशन में वो दिखाएंगे, एंड मैल अडेप्टिव होना चाहिए। नॉर्मली वी डू अडेप्ट टू द टफ सिचुएशंस नॉर्मली, बट वो मैल अडेप्टिव होकर आपने अपनी काम पर या अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में प्रॉब्लम क्रिएट करने वक्त ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाता है।

0: सो द क्रूशियल प्रिंसिपल है ये मैम, पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब ये नहीं है बैड पर्सनालिटी और डिफिकल्ट कैरेक्टर और मॉरल वीकनेस, इट्स अ
1: जी,
0: पैटर्न ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, वही।
1: और कितनी तरह के होते हैं, क्या हम इसको टाइप्स में भी कैटेगराइज कर सकते हैं?
0: एग्जैक्टली, एज पर द लिटरेचर वी आर यूजिंग DSM-5-TR, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक मैनुअल, फिफ्थ एडिशन, टेक्स्ट रिविजन, दैट इज पब्लिश बाय अमेरिकन साइकेट्रिक फाउंडेशन। सो सारा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर यूजिंग दैट गाइडलाइंस, एंड उसके अनुसार देर आर थ्री क्लस्टर्स, तीन क्लस्टर्स हैं। सो मैं इन अ सिंपल वे फॉर आवर पब ऑडियंस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो पहले आता है एक पैरानॉइड पैटर्न, सुना होगा आपने
1: जी
0: पैरानॉइड,
1: जी
0: पता है वो कोर थीम क्या है? वो पेशेंट आकर बोलेंगे मैं किसी को विश्वास नहीं करता
1: ओके
0: हूँ,
1: अच्छा
0: आई कैन नॉट ट्रस्ट यू। उनको क्या लगता है जो सामने कोई भी आ रहा है दे विल डिसीव मी, धोखा देंगे, सो दैट इज मैनिपुलेटिव है, ऐसे सोचकर पैरानॉइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाएंगे। और द सेकेंड वन इज दैट स्किज़ोइड पैटर्न, वो पता है क्या बोलेंगे? आई डोंट नीड क्लोजनेस, मुझे किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप की आवश्यकता नहीं है। बट हमें ये पता करना है उसके पीछे कहानी भी होगा, व्हाई ही हैज और शी हैज बिकम लाइक दैट। सो वो क्या अपने आप को डिटैच करेंगे, एक सोशली विड्रॉ कर अपनी दुनिया चलाता है, दैट इज स्किज़ोइड। एंड देन स्किज़ोइड टाइपल है मैम, स्किज़ोइड टाइपल में क्या होता है, वो बोलता है मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है, माई रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट, और मेरे को पता है कुछ चीज होने में तो उसका करेक्ट मीनिंग क्या है, कुछ मैजिकल थिंकिंग होता है, वो परसीव अलग रीदी में करता है, अपनी दुनिया को ऐसे बनाकर रखे हुए है। एंड वो सबको जाकर बोलता भी माई एक्सपीरियंस अबाउट दैट थिंग इज क्वाइट डिफरेंट, दैट इज स्किज़ो टाइपल। अनदर टाइप इज एंटी सोशल, दैट इज ये जो पहले मैंने तीन बोल दिया ना, पैरानॉइड, स्किज़ोइड एंड स्किज़ो टाइपल, वो क्लस्टर ए में आएंगे, लाइक ऑड और एक्सेंट्रिक पैटर्न में। और द नेक्स्ट फोर टाइप्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विच विल बी कमिंग अंडर क्लस्टर बी, वो थोड़ी ड्रामेटिक इमोशनल एंड इराटिक पैटर्न में आएंगे। उसमें फर्स्ट वन इज एंटी सोशल, वो पता है क्या बोलते हैं? आई एम गेटिंग बेनिफिट्स, मुझे फायदा मिलता है रूल्स तोड़ने वक्त, मेरे को कोई टेंशन नहीं दूसरों की रूल्स में वायलेट, राइट्स में वायलेट कर रहा है या नहीं, आई डोंट बोदर। सो दे आर गेटिंग बेनिफिट, सो
1: तो दे डोंट फॉलो द सोशल नॉर्म्स.
0: हाँ, दैट इज द थिंग, यू शुड डिफ्रेंशिएट वेदर दैट पर्सन इज हैविंग डिसलाइक टुवर्ड्स सोसाइटी। कुछ लोग सामाजिक सिस्टम से डिसलाइक है, इट्स नॉट अबाउट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो उनको अच्छा लगता है इफ आई एम ब्रेकिंग द रूल मुझे बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज एंटी सोशल। सो मैम द नेक्स्ट टाइप इज बॉर्डर लाइन, उनका कोर थीम यही है मुझे छोड़ना मत क्योंकि मुझे अबैंडनमेंट की इश्यूज है, दैट इज देयर कोर थीम। सो वो क्या करेंगे, उनको बिल्कुल इंटेंस, दिस इज लिटिल बिट डेंजरस डेंजरस ऑल्सो बिकॉज इसमें स्पेक्ट्रम होता है, लाइक एक साइड में क्रॉनिक एम्प्टीनेस है, एक शून्यता है, अदर साइड में एक्सेसिव इम्पल्सिवनेस है, एग्रेशन है, सो दिस इज लिटिल बिट डेंजरस, प्रोवाइडेड यू हैव टू इतने अच्छे से साइकेट्रिक असेसमेंट करने की आवश्यकता भी है दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। देन अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नार्सिसिस्टिक, आजकल जो सोशल मीडिया में इतनी वो वर्ड इज वेरी कॉमन है ना, एवरीबडी इज यूजिंग दैट वर्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी पैथोलॉजी में क्या है, वो ऐसे ही बोलेंगे कोर थीम है ये, दैट पर्सन विल से या बिहेव इन दैट वे, मेरी इंपॉर्टेंस को रिकग्नाइज कीजिए, मुझे एडमिरेशन चाहिए, इफ समबडी इज क्रिटिसाइजिंग मे ही कांट टॉलरेट, दैट इज नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी पैथोलॉजी। बट एट द सेम टाइम मैं अपथेटिक रहूंगा, आई आई वॉन्ट शो एम्पथी टू अदर्स, दैट इज नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। देन अनदर क्लस्टर बी में आएंगे हिस्ट्रियॉनिक, कोर थीम है प्लीज नोटिस मी, मुझे नोटिस कीजिए, आई नीड इमोशनल रिकग्निशन, दैट इज अटेंशन सीकर्स। ठीक है, नाउ द लास्ट वेराइटी क्लस्टर सी, उसमें अवॉइडेंट, वो कोर थीम है मुझे क्लोजनेस चाहिए बट आई एम अफ्रेड दैट यू विल रिजेक्ट मी, दैट इज अवॉइडेंट, वो अवॉइड करेंगे हर सिचुएशन को, मगर मैं हमेशा आई मीन आई वॉन्ट टू टेल यू ये सब प्रोजेक्शन के पीछे कुछ कहानी भी है, दैट विल कम, वी विल कम टू दैट थिंग ब्यूटिफुली। देन द अनदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में वो आकर बोलेंगे आई नीड यू बिकॉज आई डोंट फील केपेबल ऑफ बींग अलोन, मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ डिसीजन अकेले नहीं कर पाएंगे, आई नीड समवन, दैट इज डिपेंडेंट। एंड द लास्ट वन इज OCPD,

0: obsessive compulsive personality disorder, not OCD. Obsessive compulsive disorder nahi hai, that is something else. This is OCPD. वो ऐसे सोचते हैं आई फॉलो, सिर्फ मैं फॉलो करती हूँ रूल, और मैं कुछ इवेंट कुछ होने वक्त आई माई सेल्फ हैव टू डू इट, अगर दूसरों ने कर दिया तो वो खराब हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे.
1: ओके,
0: सो दैट इज द थिंग.
1: तो काफी विस्तार से आपने सारी क्लस्टर्स में जितने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं उनको, उनके बारे में बताया. अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में, और आगे हम बात करेंगे मैडम से कि किस तरह से होम्योपैथी इसमें मदद कर सकती है, क्योंकि आप एक होम्योपैथी विशेषज्ञ भी हैं, तो जरूर अपने प्रश्न हम तक भेजिए. यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे. आज के सारे गीत जो है डॉक्टर चित्रा की चॉइस के हैं, तो आप भी इंजॉय करिए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं. ये गीत, पहला गीत आप सबकी नजर.

0: जो डॉक्टर में, और आज हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और होम्योपैथी पर, व्यक्तित्व विकार और होम्योपैथी पर। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब ने बहुत सारे जो अलग अलग इसके क्लस्टर्स हैं या उसमें जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं ये किस कारण से हो जाते हैं, क्या इसके पीछे कोई अनुवांशिक या जेनेटिक कॉज होता है, या किसी को कोई एक्सपीरियंस बचपन में ऐसा रहा हो जो उसमें एवरलास्टिंग ने दिमाग में इफेक्ट डाला हो जो इस डिसऑर्डर को जन्म दे जिसने दिया हो, क्या रीजन होता है?
1: यस शालिनी मैम, अगर मैं डेफिनेट आंसर बोलना चाहती तो देयर इज नो सिंगल कॉज, बट आपको पता है पर्सनालिटी हमेशा कैसी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, पर्सनालिटी की नॉट अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डेवलपमेंट कैसे होता है, लाइक इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है क्या क्या चीज की, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी, अपनी टेम्परमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, attachment and relationship, childhood experience and adolescent experience, trauma, कुछ abuse है ना, family and social environment,
0: हाँ, तो वो भी background बन
1: सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हम ये नहीं बोल सकते हर trauma survivor को personality disorder है, या ऐसे नहीं बोल सकते that every time trauma होने के पीछे के बाद as a consequence personality disorder हो सकता है, नहीं, we can't say like that. And hormones and sex stress systems can influence your emotional regulation and behavior also. But ऐसे नहीं बोल सकते एक particular hormone act कर या उसके imbalance से personality disorder आ गया, no. ऐसी कोई studies और ऐसी कोई result कुछ नहीं आया है. So the most appropriate explanation is a biopsychosocial developmental factor पर depend करता है, right?
0: तो बहुत सारी चीजें हैं
1: definitely.
0: जी, तो किस तरह से इसको समझा जाता है और किस तरह से डील किया जाता है और होम्योपैथी किस तरह से उसमें कारगर होती है, ये सारी बातें हम आपसे जरूर जानेंगे। लेकिन एक मैसेज आया है, बहुत सारे मैसेज हैं, उसमें से एक मैसेज हमें देवदत्त पारसोलिया जी ने लिखा है प्रताप विहार गाजियाबाद से। नमस्कार टू आरजे डॉक्टर्स एंड योर होल टीम, वेरी स्वीट वॉइस एंड नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। और एक ये मैसेज है वसुधा जी का, कहां से लिखा है ये तो नहीं पता, कि क्या एडीएचडी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होम्योपैथी से मैनेज हो सकता है, तो ये बताएं।
1: यस, इसके लिए पहले वो पेशेंट से बात करना, आई मीन ऑल द कंडीशन शुड बी एग्जामिन, अच्छे से केस अटेंड करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि होम्योपैथी ट्राइज टू हील द पीपल पर्सन, वो अपनी नजरिया बदलने के लिए, लाइक यू कांट चेंज, वैसे तो दिस इज नॉट कमिंग अंडर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बट स्टिल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, यू कैन गो टू होम्योपैथिक डॉक्टर।
0: ओके एंड ठीक है, एक हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। हेलो,
2: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए।
2: उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
0: जी जी बताइए, क्या पूछना है?
2: मैं ये कह रहा हूँ जो डिसऑर्डर है ना
0: जी,
2: इसका कम दिमाग से संबंध है, तो उसके लिए दवाई बताइए होम्योपैथी में। अगर जैसे किसी का दिमाग, जैसे कोई कुछ उच्च लेवल का होता है, किसी का जैसे कोई कंपनी में काम करता है, तो जो कुछ उच्च लेवल का आदमी होता है तो उसको ऊंचा पद दिया जाता है, और जो छोटा लेवल का आदमी होता है या उसका दिमाग से कुछ कम है उसको कम वाला काम दिया जाता है, जिम्मेदारी से काम दिया जाता है। तो इसके बारे में बताइए कि जो डिसऑर्डर है उसका कम दिमाग से संबंध है, तो उसका दवाई कुछ होता है वो तो बताइए।
0: दवाई तो रघुवीर जी हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको देखना होता है, और मोर ओवर जैसा डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था कि ये कस्टमाइज्ड होती है मेडिसिन होम्योपैथी की। तो मैम बताएं किस तरह से मेडिसिन दी जाती है, थोड़ा सा रघुवीर जी को भी पता चले कि होम्योपैथी में एक्चुअली मेडिसिन किस तरह से दी जाती है।
1: रघुवीर जी नमस्ते, मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है ये बहुत पेनफुल वाला सिचुएशन है, डिस्ट्रेस ज्यादा है, बट मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप एक डॉक्टर के पास, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना है, अपनी सिम्टम्स, अपने सब एक्सपीरियंसेस आपको बोलना है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद आपकी दुनिया से मैं या किसी और डॉक्टर को ट्रैवल करना पड़ेगा आपकी मेडिसिन एक्सप्लोर करने के लिए
0: जी,
1: सो दैट विजिट इज वेरी इम्पोर्टेंट।
0: बहुत सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं और तब दवाई प्रेस्क्राइब की जाती है। रोहिणी से राज रानी जी हमें लिख रही हैं, इनकी उम्र 68 इयर्स है, इन्होंने लिखा है, वैसे अपनी वाइफ के लिए लिखा है, पता नहीं, लिखा है कि मेरी मिसेस को कई बार हाथ धोने की और उनको ये फील होता है कि उनका हाथ साफ नहीं हुआ है, इस तरह की कोई इनको डिसऑर्डर है, और होम्योपैथी में क्या इसका इलाज है और कैसे कराया जा सकता है, तो ये ओसीडी या कुछ रहता रहता है मैम?
1: यस मैम, दिस कंडीशन इज आज की टॉपिक से कोई रिलेशन आई है बिकॉज वी आर डीलिंग विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड उसमें ओसीपीडी मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया था, इट्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और अभी ये जो सिम्टम बोल रहे हैं इट्स ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दैट इज रिलेटेड

0: डिफरेंट, वो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, एंड दे विल डू सर्टन प्रैक्टिस ऑल्सो इन ऑर्डर टू अपनी ऑब्सेशन को वो कंपल्शन रूप में आकर वो करेंगे. डेफिनेटली मेडिसिन है, यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर.
1: चलिए ये अच्छी बात है कि मेडिसिन है होम्योपैथी में और आप दिखा सकते हैं किसी स्पेशलिस्ट को जाकर. और आपने एक जिक्र किया था जब आप बता रही थी कि कितनी तरह के डिसऑर्डर्स हैं, उसमें एक बॉर्डर लाइन और एक नार्सिसिस्ट की भी आपने बात की थी. तो ये एक प्रश्न है हमारे पास, लिखने वाले का नाम अभी मुझे दिख नहीं रहा है, पर उन्होंने लिखा है कि इज देयर अ क्योर फॉर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हाउ टू हेल्प द पर्सन. तो एक तो हम इसको समझ लें, वो समझा दिया आपने नार्सिसिस्ट क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, पर इसको किस तरह से होम्योपैथी में डील किया जाता है, किस तरह से आप इसमें मेडिसिन तक पहुंचते हैं.
0: यस, अभी ड्यूरिंग आवर प्रीवियस डिस्कशन मैंने बोल दिया ना, दिस इज वेरी नाउअडेज वेरी कॉमन है ना. एंड मैं पहले मेरी एक डिस्क्लेमर है मैम, मैं किसी को लेबल करना नहीं चाहती किसी को वो पर्टिकुलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बिकॉज है ना. एंड किसी की हार्मफुल बिहेवियर को मैं एक्सक्यूज भी नहीं दे रही हूँ, ठीक है, दैट इज माय डिस्क्लेमर. बट स्टिल कोर थीम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की यही है, द पेशेंट विल कम एंड से आई डिजर्व स्पेशल ट्रीटमेंट. दैट पर्सन को हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए. सो बट इसमें एक यू हैव टू डिस्टिंक्ट वन, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट वन थिंग. कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होता है, बट दैट इज नॉट नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सो बट द प्रॉब्लम इज दैट द विक्टिम्स है ना, क्योंकि इफ दे आर गेटिंग इनटू सम रिलेशनशिप में विक्टिम्स विल बी सफरिंग. सो पता है कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? आई डिजर्व स्पेशल, वेन यू टॉक टू द पर्सन हमें समझ में आता है ही इज मूविंग टुवर्ड्स दैट पर्सनैलिटी आई मीन पैथोलॉजी. एंड वो पता है आकर हमें बोलेंगे जो लोग हैं ना हम मेरे बारे में समझते ही नहीं है, दे डोंट अप्रिशिएट मी, मेरी टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करता है, आई एम नॉट गेटिंग वैलिडेशन. एंड मुझे ये क्रिटिसिज्म भी पसंद है, यू नो द बेसिक थिंग वही है, दे कांट टॉलरेट क्रिटिसिज्म. सो ही फील्स दैट दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी इज फीलिंग दैट माय एंटायर सेल्फ वर्थ के ऊपर अटैक हो रहा है. सो नेचुरली दिस में ट्रिगर क्या क्या हो सकता है, एंगर हो सकता है, शेम हो सकता है, विड्रॉवल होता है, रिटेलिएशन हो सकता है. बट इसमें पता है मैम, यू कांट लेबल अ पर्सन दैट यू आर नार्सिसिस्टिक. इंस्टेड केस अटेंड करने वक्त यू कैन कलेक्ट द सिम्टम्स, लाइक व्हाट हैपेंस इफ समबडी आपको क्रिटिसाइज करना है, तो आपके अंदर क्या चलता है, व्हाट यू थिंक इन दैट वे. और आपको कोई जिंदगी में फेलियर की सिचुएशन आने वक्त व्हाट यू आर थिंकिंग और हाउ यू आर कॉपिंग योरसेल्फ टू दैट सिचुएशन. और आपको रिकग्निशन नहीं मिलने वक्त क्या हो सकता है. एंड आई टोल्ड यू ना द अदर पर्सन आई एम सेइंग अबाउट द विक्टिम्स ऑफ यू नो
1: जो उनके संपर्क में आते हैं ना, उनके बारे में.
0: साइको कम्युनिकेशन इज वेरी मच नीडेड. सेटिंग बाउंड्रीज सेटअप करना है. एंड अगर इवन इफ यू आर लविंग समवन इन दैट वे एंड यू डोंट नीड टू टॉलरेट हार्मफुल बिहेवियर, यू हैव टू सेट द बाउंड्री. एंड दैट डजंट मीन दैट यू आर डिनाइंग कंपैशन, आप डिनाई नहीं कर रहे हैं. सो
1: क्योंकि इसको ये जो आप बता रहे हैं आज थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा टिकलिश, थोड़ा सा सेंसिटिव आज का टॉपिक है और इतना आसान नहीं है समझना. कई बार इसके लक्षण भी ऐसे होते हैं जो जैसा आपने बताया है कि जरूरी नहीं है कि ये अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो नार्सिसिस्ट है, मतलब डिफरेंस और बॉर्डर लाइन
0: का. एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, ऐसी वाला पर्सनालिटी पैथोलॉजी डील करने वक्त ना, यू नो व्हाट शुड बी आवर गोल्स, उनको ना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करवाना है, इम्प्रूव करना है अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ऑल. एंड अपनी इमोशनल रेगुलेशन को यू हैव टू यू नो समझाना पड़ेगा. हेल्दियर रिलेशनशिप की उससे क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे ये सब समझाना पड़ेगा. अपनी सेल्फ एस्टीम को एस्टीम के बारे में समझाना पड़ेगा. एम्पति शो करना है.
1: बहुत सारी चीजों को अभी हमें समझना बाकी है, लेकिन हमारे एक श्रोता हैं काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उत्तराखंड से रघुवीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
2: नमस्ते.
1: जी नमस्कार जी.
2: और डॉक्टर मैम को भी नमस्ते.
0: नमस्ते जी.
2: मैम मेरे दो सवाल हैं, एक तो मैं ज्यादा सोचता हूँ मतलब जैसा कोई चीज किसी को कुछ समझाओ या कुछ हमारे मतलब वो नहीं सुने ना सुने या कुछ तो उसमें ज्यादा सोचता हूँ उसके बारे में. कोई किसी को कुछ डांट दिया है जैसे अपने बच्चों को या कुछ ना बोले तो फिर उनका नुकसान होता है, मतलब कुछ भी चीज या कोई चीज के बारे में कोई जिसको कुछ समझाओ या कोई हमारा कोई गलत करे तो मैं अगर उसको वो ना हमारा ना माने या कुछ भी करे तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है उसमें. तो मैं सोचता हूँ मैंने उसको तो बेकार ही बोला,
1: बाद में इनको लगता है कि बेकार बोला है ना.
2: हाँ.
1: जी लेकिन जल्दी से गुस्सा आ जाता है.
2: हाँ, और ना बोले तो चुपचाप रहे तो तो उनका भी नुकसान होगा, फिर हमारा भी नुकसान होगा, ये दैनिक जीवन में ना जैसे

0: बच्चों को हुआ या कोई परिवार में या किसी बाहर वाले को हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमको उसने नुकसान कर दिया, उसको कुछ समझाओ बोलो और ना माने तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है
1: जी।
0: फिर मैं सोचता हूँ मैंने भी तो बेकार ही बोला, उसको नहीं बोलना था
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कई कई बार हम लोगों के सबके साथ होता है। पर क्या ये एक बीमारी की श्रेणी में आता है क्या डॉक्टर चित्रा, या इनको मेडिकेशन की जरूरत है?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें ये होता है, एक स्टिमुलस या एक सिचुएशन आने वक्त दैट पर्सन एक रिएक्शन देता है, तुरंत ऑटोमेटिक रिएक्शन देता है, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस और क्या मैं सही बोल रहा है। इसलिए आई एम सेइंग ना, दिस इज द स्कोप ऑफ होम्योपैथी। एक स्टिमुलस आने वक्त आपको आपको सोचना है, आपकी अवेयरनेस को एक्टिवेट करना है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, अपनी चॉइसेस बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचकर वेदर में बात करना है इस चीज पर, ये सब पहले विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या फाइव मिनट्स आपको सोचना है, देन यू हैव टू गिव द रिस्पॉन्स।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे भी एक बात पूछनी है कि ये दो अलग अलग शब्द होते हैं, एक होता है रिएक्ट करना और एक होता है रिस्पॉन्ड करना, और इन चीजों को बहुत, इन दोनों शब्दों को बहुत बार बोला जाता है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस।
2: एग्जैक्टली, प्रायर टू दैट आई हैव टू से यू, आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर साइकोलॉजिकली। एंड बिहेवियर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। I am repeating, behavior of the person to respond to a stimulus. Stimulus मतलब external stimulus हो सकता है या internal stimulus हो सकता है, कोई भी life situation। आपको पता है जिंदगी में बहुत ऐसी situations आते हैं, like that can, life can throw different situations to you, that anything can become stimulus. So stimulus आने वक्त you have to give response. That ability को हम बोलते हैं behavior of a human being. Okay, so the definition में you have to respond, you don't need to give reaction, क्योंकि reaction is a negative term. Reaction में you are not doing reflection upon that thing. आप इसके consequences के बारे में नहीं सोचता है,
1: जो immediate अगर आप कुछ चीज पे react करते, that is reaction, कि आप सोच नहीं रहे हो। तो शायद मुझे लगता है रघुवीर जी अगर सुन रहे हो हमारे प्रोग्राम में तो शायद ये इसी चीज को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ज्यादा सोचते नहीं है, हम इमीजिएट बोल देते हैं या रिएक्ट करते हैं,
2: ऑटोमेटिक रिएक्शन,
1: और बाद में फील होता है कि ये रिएक्शन थोड़ा ओवर था।
2: हाँ, सो ही शुड अंडरस्टैंड दैट ऐसी हो सकता है दैट आई विल फील बैड लेटर, मुझे ही दुख होगा, इसलिए मैं थोड़ी सी पहले इसके रिफ्लेक्शन कर रही हूँ, मतलब कर रहा हूँ, लाइक सॉरी।
1: चलिए यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनना है हमें जो आपकी पसंद का है, और श्रोताओं से गुजारिश भी करना है कि आप अगर कुछ पूछना चाहें तो फोन कीजिए, रुकिए नहीं, झिझकिए नहीं, क्योंकि डॉक्टर चित्रा हमारे साथ रहेंगी। रेडियो डॉक्टर जब समाप्त हो जाएगा तो आपके प्रश्न हम शामिल नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज आप कॉल करिए हमारे फोन नंबर्स पर या मैसेज करिए हमारे मैसेज बॉक्स पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में विशेष सब्जेक्ट के साथ। आज हम आए हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी पर बात हो रही है। काफी सारी बातें डॉक्टर और मैम हमको बता चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अभी जानना बाकी हैं। और एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी राजेंद्र जी, प्रश्न पूछें।
2: जी, पहले तो शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार।
1: जी नमस्कार, स्वागत।
2: और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्कार।
2: जी, मेरे चार सवाल है मैम, प्लीज वन बाय वन। अब पहला सवाल मेरा ये है कि जब मैं किसी से वफादारी, नमक हलाली, नेकी बेहतरी भलाई से पेश आता हूँ और बदले में मुझे कोई मतलब हर्ट करे या पिंच करे, टॉर्चर करे, तो मैं फौरन हाइपर हो जाता, मुझे गुस्सा आता है, अपना वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये कि जब भी मेरे सामने कोई मेरे से ज्यादा योग्य मतलब हैंडसम या टैलेंटेड इंसान आता है, तो उस वक्त मैं थोड़ा हाईटेक हो जाता हूँ, मतलब अपनी बात जो है ना उसके सामने मैं आराम से रख नहीं पाता। जैसे शालिनी मैम, मेरे जैसे डॉक्टर शुरू किया हमने, तो शालिनी मैम की वजह से मेरी हाइड्रेशन दूर हुई, वरना जब मैं फोन कर रहा था मेरे हाथ पैर सब पर कांपते थे, हाथ पैर से पसीने आ जाते थे, तो ये मेरी हाइड्रेशन शालिनी मैम ने ही दूर की। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये वॉइस जो होती है हमारी, इसको मेलोडियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और चौथा और आखिरी सवाल जो है वो ये है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे गुस्सा आया या मेरे टेंशन परेशानी में हूँ, मुझे किसी ने हर्ट किया, पिंच किया, और मेरे सामने बेचारा कोई भोला भाला सीधा साधा फरियादी भी आ गया, याचक भी, तो उस वक्त पता नहीं क्या होता कि मैं कंट्रोल कर नहीं पाता, तो मैं वो गुस्सा मेरा उस पर निकल जाता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड करें।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो विशेष हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर अच्छी बात है कि आप खुल के बोल रहे हैं और बता रहे हैं राजेंद्र जी। यहाँ पर डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस रहेगी? इनकी सब प्रश्न अलग अलग तरीके के हैं।
3: अब जो राजेंद्र जी ने जो प्रोजेक्ट कर दिया, जो सिम्टम्स है ना, आई एम श्योर उसके पीछे कुछ और है। सो अगर सपोज केस टेकिंग में सब खुलकर आएंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज ही सेड सो, ये जो बात कर रहे गुजारे लाइक ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, उसके पीछे कभी ऐसी सिचुएशन हो सकता है, लाइक सी आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैवंट मेट हिम पर्सनली, आई हैवंट टेकन द केस, सो दैट इज माई डिस्क्लेमर, बट स्टिल ऐसी पेशेंट्स के साथ, ऐसी पेशेंट्स नहीं, ऐसी सिचुएशन पर या ऐसी उसमें ये हो सकता है इसके पीछे लाइक कुछ पहले कुछ पास्ट एक्सपीरियंस या क्रॉनिक एम्प्टीनेस हो सकता है, मगर उसके भी पीछे कहानी अलग है, वो पर्टिकुलर पर्सन की दुनिया अलग है मैम। सो उससे तो ट्रैवल करना पड़ेगा ना, टू एक्सप्लोर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन एंड इंडिविजुएशन।

0: और बहुत सारी बातें हमें अभी करनी है क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारी चीजों को अभी समेटना है। तो ये मुझे बताइए कि एक बात की जाती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी की बात होती है, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं और मानसिक रोगों की बात करते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, ये क्या है और इसका क्या महत्व है, ये बताइए।
1: यस मैम, व्हेन वी स्पीक अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वी शुड रिमेम्बर दैट डायग्नोसिस वॉज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पैटर्न। यस, जो भी कैटेगरीज मैंने बोल दिया वो एक पैटर्न है। इट्स नॉट अबाउट द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ए ह्यूमन बींग। एक इंसान की पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। सो हियर इन दिस एस्पेक्ट होम्योपैथी हैज रोल। मतलब हमें ये पूछ सकते व्हाट डज रिजेक्शन, आपकी लाइफ में इफ समबडी इज रिजेक्टिंग यू हाउ डू यू टेक इट अप, है ना। और कोई अबैंडन करने वक्त आपको क्या लगता है, और कोई आपको इग्नोर करने वक्त आपको क्या लगता है। सो मेनी थिंग्स लाइक यू कैन आस्क। देन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट एवरी टाइम आई यूज टू स्ट्रेस दिस थिंग, इंडिविजुएशन। इंडिविजुएशन मतलब ए है हाउ अ ह्यूमन बींग इज बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम अनदर ह्यूमन बींग। सो वो इंडिविजुएशन इज द ट्रेट ऑफ ए ह्यूमन बींग, वो अलग कैसे बन जाता है। वो पता करने की प्रोसेस है इंडिविजुअलाइजेशन आफ्टर टेकिंग द केस, क्योंकि वो केस अटेंड करने के बाद, केस एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल जाता है वॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ दैट पेशेंट। बेस्ड ऑन दैट थिंग वी कैन प्रिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विच इज डिपेंडिंग अपॉन द टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम्स। उसमें ऐसी नहीं सिर्फ ओनली मेंटल सिम्टम, बिकॉज समटाइम्स इट इज हैविंग एसोसिएशन विद योर फिजिकल सिम्टम्स ऑल्सो।
0: ओके,
1: है ना। यू हैव टू कलेक्ट ऑल द सिम्टम्स एंड वही टोटैलिटी के ऊपर आपको प्रिस्क्राइब करना है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एंड आई ऑलवेज यूज अ स्पेसिफिक टर्म फॉर दैट थिंग, फिनोमिनोलॉजिकली इंट्रिकेट स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दैट पर्टिकुलर केस।
0: ओके, तो ये हर केस में अलग होगी।
1: अलग हो सकता है। हो सकता है ना, अलग होगा,
0: अलग ही होगा। अच्छा ये बताइए, जो एलोपैथी की जो हम बात करते हैं, जहां पर हम ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथी विधा से, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो करते हैं, वो किस तरह से अलग अलग है, इसमें अलग दृष्टिकोण क्या है जो होम्योपैथी का है।
1: डेफिनेटली क्राइसिस मैनेजमेंट लाइक आफ्टर डूइंग द साइकियाट्रिक असेसमेंट इट नीड्स टू बी रेफर्ड, वी हैव टू रेफर द केसेस टू द साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि दे आर हैविंग सो मच साइंटिफिकली है ना प्रूवन एविडेंसेज है और मेथड्स है ना टू मैनेज द क्राइसिस। बिकॉज मैम एट टाइम्स सर्टन सिचुएशंस आर व्हेन इट इज गोइंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लाइक वायलेंस, सब्सटेंस अब्यूज या सुसाइडल रिस्क। सो एट दैट टाइम इट्स अबाउट द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बींग, यू हैव टू रेफर टू, बिकॉज होम्योपैथी की स्कोप अलग है इसमें। आई डोंट वॉन्ट टू या एनी अदर होम्योपैथिक डॉक्टर्स, आई डोंट थिंक दे आर ट्राइंग टू चेंज द पर्सनैलिटी, नहीं, वी आर ट्राइंग टू इंस्टिल अ क्वालिटेटिव ग्रोथ इन साइड। वो इंसान के अंदर एक क्वालिटेटिव ग्रोथ इंस्टिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दैट इज हीलिंग एक्चुअली।
0: तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप का जो केस है वो होम्योपैथी डॉक्टर को लगे कि नहीं एलोपैथी से ही ट्रीट किया जा सकता है, तो वो रेफर किया जाता है।
1: बिल्कुल, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, सी एक सपोज एक पर्सन इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन वन पर्सन, सो आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग द होम्योपैथिक मेडिसिन, आफ्टर कलेक्टिंग द सिम्टम, प्रिस्क्राइब करने के बाद एक हेल्दी और ऑटोनोमी की तरफ ले सकते हैं। लाइक कोई डिस्ट्रक्टिव एंगर बोल रहे थे ना, सो मेनी पीपल फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव एंगर से हम कंस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशन की तरफ लेकर जा सकता है। एक्सट्रीम फियर ऑफ रिजेक्शन से आपको ग्रेटर इमोशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन तक ले सकता है। दिस इज व्हाट आई मीन एक्चुअली।
0: जी जी, बहुत सारे मैसेज इस बीच हमारे पास आ गए हैं, और ये पूनम जी लिख रही हैं नांगलोई से, गुड आफ्टरनून मैम, नाइस प्रोग्राम ऑन यूजफुल टॉपिक। लाइफ इज फुल ऑफ इमोशंस एंड वी हैव टू फेस मेनी सिचुएशंस, वी मस्ट फेस पॉजिटिवली। थैंक्स अ लॉट आपको भी पूनम जी कि आप हमारे कार्यक्रम को सुन रही हैं, अप्रिशिएट कर रही हैं। और हमारे एक मैसेज श्याम मित्तल जी ने लिखा है रोहिणी से, उन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन ऑफ श्री रघुवीर सिंह जी वॉज वेरी यूजफुल फॉर अदर्स एंड रिप्लाइड वेरी वेल बाय द डॉक्टर। आपकी सॉन्ग चॉइस भी उनको बहुत पसंद आ रही है। और साथ ही साथ एक इनका एक प्रश्न भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अननोन भी मेरे सामने से निकल जाए, कई बार होता है हम क्रॉस करते हैं, पर वो मुझे ऐसे बिहेव करे मेरे साथ कि जैसे कुछ मतलब ही नहीं है, या नॉट स्पीकिंग, जैसे एक होता है ना, आप किसी अननोन के पास भी अगर जा रहे हो तो यू हैव अ प्लीजिंग स्माइल ऑन योर फेस, तो इनको ये भी डिस्टर्ब करता है कि मुझे पसंद नहीं कर रहा है, तो क्या ये भी एक बीमारी की श्रेणी में आएगा क्या?
1: बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी एक स्मॉल टिप है, आपको वो दूसरे बंदे की दुनिया में क्या चल रहा है पता नहीं ना
0: जी,
1: सो हाउ कैन यू make yourself

0: टू लैंड इन ट्रबल, दूसरों
1: जी
0: की जिंदगी में क्या चल, मे बी हमारे से ज्यादा स्ट्रेस में हो सकता है ना. सो दीज आर नॉट, दीज आर सिचुएशंस एक्चुअली. इसलिए हम सेइंग ना, लर्न टू गिव रेस्पॉन्स नॉट रिएक्शन.
1: जी बिल्कुल सही. और हर हर बार ओवर थिंकिंग की भी जरूरत नहीं है. चलिए, और भी बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं. मुझे एक मैसेज और ये दिख रहा है. मैं माया हूँ न्यू दिल्ली मिंटो रोड से. मेरी किसी चीज को इमेजिन नहीं कर पाती, मगर मैं कुछ सुन रही होती हूँ तो उस पॉइंट को सही से कलेक्ट नहीं कर पाती हूँ. तो ये क्या जैसे
0: सॉरी
1: होता है
0: आई
1: ना,
0: डिडंट
1: फोकस
0: अंडरस्टैंड.
1: फोकस नहीं है तो क्या ये भी किसी,
0: कॉन्सेंट्रेशन,
1: हाँ
0: लॉस ऑफ
1: कंसंट्रेशन एंड
0: कॉन्सेंट्रेशन.
1: फोकस, तो ये भी किस तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है क्या?
0: नो,
1: ओके,
0: इट्स
1: तो
0: नॉट
1: ये किसी
0: कमिंग.
1: प्रैक्टिस से या
0: या
1: इनको जरूरत
0: थेरापी.
1: है किसी
0: हाँ
1: होम्योपैथी
0: यस
1: डॉक्टर से मिलने की?
0: डेफिनेटली डेफिनेटली शी कैन गो टू अ डॉक्टर.
1: इन्होंने लिखा है, सौरभ सिंह चौहान जी ने लखनऊ से, कि मैम मुझे बहुत टेंशन होती है, बार बार पर मुझे गुस्सा आता है. बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है. मैं शांत रहना चाहता हूं पर मैं रह नहीं पाता हूं. दूसरा इन्होंने लिखा है कि मैं चुप चुप रहता हूं, मुझे बहुत बात करना पसंद नहीं है किसी, और मैं अकेले रहने से मुझे अच्छा लगता है. तो ये आपने एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात की थी जहां पर लोग अपने में ही रहते हैं, लोनलीनेस होती है उन्हें, तो ये भी इस श्रेणी में आएगा क्या?
0: नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू लेबल एनी वन. डिस्क्लेमर मैंने पहले ही बोल
1: जी
0: दिया,
1: बिल्कुल.
0: बट आई वॉन्ट टू टेल यू. आप ऐसी एक बार आप अच्छे से बैठ कर सोच कीजिए, लाइक वाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस. मैं दूसरों को क्यों अवॉइड करता है. अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए एंड उसमें जरूर आपको आंसर मिलेंगे. या गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर आपको मदद करेंगे
1: बिल्कुल
0: पक्का.
1: जी.
0: आफ्टर गिविंग द मेडिसिन ऑल्सो ही विल फील बेटर.
1: मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से पूछ रहे हैं कि क्या स्ट्रेस को भी दूर किया जा सकता है, और स्ट्रेस के कारण भी क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं?
0: स्ट्रेस की, स्ट्रेस इज समथिंग. यू स्ट्रेस मतलब क्या
1: और
0: है?
1: स्ट्रेस के लिए होम्योपैथी में मेडिसिन्स होती हैं क्या स्ट्रेस मैनेज करने के लिए?
0: डेफिनेटली है. एंड बट 90% द पर्सन शुड वर्क ऑन हिमसेल्फ, क्योंकि क्योंकि दुनिया इज रनिंग लाइक एनीथिंग. सो स्ट्रेस, प्रेजेंट सिचुएशन को डील करना आपको आना चाहिए. सी व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइटी? एंजाइटी इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. एंड डिप्रेशन क्या है? थिंकिंग अबाउट पास्ट. सो स्ट्रेस यू यू हैव टू लर्न हाउ टू गिव रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंट सिचुएशन.
1: बिल्कुल. और एक ये है प्रश्न नरदेव सिंह चौहान जी का, कोटद्वार उत्तराखंड से, कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर की श्रेणी में मेरा प्रश्न आता है कि नहीं, ये बताइए कि पहले जो पीढ़ी थी वो बहुत क्लोज थी और एक दूसरे से प्यार करते थे, सपोर्ट करते थे, और आज की पीढ़ी जो है अपने में होती जा रही है, उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं, तो ये भी डिसऑर्डर है किसी तरह का या ये नेचुरल प्रोसेस है?
0: आई कांट कमेंट ऑन दैट थिंग. पर्सनल है ना, समथिंग पर्सनल.
1: चलिए, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैडम ने बार बार ये डिस्क्लेमर लगाया है कि किसी को लेबल नहीं करना है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ आपका बिहेवियर या आपकी पर्सनालिटी दूसरों से, जो आम एक्सेप्टेबल पर्सनालिटीज हैं, उससे थोड़ा भिन्न है, तो आप कदम बढ़ा सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और वो फिर आपको बता सकते हैं किस तरह की
0: एब्सोल्युटली.
1: मेडिकेशन की आपको आवश्यकता है. यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आएंगे. आप रहिए रेडियो डॉक्टर के साथ.

0: जी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ होते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स जो आपकी हर परेशानी का हल लेकर यहाँ पर आते हैं, और आपको सिर्फ अपने प्रश्न ही तो पूछने होते हैं जो आप घर बैठे पूछते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ जाते हैं या फिर व्हाट्सएप के साथ आप जुड़े ही रहते हैं। तो चलिए, आज का जो विषय है, बहुत सारी जानकारी आपको मिली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की, और होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तो हमने वो भी डॉक्टर साहब से पूछा, पर डॉक्टर साहब ने हमें साफ बताया कि हर केस डिफरेंट होता है और आपको जाना होगा और इसको बाकायदा डिस्कस किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। यहां पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, जब घर में किसी को भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है तो सिर्फ वो ही प्रभावित नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे और लोग जो रह रहे होते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इसके फैमिली मेंबर्स हों चाहे रिलेटिव हों चाहे नेबर्स हों, वो भी इम्पैक्ट होते हैं। तो एक तो ये कि किस तरह से वो मदद कर सकते हैं उसकी, जिसको जो ये पेशेंट है, तो वो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें, उनकी हेल्प करने के लिए किस तरह का व्यवहार उन्हें करना चाहिए उनके साथ।
1: प्रायर टू दैट थिंग मैं ये बोलती हूँ, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक बढ़िया थेरापेटिक रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। दैट मीन्स द क्लिनिशियन needs to maintain that empathy, consistency, what should I say, professional boundaries and all, है ना, non-judgment होना चाहिए, clear communication. So उसके साथ है ना, because हमें we are sure that this person is living with family, right? So जो members को बुलाकर अलग से psycho education, even certain we have to give certain strategies how to communicate with this particular this persons, ये भी देना बहुत important है. टीच them how to set boundaries. बार बार मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ, सेटिंग बाउंड्रीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका मीनिंग यही नहीं है यू आर डिनाइंग कंपैशन, यू डोंट नीड टू टॉलरेट द हार्मफुल बिहेवियर. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्राइसिस प्लानिंग भी करना है, कुछ क्राइसिस होने विथ हाउ टू deal with that thing, and the family members should understand what are all the situations that can trigger points, kya kya hai triggering situations, kya kya hai. I think we can support their mental health also, right? And we should understand one thing, that they are supporters, family members are supporters, not they are not substitutes for professional treatment. And another important thing is that hospitalization is not automatically required if somebody is having personality disorder. But agar somebody is exhibiting significant suicide risk, severe self-harm, or substance-related risk, you know, so yeah, violence ki risk, yeah, inability to maintain safety, ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटलाइजेशन शुड बी कंसिडर्ड.
0: जी जी.

0: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है जो कई बार मिस हो जाती है कि कभी कभी सीवियर केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन भी जरूरी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, ये बताएं कि जैसे आपसे कोई मेडिसिन लेता है, अगर आप उसको डिस्कवर कर लेते हैं किस तरह की बीमारी है, कब तक मेडिकेशन चलेगी, तो क्या मेडिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग या योग या मेडिटेशन, ध्यान, योग, इन सब का भी महत्व होता है डील करने में?
1: मैम, ये मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ WHO's डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड देर आर सर्टन अदर फैक्ट, इट्स अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग। क्या क्या एस्पेक्ट पर? इमोशनल, mental and physical well-being hona chahiye. That situation is called, that state is called healthy situation, you know?
0: Healthy person.
1: So apart from that thing, there are certain dimensions bhi hai. Like you have to create a balance, you know? Like there are certain other dimensions, like intellectual wellness hona chahiye, occupational wellness hona chahiye, financial wellness hona chahiye, spiritual wellness hona chahiye. So ye sab aapko maintain, balance karna hi padega. बिकॉज ये सब बैलेंस करने के अल्टीमेट प्रोडक्ट है हेल्थ। सो यू हैव टू, यू कैन प्रैक्टिस योगा इफ इट इज गिविंग बेनिफिट्स टू यू, यू कैन ट्रैवल, है ना, यू कैन एक्सप्लोर नेचर, यू हैव टू, है ना, ऑब्जर्व एवरीथिंग, यू हैव टू, देन दिस थिंग्स कैन हेल्प इन द सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड दैट विल इवेंचुअली लीड टू गिव द रिस्पॉन्स रादर देन रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन।
0: लेकिन फिर वही बात जो आपने शुरू में बोली कि हर पेशेंट को या जिसको भी लगता है कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसे डॉक्टर के पास जाना होगा और एक डिसाइसिव उस पे आना होगा कि कौन सी चीज उनके लिए वर्क करेगी, बिकॉज इट इज टोटली डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो चलिए, इस आज की बातचीत से ये तो साफ हो गया कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए हम इस तरह के कार्यक्रम भी आपके लिए रेडियो डॉक्टर में लेकर आते हैं। अगर आप या आपका अपना कोई इस तरह के दौर से गुजर रहा है तो कृपया छुपाएं नहीं बल्कि खुलकर मदद करें। उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको एक नई चीज जानने को मिली होगी, मानसिक स्वास्थ्य की तरफ एक नई नजरिए से आज आप देखना शुरू करेंगे। हम आज के अपने रेडियो डॉक्टर का धन्यवाद देना चाहेंगे जो समय निकालकर यहां आई हैं और इतनी जो जटिल सा हमारा ये एक एपिसोड था उसको आपने काफी सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि काफी बेनिफिशियल रहा होगा हमारे श्रोताओं के लिए। डॉक्टर चित्रा वासु हमारे साथ रही, होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं, MD इन होम्योपैथिक फिलोसफी हैं, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली में आप कार्य करती हैं। धन्यवाद आपको कि आप समय निकालकर यहां आई हैं। तो याद रखिए, सेहतमंद ही खुशहाल जीवन की कुंजी है, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम का फीडबैक देना चाहते हैं, आप healthaiadelhi पर हमें @gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आप किसी विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी विशेष विषय पर आप चाहते हैं कि हम कार्यक्रम करें, वो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। इसी तरह से रेडियो डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू मैम।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा पहल से राष्ट्रीय ध्वज ने संपूर्ण धरती की अद्भुत यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज केरलम के अल्पुड़ा में दैनिक केरलम कॉमेडी के 115वें वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 68.5 टन राहत सामग्री भेजी है और खोज तथा बचाव कार्यों में सहायता के लिए तकनीकी दल, फोरेंसिक विशेषज्ञ और उपकरण भेजे हैं। मध्य नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 734 हो गई है। 2500 लोग अभी तक लापता हैं। चीन में भारतीय दूतावास ने सूचित किया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों ने नेपाल में हाल की अचानक बाढ़ में लापता हुए विदेशी नागरिकों की सूचना देने के लिए 24 घंटे चलने वाली अंग्रेजी भाषा में हॉटलाइन शुरू की। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने चिली के सेंटियागो में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध उपमंत्री पाला एस्टेवेज वेन्स्टीन के साथ बैठक की। मौसम विभाग ने ओडिशा में

मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी ललियान जुआला चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है और भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समयानुसार मैच रात 8:30 बजे। FM रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। दोस्तों अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो जीनियस, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम लम्हे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ। हेल्थी फूड्स मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, जाने मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाने का असर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन एक दूसरे से संबंधित होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भोजन खाने की जरूरत होती है। संतुलित भोजन हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और इम्यून सिस्टम के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ध्यान देना चाहिए। आज के समय में हमारे सामने कई ऐसे लोग आते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन में जरूरी समझते हैं। वे स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखने के लिए हर रोज व्यायाम करते हैं, लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी का उनके पता नहीं। लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध का उनको पता नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किए बिना शरीर की फिटनेस नहीं हो सकती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी फूड्स और डाइट मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़े होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। जब हम अच्छा खाते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हरे पत्तेदार सब्जियां, हरी

कांटेदार सब्जियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, मिनरल्स, अल्फा लिनोलिक एसिड और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है। विटामिन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फ्रूट जैसे बेरीज और जामुनों का सेवन हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। बेरीज और जामुन दिमाग की काम करने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। शोध के मुताबिक जो लोग हर रोज फ्रूट खाते हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बहुत से फलों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट से हमारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अखरोट यानी वॉलनट में फैटी फिश की तरह ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारी याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक हेल्थ की बात करें तो भोजन सबसे अधिक अंधे की पहलुओं में से एक है, लेकिन सच्चाई ये है कि हेल्थी डाइट के बिना आप अपने शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते हैं। भोजन शरीर को विटामिन

ये बात साबित हुई है कि एक पौष्टिक आहार से कई तरीकों से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फ्रूट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव और शरीर की सूजन से लड़ने वाले सुपर पोषक तत्व है। ये ताजे और कलरफुल फ्रूट्स और सब्जियों में पाई जाती है, जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरीज, नट्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, डू यू नो गट इज अ सेकेंड ब्रेन। पेट को बॉडी के दूसरा ब्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका नेटवर्क और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। मजबूत इम्यूनिटी के निर्माण और ब्रेन को बॉडी की जरूरत का संकेत भोजन के रूप में काम करने के लिए संकेत भेजता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, केफिर, कम्बुचा, किमची आदि अच्छे बैक्टीरिया है जो डाइजेशन, आंतों को साफ करना और पेट को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी आंत स्वस्थ होती है तो ब्रेन को विश्राम, निराश और खुश होने के संकेत मिलते हैं। यह बॉडी की सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। एक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भोजन मानसिक हेल्थ को बढ़ाए देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। भोजन में पोषण से ब्रेन को जरूरी ईंधन मिलता है और प्रभावी रूप से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन के अनुकूल डाइट लें। दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी को ये जरूर कहा होगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसी बात को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन ये महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोविड के बाद से ये मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन चीजों की कई लोग ध्यान देना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में हम आपके लिए दिमाग को हेल्थी और बीमारियों से दूर रखने के उपाय बता रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी निर्धारित करने में मदद करता है कि एक तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरे को प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं और चुनाव करते हैं। बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता तक जीवन का हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, विटामिन बी बहुत जरूरी है। ये 8 अलग अलग पोषक तत्वों का एक समूह है। विशेष रूप से B6, B9, फोलिक एसिड और B12 शामिल है। ये तंत्रिका तंत्रों को समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पिछले एक दशक के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं का जोखिम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे और युवाओं में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि महामारी के बाद से जिस तरह से लोगों में चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम देखा जा रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर का कल्पना नहीं की जा सकता है। तो दोस्तों, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे चेतन के साथ। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है रेनबो जीनियस, और मैं हूँ आपके साथ राजेश कुमार। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ सवाल आपसे पूछते हैं और उन सवालों के बिल्कुल सही जवाब देकर आप बनते हैं रेनबो जीनियस। तो इस ज्ञान और मनोरंजन के सफर में हम और आप हैं एक दूसरे के साथ, और स्वागत करते हैं आपका इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद हम आते हैं आप तक अपने उन साथियों के साथ जो आज बनना चाहते हैं हमारे रेनबो जीनियस। और रेनबो जीनियस बनने के लिए तरीका हम आपको शुरू में ही बता देते हैं कि हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और सवाल हम आपसे फोन लाइन पर पूछते हैं। तो आप हमारे साथ सीरियस स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। फोन लाइन हमारी दो आज आपके लिए उपलब्ध हैं। पहली फोन लाइन है 2342-1080 और दूसरी है 2342-1084-01, जो कि दिल्ली का STD कोड है। अगर आप दिल्ली से बाहर से या मोबाइल फोन से लगा रहे हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0112342-1080 और 2342-1084। इस नंबर पर आप और हम एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। स्वागत है आपका इस गीत के साथ।

0: बिल्कुल जी, आप भी जीत सकते हैं और आपको भी मिल सकती है बधाइयां, क्योंकि ये प्रोग्राम है रेनबो जीनियस, जिसमें हम आपसे पूछते हैं कुछ सवाल और उन सवालों के सही जवाब देकर आप बनते हैं रेनबो जीनियस। तो हमारे पहले कॉलर बिल्कुल तैयार हैं, तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं, ज्यादा इंतजार न कराते हुए चलते हैं सीधे उनके पास और देखते हैं कि कौन है और कहां से हमसे जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर। अपना संक्षिप्त परिचय दें।
1: जी, मैं उमेश कुमार बात कर रहा हूँ, हरियाणा से।
0: अच्छा, कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया आपने। क्या करते हैं उमेश जी?
1: मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पे ड्यूटी कर रहा हूँ।
0: चलिए, बढ़िया बात है।

0: और तैयार हैं आप खेलने के लिए ये रेनबो जीनियस में हमारे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने के लिए?
1: हाँ, करते हैं कोशिश।
0: चलिए कोशिश करिए। और कोशिश करने में पहला सवाल आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि आप ये बताइए कि अभिनेता के रूप में 1,000 से अधिक फिल्मों में काम करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस अभिनेता के नाम पर है?
1: 1,000 फिल्मों में
0: 1,000 से अधिक फिल्मों में काम करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस अभिनेता के नाम है?
1: पुराने अभिनेता है क्या? थोड़ा बहुत हिंट्स देंगे आप?
0: अच्छा, आपको हिंट्स भी चाहिए?
1: मसलों में तुक्का लगा देता हूँ।
0: भारतीय है
1: दिलीप
0: वो?
1: जी, दिलीप कुमार।
0: तुक्का तो नहीं चल पाएगा, आपको एक ही बार में जवाब देना होता है।
1: चलो सर, नहीं
0: अच्छा
1: पता।
0: चलिए, उमेश जी आपने कोशिश के लिए इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सही जवाब हम आपको बता देते हैं, सही जवाब है ब्रह्मानंदम। आपने उनकी कॉमेडी देखी होगी कभी यूट्यूब पर, कभी जो डब फिल्म्स आती हैं उनमें देखी होगी।
1: जो साउथ के एक्टर है
0: बिल्कुल
1: वो।
0: बिल्कुल, तेलुगु सिनेमा में इस हास्य अभिनेता ने 4 दशकों से अधिक के करियर में 1,000 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और अपने अभिनय के लिए और अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए खासतौर पर जाने जाते हैं।
1: जी धन्यवाद सर।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका और हमसे जुड़ने के लिए। और आपने कोशिश की और कोशिश करना इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर। शिवशंकर
1: जी, शिवशंकर बोल रहे हैं पूर्णिया से। ठीक
0: जी कैसे हैं आप?
1: है सर, बहुत अच्छा है। और
0: अरे
1: आपका
0: वाह,
1: कार्यक्रम रेगुलर सुनते हैं सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा अपने
1: और
0: बारे में और
1: रिकॉर्ड
0: बताइए।
1: रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं सर, बोल देते हैं।
0: अच्छा, रिकॉर्ड कीजिए आप
1: दिस
0: पूरा।
1: कॉल इज नाउ
0: तो
1: बीइंग रिकॉर्डेड।
0: आप
1: हाँ सर, बोलिए सर।
0: तैयार हैं रेनबो जीनियस में सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं?
1: जी सर, पूछिए।
0: तो चलिए पहला सवाल आपसे ये पूछते हैं हम कि ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक राजधानी कौन सी है?
1: क्या सर?
0: ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम आपको बताना है।
1: कैनबरा है सर?
0: कौन सी है
1: कैनबरा।
0: आप थोड़ा सा सही से बताइए।
2: कॉल रिकॉर्डिंग हैज नाउ एंडेड।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ सर, आवाज का दिक्कत हो रहा था।
0: तो आपकी आवाज हमें आ रही है, तो बताइए कि हमने जो सवाल आपसे पूछा था आपको अच्छे से सुनाई देगा?
1: जी
0: ऑस्ट्रेलिया की हमने राजधानी पूछी आपसे, आप बताइए जवाब। ऐसा लग रहा है कि शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही। कोई बात नहीं, हम अपने अगले कॉलर तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो कौन है और कहां से हमसे जुड़ रहे हैं। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, इसका नाम है रेनबो जीनियस। और रेनबो जीनियस प्रोग्राम में हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और उन सवालों के सही जवाब देकर आप रेनबो जीनियस बनते हैं। और रेनबो जीनियस आप बन सकते हैं, हमने 2 फोन लाइन्स आपको शुरू में ही बता दी हैं कि आप उन फोन लाइन्स पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उन 2 फोन लाइन्स का एक बार फिर से मैं आप तक पहुंचा देता हूं। वो 2 फोन लाइन्स हैं 2342-1080 और 2342-1084, 2342-1080 एंड 2342-1084 01, जो कि दिल्ली का एसटीडी कोड है। आप फोन नंबर जब ये डायल करेंगे तो उससे पहले लगाइएगा, आपका नंबर आसानी से हम तक लग जाएगा। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े, आइए उनसे जुड़ते हैं। जी
3: हेलो,
0: नमस्कार,
3: नमस्कार सर,
0: अपना परिचय दें।
3: हेलो
0: जी
3: हेलो
0: जी आपकी आवाज हमें आ रही है, अच्छे तरह से आ रही
3: जी,
0: है, अपना
3: रामधारी
0: परिचय
3: बात
0: दें।
3: कर रहा हूँ हिसार हरियाणा से।
0: एक बार फिर से नाम बताएं अपना,
3: हाँ जी,
0: अपना नाम एक बार फिर से बता दें। ऐसा लग रहा है कि इन तक भी कुछ ऐसा समस्या आ रही है इन तक। हालांकि इन्होंने पीछे रेडियो चलाया था, उसकी आवाज हमें आ रही थी, पर कोई बात नहीं, अगले लिसनर की तरफ चलते हैं। हेलो
4: हेलो,
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर।
4: नमस्कार, मैं केशव चक्रवर्ती त्रिपुरा अगरतला से।
0: केशव जी,
4: हाँ,
0: हाउ आर यू केशव जी?
4: हाँ, आई एम फाइन सर।
0: ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो हमारे आप रेगुलर लिसनर हैं।
4: वेदर इज वेरी गुड, मौसम अच्छा है
0: अरे वाह,
4: और दिन भर अच्छा।
0: अच्छी बात है, आप इस अच्छे मौसम का आप लाभ लें, स्वास्थ्य लाभ लें, अच्छे से इसको एंजॉय करें और हमारे इस प्रोग्राम के साथ भी आप बने हुए तो हमें और अच्छा लगा। केशव जी पिछली बार भी हमने आपसे बात की थी और इस बार फिर से मौका मिला है कि आपसे हम जुड़ रहे हैं, आप त्रिपुरा से हमारे साथ हैं। तो चलिए आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्या आप तैयार हैं? हेलो,
4: त्रिपुरा, रिपीट द क्वेश्चन सर, आवाज कम आ रहा है।
0: आवाज कम आ रही है?
4: मौसम,
0: नहीं मौसम का हो गया, मौसम से जुड़ा कोई सवाल आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे सवाल अब पूछने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं सवाल सुनने के लिए?
4: हाँ सर, आप तैयार है।
0: अभी हमने एक हमारे श्रोता से पूछा था सवाल कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कौन सी है राजधानी इसकी ऑस्ट्रेलिया की, तो आप बताइए।
4: कैनबेरा।
0: बिल्कुल सही जवाब। और इससे जुड़ी जानकारी ये है कि सिडनी और मेलबोर्न के बीच में राजधानी बनने की प्रतिद्वंदिता को खत्म करने के लिए 1908 में
4: मेलबोर्न तो वन ऑफ द ऑफिशियल बट कैनबेरा आई थिंक।
0: बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैं बस उससे जुड़ी हुई बात बता रहा था केशव जी कि सिडनी और मेलबोर्न में राजधानी बनने की एक थी बात कि मैं बनूं, मतलब सिडनी को लगा कि वो बनना चाहिए, मेलबोर्न को लगा वो बनना चाहिए, लेकिन फाइनली कैनबेरा को चुना गया था ये 1908 में। तो ये बात है। अच्छा, अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा सवाल हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है?
4: अभिनव बिंद्रा इन शूटिंग इन बीजिंग ओलंपिक।
0: क्या बात है, एकदम आपने आज ट्रांसलेशन की बिल्कुल भी, केशव जी आपको आज ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, आपने हिंदी में ही सुन लिया और हिंदी में ही जवाब दे दिया, बहुत अच्छा लगा हमें जानकारी।
4: मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा जानते सर, मैंने आई बीन प्रैक्टिसिंग सर कंटिन्यूअसली, आई कैन लर्न हिंदी विद इन वेरी।
0: बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और पिछली बार मुझे याद है कि एक दो बार आपसे बात हुई तो वो सवाल मुझे अंग्रेजी में भी आपसे पूछना पड़ा और फिर आपने उसका जवाब दिया, तो अच्छी बात यह है कि आप एक ही बार में जवाब दे रहे हैं, तो दो सवालों के आप सही जवाब दे चुके हैं। तीसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं और तीसरा सवाल आपके लिए थोड़ा आसान होगा। आप ये बताइए कि प्रसिद्ध कहानी संग्रह मालगुडी डेज के लेखक कौन है?
4: आर के नारायण।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। और मालगुडी के बारे में अगर हम बात करें तो मालगुडी एक काल्पनिक,
4: ये मैं देखा था सर, ये में सीरियल है ना।
0: हाँ,
4: मालगुडी डेज, ये आर के नारायण का बहुत अच्छा लगा सर।
0: बहुत अच्छी बात है केशव जी,
4: इंडियन ट्रेवल का स्टोरी बहुत अच्छे है।
0: चलिए अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप बिल्कुल बहुत अच्छा आज सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो चौथा सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं हम, आपको ये बताना है कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? हेलो
4: सर, आवाज तो मैं सुना ना रही है।
0: अच्छा, तो आवाज तो आपकी हमें पूरी आ रही है। चलिए एक बार फिर से मैं सवाल दोहराता हूँ आपके लिए, क्या आप सुन पा रहे हैं आप? हाँ, तो आप ये बताइए कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? ये चौथा सवाल है आपके लिए।
4: फोटोसिंथेसिस सर, इन फाइन सर।
0: जी बताइए।
4: फोटोसिंथेसिस तो ये सर कार्बन डाइऑक्साइड।
0: बिल्कुल सही जवाब। और आपने चार सवालों के सही जवाब दे दिए, पक्का आप पूरी तैयारी कर रहे हैं केशव जी, और हमें लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए।
4: अरे आपका तो सर ज्ञान भंडार लेके बैठे है, ज्ञान भंडार योर हाउस इज नॉलेज होम।
0: चलिए अच्छी बात है,
4: जीनियस है ना ये तो, नॉलेज।
0: चार सवालों के आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिए हैं। अब आपसे पांचवा और आखिरी सवाल हम पूछ रहे हैं और इस सवाल का सही जवाब देकर आप रेनबो जीनियस बन सकते हैं। तो सवाल ध्यान से सुनिए, सवाल आपके लिए है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा जो है, कोस्ट लाइन जो है, सबसे लंबी है?
4: कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया सर आंध्र प्रदेश।
0: आप फिर से,
4: आंध्र प्रदेश।
0: ये आपका सवाल जो था वो आपने पूछा था, उसका जवाब आपका थोड़ा सा सही नहीं रहा, कोई बात नहीं केशव जी, सही जवाब है गुजरात, अरब सागर से सटी गुजरात की जो तट रेखा है। बिल्कुल इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है लगभग, ठीक है
4: जी।
0: तो जी बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जी तो दोस्तों हमें रह गए थोड़ी सी बस दूरी पर रह गए केशव जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों अब चलते हैं अगले गीत की तरफ और गीत के बाद वापस आएंगे अपने एक और कॉलर की तरफ चलेंगे, उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि वो रेनबो जीनियस बन पाते हैं कि नहीं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरा ढाते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं? इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर सात के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: कोयल सी तेरी बोली,
7: हाय
6: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
9: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है रेनबो जीनियस। मैं हूं आपके साथ राजेश और मेरे साथ हैं हमारे बहुत सारे

0: प्यारे प्यारे लिसनर्स जो बनने की कोशिश कर रहे हैं रेनबो जीनियस, तो आइए देखते हैं कि हमारे साथ अब फोन लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर।
1: जी नमस्कार,
0: अपना परिचय दें।
1: जी मैं प्रकाश चंद बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: प्रकाश चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और तैयार हैं आप रेनबो जीनियस में, आप तक हम सवाल पहुंचा सकते हैं अब?
1: आप कहें और हम ना माने, ऐसे तो हालात में
0: क्या बात है, काफी शायराना है आप तो। चलिए ठीक है, शायरी से तो नहीं लेकिन हाँ किताब से जुड़ा हुआ कोई सवाल हम आपसे जरूर पूछेंगे। अब जब आपने बात ऐसी कर दी है तो एक सवाल आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, अभी तो नहीं लेकिन देखते हैं, हो सकता है कि आपसे सवाल हम वो पूछ लें। आप ये बताइए, चलिए अभी आ गया, विश्व प्रसिद्ध उपन्यास जो है, श्रृंखला है इसकी एक, हैरी पॉटर, इसके रचयिता कौन है? हेलो प्रकाश जी, क्या अब तक हमारी आवाज जा रही है?
1: जी, आपने पूछा है, यह कुछ रोलिंग, जेके रोलिंग।
0: अच्छा, कुछ रोलिंग, जेके रोलिंग। अच्छा, आपने तो क्या हमारा बढ़िया किया आपने, लेकिन अच्छा आपने किया है और एकदम सही जवाब आपने दिया है। अब दूसरा सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं हम, आपको बताना है, थोड़ा जल्दी बताइएगा आप, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल रुक सी गई थी तो हमें लगा कि फोन लाइन कट तो नहीं गई, तो आप जल्दी बताइए।
1: मेरे पास भी आपकी आवाज हल्की आ रही है लेकिन मैं थोड़ा रेडियो से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, तो मैं अपना एक काम करता हूँ, फेडर को मैंने एकदम उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है, तो अब बताइए। सवाल ये है आपसे कि टेनिस का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विंबलडन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है?
1: इस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है?
0: हाँ, ऑन व्हाट टाइप ऑफ कोर्ट इज विंबलडन द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट प्लेड? हाँ, किस तरह के कोर्ट होते हैं ना अलग अलग,
1: जो जो ये वास्तविक ग्रास, ये नेचुरल ग्रास कह सकते हैं
0: आप,
1: उस पर खेला जाता है,
0: ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, आप ये कह रहे हैं?
1: हाँ जी, ग्रास रोड, जो एक्चुअल ग्रास रोड होता
0: है, ग्रास कोर्ट, ये कह रहे हैं आप?
1: जी हाँ।
0: अच्छा चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, वैसे थोड़ा थोड़ा तो आगे पीछे हुआ है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सवालों के सही जवाब दें, तो सही जवाब। हाँ
1: राजेश जी, आप तो बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हो।
0: अच्छा, मुश्किल लग रहा है आपको, चलिए ठीक है।
1: अजी मैं तो एक साधारण सा रेनबो का श्रोता और आपका एक सेल्समैन हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, लेकिन ये जो सवाल है ना वो भी जो खेल में रुचि रखते हैं उनके लिए थोड़ा आसान ही है वैसे तो, लेकिन चलिए ठीक, आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो हम आपके लिए सवाल को थोड़ा और भी आसान करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में अगर बताएं तो 1877 में शुरू हुआ विंबलडन एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो आज भी प्राकृतिक घास पर खेला जाता है, तो ये सवाल का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया, दो सवालों के आप सही जवाब दे चुके हैं। तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और आप ये बताइए कि 1975 में एक फिल्म आई थी जो ब्लॉकबस्टर रही थी, फिल्म का नाम था शोले, उसके निर्देशक कौन थे? शोले फिल्म के निर्देशक कौन थे?
1: वो एक सिप्पी बंधु थे, रमेश सिप्पी।
0: सिप्पी बंधु नहीं थे वो,
1: रमेश सिप्पी।
0: बिल्कुल सही जवाब, तीन सवालों के आप सही जवाब दे चुके हैं प्रकाश जी। आप कह रहे हैं कि साधारण सवाल पूछिए, आसान सवाल पूछिए और सही सवालों के जवाब देते जा रहे हैं आप, ये तो आप
1: इस सवाल का जवाब इसलिए दे पाए ना क्योंकि रेनबो और एफएम तो सुनते
0: हैं। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं आपसे। चौथा सवाल ये है कि क्षेत्रफल और गहराई के मामले में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? और ये महासागर इतना विशाल है कि इसमें पृथ्वी के सभी महाद्वीप समा सकते हैं।
1: जी प्रशांत महासागर
0: है। क्या बात है, चार सवालों के आपने सही जवाब दिए प्रकाश जी, आप ज्ञान का प्रकाश आप तक पहुंच रहा है ऐसा लग रहा है, ये तो बहुत
1: आप लोगों से सीखा
0: है। अच्छा कर रहे हैं आप, और अब आखिरी सवाल पर पहुंच रहे हैं हम और इस सवाल का सही जवाब देकर आप बन सकते हैं रेनबो जीनियस, और ये सवाल जो है थोड़ा सा खट्टा सा सवाल है, खट्टा सा इसलिए है कि आपसे ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है?
1: ये तो बच्चे बच्चा जानता है, सिट्रिक एसिड, ये विटामिन सी।
0: देखिए अब आपने कहा कि सवाल कठिन पूछ रहे हैं, आसान पूछ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं बच्चा बच्चा जानता है, ये तो आपने वो कर दिया बात। चले ठीक है, आपके पांच सवाल के आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिए प्रकाश जी, आप बनते हैं हमारे आज के पहले रेनबो जीनियस, बहुत बहुत बधाई आपको।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कहना चाहूंगा कि जब माननीय मुनीष जौली जी कार्यक्रम किया करते थे ना,
0: अच्छा,
1: तो उस समय मैं दो बार रेनबो जीनियस बना था, इस बात को 10-11 साल हो गए,
0: पुराने खिलाड़ी हैं आप।
1: जी
0: चलिए प्रकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
1: हमारी मैसेज पढ़ते हैं, हमारी फरमाइश पूरी करते हैं, इसके लिए मैं समस्त तरीन वो

0: परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यार से आप हमें सुनते हैं, आपसे बात करने का हमें मौका मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह से रेनबो के साथ जुड़े रहिए, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्त हमारे मिले पहले हमें रेनबो जीनियस प्रकाश जी, जो कि दिल्ली से ही हैं, और इन्होंने सवालों के जवाब ऐसा पहले तो बोला कि कठिन सवाल पूछ रहे हैं, और जब इनसे सवाल हम पूछने लगे तो कह रहे हैं कि बच्चे जैसे सवाल कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन ये अपनी बातों में फंसा के रेनबो जीनियस बन गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इन्होंने कोशिश की और लगातार हमारे श्रोता हैं और वो बता भी रहे थे, तो आप भी बन सकते हैं रेनबो जीनियस। उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, कॉल करने के लिए नंबर जो है एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, आप हमें स्टूडियो में सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ सकते हैं 2342-1080 और 2342-1084, ये हमारी दो आज हॉटलाइन है आपके लिए, इस पर आप फोन करके हमारे साथ सीधे लाइव बातचीत कर सकते हैं और हमारे सवालों के जवाब देकर बन सकते हैं रेनबो जीनियस। और फिलहाल समय है कि हम आप तक पहुंचाएं एक और गीत।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक प्रोग्राम है रेनबो जीनियस। और रेनबो जीनियस के इस कोशिश में लगातार हमारे कई साथी बने हुए हैं कि सवालों के सही जवाब देकर बन जाए रेनबो जीनियस। और हमारी भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले मौका, और उस कोशिश को हम बढ़ा रहे हैं आगे और चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका FM रेनबो पर। हेलो हेलो
1: हेलो
0: भाई साहब, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आप हैं कि जवाब ही नहीं दे रहे हैं।
1: आवाज आ रही है?
0: आ रही है। चलिए परिचय दीजिए अपना।
1: हाँ, मेरा नाम विश्वजीत बर्मन है, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, विश्वजीत बर्मन उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं आप, तो क्या करते हैं आप विश्वजीत जी?
1: मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ सर।
0: अरे वाह, क्या बात है, टीचर से सवाल पूछने का अपना ही मजा है, बहुत अच्छा लगेगा आप तो। तो चलिए, तैयार हैं आप सवाल का जवाब देने के लिए?
1: जी सर।
0: तो आपसे पहला सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जिन्होंने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार किया था?
1: मौर्य साम्राज्य संस्थापक तो बिंदुसार थे, लेकिन आवाज आपका कट कट के आ रही है, बिंदुसार।
0: मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जिन्होंने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार किया था?
1: चाणक्य की सहायता से, तो बिंदुसार थे सर।
0: बिंदुसार थे। आपका वैसे कोशिश तो आपने सही की, लेकिन आपका ये जवाब जो है वो थोड़ा सा सही नहीं हुआ विश्वजीत जी। सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य है।

0: हेलो,
1: हेलो
0: क्या आप हमें सुन पा रहे हैं विश्वजीत जी?
1: जी, बताइए सर, आवाज
0: अच्छा,
1: आ रही है?
0: हाँ, तो सही जवाब तो चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए ना?
1: हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन संस्थापक पूछे थे कि चंद्रगुप्त
0: नहीं, मैंने तो
1: सर।
0: संस्थापक ही पूछा था। मैंने पूछा था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से,
1: अच्छा,
0: चाणक्य जी
1: चाणक्य,
0: का।
1: क्या जिसने कौटिल्य
0: हाँ
1: गोष्ठी से
0: हाँ
1: बोले थे
0: हाँ हाँ
1: विष्णुगुप्त,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: वो तो
0: आपने
1: जानते हैं, लेकिन आवाज सबका क्लियर नहीं आ रहा था।
0: चलिए,
1: हाँ, तो
0: कोई बात नहीं।
1: चंद्रगुप्त
0: आप
1: मौर्य को बहुत ही उनको हेल्प किया था उन्हीं के, क्योंकि उसका ब्राह्मण को अपमान भी किए थे उन्होंने।
0: घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी,
1: हाँ,
0: और लगभग,
1: धनानंद को हरा कर,
0: हाँ बिल्कुल। तो
1: तो
0: बहुत बहुत
1: धनानंद
0: धन्य।
1: जी ने चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य को अपमानित किए थे
0: हाँ, वो
1: उस
0: तो
1: ब्राह्मण
0: कहानी
1: पंडित, तो
0: तो
1: उसने बिल्कुल बाद में
0: बिल्कुल
1: कहीं, तो
0: बिल्कुल।
1: हमने आवाज की क्लियरिटी नहीं हुआ था
0: कोई
1: सर।
0: बात नहीं, कोई बात नहीं विश्वजीत जी,
1: जी
0: आपने कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने आपके इस सवाल की कोशिश में, और कोशिश में हमने भी की थी,
1: जी
0: इसको 2 बार बोला था, लेकिन आपने उसको उस समय शायद सही से सुन नहीं पाए, या फिर जवाब देने में आपने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी होगी, हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, सही जवाब ये है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की और लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया था। और अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर।
2: हेलो
0: जी, आपको आवाज आ रही है हमारी?
2: हेलो
0: हाँ जी, आपको हम सुन पा रहे हैं क्या? आप हमें सुन पा रही हैं?
2: हाँ, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, अपना परिचय दें।
2: रूबी कुमारी अरविया बिहार से बोल रहे हैं
0: अच्छा, अररिया से रूबी। रूबी जी, क्या करती
2: जी।
0: हैं आप?
2: ऐसे पढ़ाई करते, कंप्लीशन से आई।
0: अरे भाई, तब तो आपके लिए और आसान होगा हमारे सवालों का जवाब देना। आपसे हम पहला सवाल ये पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है?
2: क्या आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है?
0: सिर्फ आपको ही नहीं हो रहा है, ऐसा कई लोगों को हो रहा है। तो फिर मैं एक बार फिर से मैं बोलता हूं आपके लिए ये सवाल। आप ये बताइए कि वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है?
2: एक बार और बोलिए।
0: तीसरी बार आप सवाल सुनना चाह रही हैं। वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, ये हमने सवाल आपसे पूछा है। आ, आ, आ, आ, आ, ऐसा लग रहा है इन तक आवाज नहीं पहुंची है, लेकिन इन्होंने कोशिश की है। चलिए, अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, शायद उन तक आवाज हमारी पहुंचे। हेलो
3: हेलो,
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर।
3: नमस्कार
0: अपना परिचय दें।
3: सर जी। रामधारी बात कर रहा हूँ
0: रामधारी जी, आप तक हमारी आवाज सही से पहुंच रही है?
3: जी। कम, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी।
0: कम आवाज आ रही है, तो हम आपको, क्या अब आप सुन पा रहे हैं सही से? पहले
3: जी थोड़ा बहुत सुन पा रहा हूँ।
0: से बेहतर हुआ? तो आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं रामधारी जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? ये सवाल नहीं है रेनबो जी ने,
3: जी
0: इसका बस ऐसे ही आपके
3: ये
0: लिए पूछने
3: मेरा
0: का।
3: गांव है सर, ढाणी कुतुबपुर जिला है हांसी, हरियाणा से बात कर रहा हूँ
0: ओ, आप भी हरियाणा से हैं? अच्छा,
3: जी।
0: तो आपसे सवाल हम पहला वाला पूछते हैं, ये कि वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, आप ये बताइए।
3: वायुमंडल का बताना, समताप मंडल।
0: नहीं, आपको वो बताना है परत, वो एक लेयर होती है जो
3: ओजोन परत होता है
0: ओजोन परत। हाँ, ये
3: जी
0: देखिए, आपने अब सवाल को ध्यान से सुना तो इसका जवाब देना आपके लिए हो गया
3: जी
0: आसान। तो पहले सवाल का आपने सही जवाब दे दिया है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये बताना है कि एक सींग वाले दुर्लभ भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है?
3: असम का है सर,
0: हाँ, असम का है, कौन सा है?
3: एक
0: समय लगेगा आपको,
3: मिनट सर, मैं क्योंकि
0: गूगल करेंगे
3: नहीं, गूगल तो नहीं कर रहा सर
0: तो
3: मैं।
0: जब आप नहीं बता पा रहे तो कैसे बताएंगे आप,
3: एक
0: पूछेंगे?
3: मिनट सर, एकदम जैसे
0: हाँ, तो एकदम से
3: असम
0: ही
3: का,
0: पूछते हैं हम।
3: असम में होता है राइनोसोरस।
0: असम में है, लेकिन भाई साहब इतना टाइम लोगे तो फिर कित जाएंगे हम तो अड़े बैठे रह जाएंगे, आपको थोड़ा जल्दी करनी होगा। हेलो,
3: सर
0: आप?
3: एकदम स्लिप हो गया दिमाग से।
0: अच्छा, कोई बात
3: धन्यवाद
0: नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कोशिश करने के
3: जी।
0: लिए। सही जवाब है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
3: काजीरंगा नेशनल पार्क,
0: हाँ ये
3: तो
0: सही
3: सर
0: जवाब है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि असम में स्थित ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर है, जो रहते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये तो बात रही सवाल की, समय एक और गीत आप तक पहुंचाएं और उसके बाद वापस आते हैं अपने एक और कॉलर के साथ।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
3: ठीक है।
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम है रेनबो जीनियस। और चलिए चलते हैं एक और कॉलर की तरफ और देखते हैं कि कौन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हेलो।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर। अपना परिचय दें।
1: जी, मैं सचिन बात कर रहा हूँ बहादुरगढ़ से। जी
0: सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सवाल आपके लिए, समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी सवाल आप तक पहुंचाते हैं। आपको ये बताना है कि अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
1: अरुंधति रॉय।
0: अरुंधति राय, बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा सवाल ये है आपसे कि भारत के किस शहर को देश की सिलिकॉन वैली या आईटी कैपिटल के नाम से जाना जाता है?
1: बेंगलुरु।
0: बेंगलुरु, बिल्कुल सही जवाब। और तीसरा सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? ये जो नाटक,
1: कालिदास।
0: कालिदास। वाह, क्या बात है, तीन, जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ। अगला सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए कि किस दिग्गज भारतीय बल्लेबाज को क्रिकेट जगत में लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है?
1: सुनील गावस्कर।
0: सुनील गावस्कर, क्या बात, आपने एकदम रट के रखा है सब सब। और आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं हम, जो आपको बना सकता है रेनबो जीनियस। आपको ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के
1: शिरडी देशमुख।
0: सीडी देशमुख। क्या बात है, बिल्कुल सही। और इतने जल्दी जल्दी आपने जवाब दिया, उसके लिए आपका मतलब हम तालियां तो आपके लिए बनती है। और आपने बहुत अच्छा खेला और बहुत जल्दी बहुत सारे सवालों के आपने सही जवाब दिए, और इस वजह से आप बनते हैं हमारे आज के रेनबो चीरियस। अब आपने इतना समय तो हमें दे दिया है कि हम आपके बारे में थोड़ा और जान सके, कुछ आप कहना चाहते हैं तो वो सुन सके, बताइए अब।
1: जी थैंक यू सर। सबसे पहले तो
0: हाँ
1: आपने जीनियस बनाया मुझे।
0: हाँ आपने खुद ने अपने आप को बनाया, आपने सवालों के जवाब इतनी जल्दी जल्दी और तुरंत दिए कि हमें लगा कि सवाल जल्दी खत्म हो गए, आपके जवाब जो है उससे भी जल्दी आ गए। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और कुछ कहना चाहते हैं चलते चलते लिसनर्स को, तो आप वो कह सकते हैं।
1: आपने शुरू में बोला था कि टाइम कम है, तो थोड़ा फास्ट रिप्लाई किया मैंने।
0: बहुत अच्छा किया आपने, और इसी वजह से हमारे सभी सवाल बहुत आसानी से हो गए। तो लिसनर्स के लिए कोई मैसेज है आपका?
1: मेहनत करें, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है।
0: बिल्कुल, बहुत कम शब्दों में आपने बड़ी बात कही है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, लगातार मेहनत करें क्योंकि मेहनत से हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रेनबो जीनस बने हैं उसके लिए आपको एक बार फिर से बधाई।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, हमें मिल गए हैं आज के इस शो में दो रेनबो जीनियस। एक सवाल से हमारे एक और रेनबो जीनियस बन सकते थे लेकिन रह गए वो, लेकिन आप लोगों के साथ ये सवाल जवाब का सिलसिला जो चला उसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। और आप इसी तरह से एफएम रेनबो सुनते रहे क्योंकि आप तक पहुंचते हैं एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। आपसे थोड़ी देर बाद सिटी लाइट्स में प्रियंका होंगी आपके साथ, और चलते चलते एक गीत आपके लिए, ये वाला, राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यस, दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी धुरंधर। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है सैटेलाइट। सो इन द सिटी व्हाट गोना बी लाइट, ये हम बताएंगे आपको इस पूरे प्रोग्राम में, और साथ साथ आपको डिस्क्राइब भी करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या आप घूम सकते हैं, क्या आपके इंटरेस्ट का है और क्या आपके इंटरेस्ट का, वैसे तो सभी आपके इंटरेस्ट का है, ऐसा बहुत कम ही होता है ना जो आपके इंटरेस्ट का ना हो। फिलहाल जो आपके इंटरेस्ट का है वो मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ आपके अपने रेडियो स्टेशन पर। मूवी तेरी बातों में ऐसे उलझा जी आ गई, ये सॉन्ग विद्रास के बाद में, एंजॉय दिस वन।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट में, हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और जहाँ तक दिल्ली में सबसे स्पेशल चीज़ें होने का वो है ना कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और बल्कि अगर आप देखेंगे ना, आप देश के किसी भी कोने में हो, हर स्टेट में, हर सिटी में कुछ ना कुछ स्पेशल और खास हो रहा होता है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली की बात करें ना, तो ऑफकोर्स अगर यहाँ पर अमृत उद्यान, जो कि

आप जानते ही हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दिल्ली, और अलग अलग फूलों से सजा हुआ एक अलग ही एम्बियंस है, एक अलग माहौल है जहां पर आप जा सकते हैं 15 सितंबर तक। ये अपने जो समर, एक एनुअल समर ओपनिंग होती है, इस दौरान वो खुला हुआ है और सभी के लिए है। सभी वहां पर जाकर अमृत उद्यान को देख सकते हैं, और टाइमिंग वही है जैसा कि आप जानते हैं, सुबह 10 बजे से 6 बजे तक। हालांकि जो ट्यूसडे से लेकर संडे तक आप वहां पर अमृत उद्यान को जाकर देख सकते हैं, लेकिन मंडे को ये क्लोज रहता है, पहले बता दें आपको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इसका, और एक अलग फीलिंग के लिए ना, नेचर के करीब जाने के लिए, प्रकृति के करीब जाने के लिए, मतलब दिस इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, आप जहाँ जा सकते हो। फिलहाल मेरे पास है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग फ्रॉम द मूवी तुम्हारी सिर। एंजॉय दिस वन।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: और इसके अलावा अगर आप देखेंगे नहीं, ये तो सॉन्ग तो है आपके पास आपके अपने रेडियो स्टेशन पर, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी है जो मैं सोचू जल्दी जल्दी आपको दे दूं। एवी इंडिया एक्सपो 2024 का भी बाकायदा आयोजन होना है, जो कि 1 सितंबर से 3 सितंबर तक होगा। मेजर ट्रेड शो होंगे, फोकसिंग ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब बहुत कुछ नया आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका 19th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक है, उसका भी आयोजन होगा 22 से 26 सितंबर तक, और भारत मंडपम में प्रगति मैदान में बाकायदा आप इसका एक तरीके से देख सकते हैं। इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एड्रेसिंग वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, डिफरेंट एक तरीके से जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं, मैनेजमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डेवलपमेंट होता है, ये सभी कुछ आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं जिसका आप हिस्सा बन सकते हो, और फिलहाल आप हिस्सा यस या फिर ये कहिए कि आपके लिए ये है ये खूबसूरत सा सॉन्ग फ्रॉम द मूवी न्यूज।
1: और लोगों के सारे सुनो सुनो स्टार्ट होने लगा

0: नाल सा। न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

तो यहाँ पर प्रोग्राम सिटी लाइट, लेकिन अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का और आपको छोड़े जा रही हूँ खूबसूरत से सॉन्ग के साथ। अरिजीत सिंह की आवाज है एनिमल फिल्म से ये सॉन्ग, लेकिन सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: अरे किसानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूँ ओम, मेरा नाम है ओपी राठौर, आप सभी को नमस्ते प्रणाम हेलो हाउ आर यू। तो फार्म टू सिटी, जैसा कि आपको मालूम ही है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम हर गमले को प्रणाम करते हैं, हर बालकनी के पौधे और छत पे बने गार्डन हो या घर के आंगन में सजी कोई बगिया हो, सभी को प्रणाम करते हुए घर घर हरियाली घर घर खुशहाली का संदेश लेकर आते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में भी ऐसे ही कुछ संदेश लेके आए हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने आपको हनी बी के बारे में बताया था, कैसे हनी बी एक अच्छा करियर है, तो उसी तरह आज के इस अंक में भी कुछ ऐसा होगा जिसका लाभ उठा के आप कहेंगे वाह भाई वाह, मेरा तो फायदा हो गया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में जैविक खाद खुद बना सकते हैं, क्योंकि आपके गमलों के लिए, आपके गार्डन के लिए, आपके किचन गार्डन के लिए सबसे बढ़िया खाद है जैविक खाद। तो जैविक खाद कैसे बनाएं, ये जानकारी इस गाने के उस तरफ हमारे एक्सपर्ट से जानते जाएं।

0: आप सुन रहे हैं फार्म टू सिटी, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक विशेष प्रोग्राम। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे खाद की, वो भी जैविक खाद की। जो वर्ड है ना खाद, अगर इसके साथ आखिर में यह लगा दिया जाए, खाद्य बन जाता है। खाद्य यानी या से यकीन, इस बात का यकीन कि ये खाद काम करेगा और ऐसा काम करेगा कि हमारी बगिया चहक उठेगी, महक उठेगी। या से युक्ति, दिमाग लगाइए। या से योग, आपका आलस हटाइए, मेहनत कीजिए और पौधे पर अपना प्यार उड़ेल दीजिए। तो खाद्य के या में ये तो हो गए इतने सारे या, लेकिन अगर आपने इन सब बातों का करा विश्वास और उन पर अमल किया तो आपके जीवन में ये गाना चल पड़ेगा, यम्मा यम्मा। चलिए मुझे कीजिए क्षमा क्षमा, क्योंकि मेरा काम था इस समय आपको इंट्रोड्यूस कराना हमारे आज के जैविक खाद एक्सपर्ट साहब से। बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान। ये जैविक खाद होती क्या है?
1: जैविक खाद का मतलब है कि जो खाद बनाई जाती है वो खाद ज्यादातर जैविक स्रोतों से ही होती है। जैविक स्रोत का मतलब है या तो ये पौधों के अवशेष होते हैं, पत्तियां अवशेष, जैसे सब्जियां हैं उनके छीलन हो गई, फलों के प्रोसेसिंग के बाद बचे हुए पदार्थ हो गए, और जो पेड़ पौधों की पत्तियां सूखी हरी जितनी भी गिरती हैं, ये सब इनसे अगर खाद बनाई जाती है तो उसे जैविक खाद कहते हैं। इसके अलावा जीवों से प्राप्त जैविक खेती, चाहे पौधे हों या पशु हों, उनका गोबर है, गोमूत्र है, इन

0: सबको मिलाकर हम जो खाद बनाते हैं ये सारी जैविक खादें कहलाती हैं।
1: क्या इसे हम घर में बना सकते हैं?
0: बिल्कुल बनाते हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैविक खेती के लिए जैविक खादों की जरूरत होती है और जैविक खादों को हम ज्यादातर जरूरत पड़ती है, हम देख रहे हैं कि शहरों में गमलों में लोग बहुत सारे आजकल टेरेस गार्डनिंग पे और वैसे भी अपनी बालकनी में पौधों की बढ़वार के लिए खाद को ढूंढते हैं कि कहाँ पे अच्छी खाद मिल जाए, और उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी खराब क्वालिटी की खाद उनको खरीद के कभी कभी ले जानी पड़ती है कि लोग कुछ ऐसे होते हैं कुछ सूखी खाद दे देते हैं, कुछ बिना सड़ी हुई खाद दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है कि हम घर पे खाद बनाएं। घर पे खाद बनाने के लिए आपके पास जो भी जैविक अवशेष उपलब्ध हैं, जैसे घर में कम से कम आधा किलो डेली निकलता है एक छोटे परिवार में अगर देखो, तो सब्जियों की छीलन से लेके फलों वगैरह के जो अवशेष हैं उन सबको लेके हम खाद बना सकते हैं।
1: मतलब आसानी से बना सकते हैं या बाहर से बहुत सारा सामान लाना पड़ेगा सर?
0: इसके लिए कुछ भी बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। इसके तरीके दो हैं। एक तो आप अगर इसको वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहें तो वो भी संभव है, और दूसरे आपको अगर सीधे कंपोस्ट ही बनानी है तो संभव है। तो इसके लिए बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जिसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों से भी ये खाद जो बनती है, तो दोनों ही खादें बहुत अच्छी होती हैं, जैविक खादें होती हैं। लेकिन इनके लिए थोड़ा थोड़ा अगर सही से करना है, जैसे बालकनी में रखना है तो वैसे खुला रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके अलग अलग तरीके के कंटेनर आते हैं छेद वाले, जिनको हम टर्न करते रहते हैं, हवादार होते हैं, इसको खरीद कर और उसमें डेली का उसको हम डाल सकते हैं और उसको एक बार घुमाना पड़ता है, तो इनको लेकर हम बना सकते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग की बात है, उसमें गमलों में भी वर्मी कंपोस्ट बन जाती है। थोड़ी ज्यादा जगह है किचन गार्डन में तो किसी कोने में एक छोटा सा गड्ढा ना बना के ईंटों का एक घेरा बना दें और इसमें करीब 1-1.5 फीट ये मटेरियल डाल के, जो भी आपका आधा सड़ा हुआ मटेरियल है उसमें केंचुए छोड़े जा सकते हैं और बहुत अच्छी खाद बना देते हैं।
1: और क्या खाद बन जाने के बाद उसकी भी कोई उम्र होती है कि 6 महीने में इस्तेमाल करो, 1 महीने में इस्तेमाल करो, नहीं तो वो भी खाद बर्बाद हो जाएगी?
0: खाद का मतलब ये होता है, हम लोग इसको CN रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो के हिसाब से खाद बनी हुई मानते हैं। अब चूंकि ये एक अंदाजे से ही पता चलता है कि आप CN रेशियो तो नापने से रहे, हमारे जो भी इसको बनाने वाले हैं, तो CN रेशियो के लिए हमें अच्छी मशीनें वो लैब चाहिए। हम इसका ये बताते हैं, जब खाद तैयार होती है, अच्छी सड़ी हुई खाद एमोर्फस होती है कि आप उसे हाथ में लेंगे आपको ये पता ना चले किस चीज से बनी हुई है, तब तो खाद सड़ गई है, तो ये तो अच्छी बनी हुई खाद की पहचान है। दूसरी ये है कि कब तक रख सकते हो, जब एक बार अच्छी बन जाती है उसके बाद धीरे धीरे उसमें कार्बन निकल जाता है और नाइट्रोजन रिलीज होती रहती है, तो मतलब धीरे धीरे गुणवत्ता कम होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम हो जाती है। तो इसके लिए लगभग 5-6 महीने तक ये खाद चल सकती है।
1: इसके साथ साथ क्या केमिकल खाद भी, केमिकल उर्वरक या दवाइयां डालने की जरूरत पड़ सकती है?
0: अगर बड़े पैमाने पे बनानी हो तब तो केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल बहुत सारे टीका उपलब्ध है, जीवाणु टीका जिसे कहते हैं, फास्ट डिकम्पोजर या जल्दी डिकम्पोजर या वेस्ट डिकम्पोजर भी उनका नाम होता है, तो अलग अलग कंपनीज उनको बना रही हैं। उन वेस्ट डिकम्पोजर में बैक्टीरिया होते हैं और फंगस होती है, और जो मटेरियल उसको जल्दी खाद बनाने का काम करते हैं। अगर नहीं डाला जाए तब भी प्राकृतिक रूप से वो खाद तैयार होगी, लेकिन वो डाल लेने से थोड़ा और गुणवत्ता बढ़ जाएगी।
1: जी, तो इन सारी बातचीत से हमें ये समझ में आया कि जैविक खाद ही है उत्तम खाद, जिसे आप अपने घर में सीमित साधनों से भी बना सकते हैं और अपनी बगिया को महका सकते हैं। फार्म टू सिटी एक ऐसा कार्यक्रम जिसके प्रायोजक हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और भारत सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिनकी जानकारी भी हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं। ऐसी ही एक योजना जिसका आज हम जिक्र करना चाहेंगे वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है किसानों के घरों को धन और धान्य यानी अनाज की खुशहाली से भरना। देखिए, हमारे देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां किसान भाई मेहनत तो कड़ी करते हैं लेकिन कभी कभी पानी की कमी, पुराने तौर तरीके या पैसों की तंगी की वजह से फसल की पैदावार उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने इस विशेष योजना की शुरुआत की। सरकार ने पूरे देश में ऐसे 100 कृषि जिलों की पहचान की है जहां फसलों की उत्पादकता यानी पैदावार कम है। इन पिछड़े जिलों की तस्वीर बदलने के लिए सरकार अगले 6 वर्षों में 24,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च करने की योजना रखती है। इसकी खासियत यह है कि इसके तहत सरकार के 11 अलग अलग मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है ताकि किसानों को खेती से जुड़ी हर सुविधा एक ही जगह मिल सके। इसके अंतर्गत

मुख्य लाभ क्या होंगे? आधुनिक तकनीक और बेहतर बीज, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, अनाज भंडारण यानी स्टोरेज की व्यवस्था, आसान और सस्ता ऋण। भाई अगर संक्षेप में कहें तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बीज से लेकर बाजार तक और सिंचाई से लेकर ऋण तक हर स्तर पर किसान को आत्मनिर्भर बनाने की एक ठोस कोशिश है। यदि हमारे किसान भाई इस योजना का लाभ उठाकर आधुनिक और विविधीकृत खेती अपनाएंगे तो न सिर्फ उनकी आय दोगुनी होगी बल्कि देश का कृषि क्षेत्र भी एक नए युग में प्रवेश करेगा। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले आइए सुन लें ये।

और अब आज की सक्सेस स्टोरी के अंतर्गत हम आपसे मुलाकात कराने चाह रहे हैं एक ऐसे युवा से जिन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, ऑल थिंग्स अर्बन गार्डनिंग। उनके इस छोटे से स्टार्टअप को भारत सरकार ने उनकी पोटेंशियल को देखते हुए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए बहुत सारी लाखों एप्लीकेशंस में से शॉर्टलिस्ट करके चुना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे युवा से जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से गार्डनिंग को एक सफल व्यवसाय बना दिया है।

0: वो न सिर्फ अपने घर में गार्डनिंग करते हैं बल्कि लोगों को ट्यूटरिंग करते हैं, सिखाते भी हैं और जहां जरूरत हो वहां जाकर गार्डन लगाने में पूरी मदद भी करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं मिस्टर मयंक शर्मा, जिनका स्टार्टअप योजना में सिलेक्शन हुआ है। पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको इस योजना में शामिल किया गया है, और कैसा लग रहा है आपको?
1: हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और सरकार जिस डायरेक्शन में सोच रही है वो बहुत सराहनीय है, इसलिए खुशी बहुत हो रही है। क्योंकि हम जैसे स्टार्टअप जो ग्रीन स्पेस में काम कर रहे हैं, अर्बन स्पेसेस में हरियाली लाने की लिए जो काम कर रहे हैं, अगर सरकार का प्रोत्साहन ऐसे मिलता रहे तो खुशी तो क्यों नहीं होगी।
0: अच्छा, पहले तो ये बताइए कि क्या आप शुरू से ही आप गार्डनिंग में थे या कोई और काम करते थे?
1: गार्डनिंग जो है मेरी शुरू हुई 2015 में, जब मैंने अपने पिताजी को सडन कार्डियक अरेस्ट उनको आया और मैंने खो दिया, और उनको गार्डनिंग पसंद थी तो उनकी मेमोरी में मैंने गार्डनिंग करना शुरू करी। साथ में मेरा कॉर्पोरेट करियर चल रहा था, तो मैं जो है साथ साथ सेल्स की प्रोफाइल में कॉर्पोरेट में काम कर रहा था अलग अलग इंडस्ट्रीज में, और गार्डनिंग मेरी साथ साथ पैशन की तरह चलती रही और इवेंचुअली वो बहुत बड़ी बन गई कि मुझे कॉर्पोरेट से बाहर निकलने का रास्ता भी दे दिया।
0: तो आज आपके गार्डन में क्या क्या चीजें लगाई हुई हैं आपने?
1: जो मेरा टेरेस गार्डन है वो 50% एडिबल गार्डन है। एडिबल गार्डन का मतलब है खाने के सामान लगे हैं उसके अंदर, फल सब्जी इत्यादि, और 50% जो है वो फूल और दूसरे तरीके के पौधे, अलग अलग नायाब पौधे लगे रहते हैं। जो 50% एडिबल गार्डन हमारा जो होता है वो हर 6 महीने में हम चेंज करते हैं सीजन के हिसाब से। तो अभी तो हमारी गर्मियों की सब्जियां सारी तोरी, बैंगन, भिंडी, करेला, कद्दू इत्यादि लगा है, और जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक में पूरी सर्दियों की सब्जियों की हम तैयारी करेंगे। तो उसके अंदर सर्दियों में आप 80% सब्जियां जो खाते हैं वो हमारी छत पे हम ग्रो करते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रॉबेरीज।
0: अच्छा, जब आपने गार्डनिंग की तो आपसे इंस्पायर होके लोगों ने आपसे सवाल पूछा, आपने लोगों को सिखाया, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोग अपने बिजी होने के कारण ये काम नहीं कर पाए। आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं और क्या ये मदद एक व्यवसाय भी बन सकती है?
1: मदद हमारी दो तरीके से रही, कंटेंट के माध्यम से हमने जो लोगों तक अपनी रील्स को पहुंचाया, और वहां से हमने बहुत सारे लोगों को सिखाया कैसे खुद की सब्जियां लगाएं, कैसे खुद के फल लगाएं, कैसे एक छोटे अर्बन स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो वहां से ये कहानी शुरू हुई। इवेंचुअली लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास ऐसे आने लगी कि सर आप समझाते तो बहुत अच्छा है, इसको हम एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं क्या? तो जैसे जैसे ये रिक्वायरमेंट बढ़ती रही हमने समझा कि अब जो है ये फास्ट पेस जीवन जो हो गया है, और फिर हमने अपने जो स्टार्टअप है ऑल थिंग्स अर्बन गार्डनिंग का उसकी शुरुआत करी इसी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए। 1 साल हो गया हमें अपने स्टार्टअप को चलाते हुए दिल्ली एनसीआर में, और हमने 150 से ऊपर स्पेसेस को हरा भरा कर दिया है, इंक्लूडिंग एडिबल गार्डन।
0: आगे की आपकी क्या योजनाएं हैं?
1: आगे की योजना हमारी बहुत सिंपल है, आगे हमें इसको बढ़ाना है अपने स्टार्टअप को, अपने मिशन को। हमारा मिशन ये है कि स्टार्टिंग दिल्ली एनसीआर और फिर अक्रॉस इंडिया, जब शहर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज टेक ऑफ करे या लैंड करे तो छतें जो है ना वो खाली ना दिखे, हरी भरी दिखे, सिंगापुर मॉडल पे हम जाएं, इसका हमारा लार्जर विजन है और हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इसको हम कहते हैं स्केलेबल मॉडल। तो घर घर तक कैसे हरियाली को पहुंचाया जाए ये हमारा स्केलेबल मॉडल है, इस पे हम काम कर रहे हैं और आगे की योजना इसी डायरेक्शन में हम बढ़ा रहे हैं।
0: हमारे युवाओं को कुछ गार्डनिंग टिप्स और करियर टिप देके जाएं मयंक जी।
1: हमारे यहाँ पर रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो मेरी एक ही टिप है, आपके पास छोटी बालकनी है, आपके पास छोटी छत है, आपके पास बड़ी छत है, आपके पास खिड़की है, खिड़की के नीचे खाली जगह है, हर जगह को इस्तेमाल करिए, कुछ ना कुछ हरा, कुछ ना कुछ उगाया जा सकता है आपके शहर में, आपके घर में। और यही मेरी टिप है सबको कि एक बार कोशिश करिए, आप कोशिश करेंगे तो फिर आप इसको जीवन भर करते रहेंगे, ये इतना एडिक्टिव होता है।
0: मयंक जी, एक गाना भी सुनाते हुए जाएं तो कैसा रहेगा?
1: जी बिल्कुल, मैं मुकेश जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उन्हीं का गाना किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये गाना जो है मैं अपने व्यूअर्स के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा।

0: तो दोस्तों आप भी चाहें तो मयंक शर्मा जी की तरह आप भी अपनी गार्डनिंग के शौक को आगे बढ़ाकर अपना करियर बना सकते हैं और अपनी फुलवारी को महका सकते हैं, घर में ऑर्गेनिक फल सब्जियां और फूल उगा करके जिंदगी को खुशनुमा और बेहतरीन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें कुछ आप कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप अपने ये सब बातें हमें लिख भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो है farm2citydelhi@gmail.com। इसमें जो टू है ना, ये न्यूमेरिकल है, अंक वाला। और इसी ईमेल पर हमें दिल्ली की बबीता जी ने अपनी एक ऐसी टिप भेजी है जो उन्होंने अपनी किचन गार्डनिंग के दौरान अपनाई और पाया कि ये टिप काम करती है। चलिए सुनते हैं।
1: वह कौन सी खाद है जो कि मैं 15-15 दिन के गैप में अपने एक्सोरा के पौधे में इस्तेमाल करती हूँ? जब आपने उसको डाल दिया तो 15 दिन के बाद में आपको जो है जो फर्टिलाइजर मतलब जो खाद आपको डालनी है उसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास जो करंट टाइम में रहता है किचन वेस्ट चीजों का इस्तेमाल करती हूँ मैं, बाहर से कुछ परचेज नहीं करती हूँ, तो करंट टाइम में जो रहता है वही डालती हूँ। ज्यादा जो घर में आता है केला आता है तो केले का इस्तेमाल मैं ज्यादा करती हूँ 15-15 दिन के गैप में। तो वो जो है किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आज आपको बताती हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना है, पानी में सोक कर लीजिए और 2 दिन के लिए पानी में आप ऐसे ही रहने दीजिए। बीच बीच में पानी को चलाते रहिएगा, नहीं तो स्मेल आने लगती है। फिर उसे छान के अपने पौधे में इस्तेमाल करिए, इससे जो है फूलों की संख्या और ज्यादा आने लगेगी, बढ़ जाएगी और कलर भी खिल के आता है, साथ में साइज भी काफी बड़ा हो जाता है। तो इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
0: भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी का ये अंक यहीं तक। अगले संडे फिर मिलेंगे कुछ नए गमलों, कुछ नई क्यारियों और कुछ नए बागानों के साथ। तब तक के लिए ओपी राठौर को इजाजत, बाय बाय, टाटा। प्रधानमंत्री

0: श्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

पेशें अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को व्यापक रणनीति साझेदारी के स्तर पर बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री को आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दर्जाली दा प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्रदान हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल्स अभियान में हिस्सा लिया। भारत में बाढ़ प्रभावित नेपाल को 68 टन राहत सामग्री भेजी है और खोज तथा बचाव कार्यों में सहायता के लिए तकनीकी दल, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और उपकरण भेजे हैं। मध्य नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या आज बढ़कर 768 हो गई है। 2500 लोग अब भी लापता हैं। चीन में भारतीय दूतावास ने सूचित किया है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों ने नेपाल में हाल की अचानक बाढ़ में लापता विदेशी नागरिकों की सूचना देने के लिए 24 घंटे चलने वाले अंग्रेजी भाषा में हॉटलाइन शुरू की। उपभोक्ता मामलों में विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश भर में कानूनी और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी लिलिया जुनवाल चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय अनुसार मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। तो ये तो थे हफ्ते के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

भरा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। कैसे हैं आप? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आपसे मुलाकात हो रही है, आपने दिल से याद किया तो हम भी हैं आपके साथ दिल से दिल तक। और आज का बड़ा ही मजेदार टॉपिक लेकर आपके साथ हूं, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स लेकर आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स लेकर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे वीर दमन। और जिन भी दोस्तों ने अभी अभी ट्यून किया तो आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और हमारे कई लिसनर्स भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, लेकिन टॉपिक में आपको बता दूं कि आज जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी जिंदगी से जुड़ा है और

आपने भी कभी ना कभी ऐसे कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा। अब क्या कहा होगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप बच्चे थे स्कूल में थे कॉलेज में थे तो होमवर्क ना करके आने पर टीचर को दिए जाने वाला सबसे अजीब बहाना क्या था? कोई कहता था कि कॉपी घर पर रह गई, है ना, कोई कुछ कहता था। तो सबसे फनी बहाना कौन सा था जो आपने अब तक अपने टीचर को बोला है? या फिर अगर आप अभी भी टीचर हैं तो किसी बच्चे ने आपको बोला होगा कि आज तो मैं होमवर्क नहीं करके आया हूं, या मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। पहले जमाने में बोल देते थे कि लाइट नहीं थी जी, घर पर लाइट चली गई थी, लेकिन अब तो ये भी बहाना नहीं चल सकता, है ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब तक का फनी बहाना किसी ने अगर आपको कहा है तो वो क्या है जब होमवर्क नहीं करके लेके आए, और या फिर आपने कभी ऐसा किया है, आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसी घटना घटी है तो आप भी बता सकते हैं कि वो फनी क्या आपने बहाना मारा था। हाँ हाँ हुआ होगा, अरे बता सकते हो, यहाँ आपको पूरे दिल से दिल की बात आप बता सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नंबर हमारा है 9868107070। जी हाँ, ये नंबर है, अपने नाम और शहर के नाम के साथ अपना जवाब लिखकर भेज दीजिए। और फिलहाल आपके लिए ये ब्यूटीफुल ट्रैक, और हमारे साथ प्रेमचंद प्रेमी जुड़ गए हैं, प्रदीप सलूजा जी इस वक्त जुड़ गए हैं, और भी हमारे कई दोस्त जुड़े हुए हैं, और यश शिंदे जी मुंबई से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। राजकुमार संतानी अकोला महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और सौरभ अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और आप जल्दी से लिखकर भेजिए कि आपने क्या बहाना मारा था।

NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और आज मैसेज मसाला मिक्स में कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं, मैं आपको बताता हूं कि आज जो टॉपिक है वो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, होमवर्क अगर आप कभी नहीं करके गए होंगे बचपन के दिनों में, और बचपन के दिनों में अगर कभी आपने होमवर्क नहीं करके गए और टीचर को आपने क्या बहाना बोला था कि भाई हमारे घर पर लाइट नहीं थी, क्या ऐसा फनी बहाना आज तक का आपने बोला है, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। या फिर अगर आप टीचर हैं तो आजकल भी बच्चे बहाना मॉडर्न हैं, जनरेशन नई है, अल्फा है, और हमारे नए जनरेशन वाले हैं, तो बच्चे उनसे भी पूछ सकते हैं ना कि भाई आपने क्या बहाना मारा है। जो हमारे आज की जनरेशन के बच्चे हैं अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप भी बता सकते हैं कि ऐसा फ़नी बहाना क्या मारा है आपने अभी तक बोला है अपने टीचर को, लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070, अपने नाम और शहर के नाम के साथ लिखकर जल्दी से भेज दीजिए। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेहद अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये भेजा है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशोर ने रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। और सुदर्शना मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि स्कूल का होमवर्क ना करने का बहाना बनाते थे कि नोटबुक खत्म हो गई थी और दुकान भी बंद थी। क्या बात है, क्या क्यूट और सबसे प्यारा बहाना है ना, कि लेकिन टीचर नहीं कहती थी कि नोटबुक जब खत्म होने वाली भी थी आपको पता नहीं था, आप शाम को नहीं ले सकते थे, जाते हुए नहीं ले सकते थे, हमारे टीचर तो अक्सर ऐसे कह देते। एनीवे थैंक यू सो मच हमारे साथ ये लवली जो आपने बहाना शेयर किया है। और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं कि मैं

सर जी, जब 5वीं कक्षा टीचर से होमवर्क नहीं करके करने का बहाना बताया तो मेरे पास पेन नहीं था, मैंने बहाना बताया, और मेरे बहन मुझे दिया ही नहीं, और मेरी बहन ने मुझे पेन ही नहीं दिया, इसलिए होमवर्क नहीं किया था। टीचर जब मेरी बहन से पूछा कि तुमने अपना पेन तुम्हारे भाई को क्यों नहीं दिया, उस पर बहन ने कहा मुझे पेन लिखने मांगा ही नहीं इसने, और ये मेरा झूठ पकड़ा गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो असली कहानी शुरू होगी। और कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिखती हैं, हमारे यहाँ लाइट की बहुत परेशानी होती थी, अभी भी होती है। स्कूल के बाद घर का काम भी करते थे, बहाने की जरूरत नहीं होती थी, मैं कभी भी होमवर्क पेंडिंग नहीं रखती थी। स्कूल की जिंदगी सबसे अच्छी होती थी। स्कूल लाइफ तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है। भागलपुर बिहार से आशीष लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बचपन में स्कूल जाते समय लेट तक सो जाना मेरे सप्ताह में 1-2 दिन का रूटीन था। क्या बात है, सो जाते थे। ओहो, मेरी मम्मी को मेरा होमवर्क इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे स्कूल लाने की बजाय घर की दीवार पर फ्रेम करवा कर टांग दिया। अरे वाह, लिखते हैं प्रकाश शिंदे, क्या इन्होंने यूनिक बहाना बताया। कह रहे कि मम्मी को मेरा होमवर्क इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के बजाय घर की दीवार के फ्रेम करवा कर टंग दिया था। यकीन नहीं तो घर पर फोन करके पूछ लीजिए। क्या बात है सर, स्कूल के दिन याद दिलाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। प्रकाश शिंदे मानखुर्द मुंबई से। अच्छा, तो फिर लेकिन टीचर कहती नहीं थी, मैं भी चलो घर चलती हूँ, मैं भी वो फ्रेमवर्क में देखूंगी आपने ऐसा क्या अपने मोती जैसे अक्षरों से पिरो कर ये होमवर्क लिखा है। थैंक यू सो मच। और जी मैडम जी, मेरा पेट खराब था, ओहो, इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया। बहुत सारे बहाने हैं जो हम बचपन में बोलते थे, तब उस नटखट पल को सोचकर अपने ऊपर हंसी आती है। ओहो, प्रदीप सलूजा जी, जनकपुरी नियर मेजेंटा मेट्रो स्टेशन। क्या बात, पूरा पता भी बताए, है ना, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे आप। अपने टीचर को टाइम का भी याद नहीं है कि बच्चे स्पेशल कौन सा बहाना बनाते थे, क्योंकि रिटायरमेंट को अब अबाउट 20 ईयर्स हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। थैंक यू, एंजॉय कर रही हैं हमारे शो को, थैंक यू सो मच। और ये उज्जैन से भेरूलाल वक्तरिया धाकड़, स्कूल में गृह कार्य नहीं करने का बहाना मैंने बनाया था कि पेन में स्याही खत्म हो गई थी। बहुत बढ़िया, पेन में स्याही खत्म हो गई, उज्जैन मध्य प्रदेश से आपने ये बहाना बताया था। तो टीचर ने कहा नहीं, स्याही खत्म हो गई तो दूसरे पेन से काम कर लेते। अच्छा, एक ही पेन था, ओके। एनीवे, अभी फिलहाल आपसे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद बहानों की लिस्ट रहेगी हमारे साथ, और बारी बारी से हम लोगों के अपने दोस्तों के बहाने पढ़ेंगे, और उसके बाद एक किताब भी पब्लिश करेंगे, है ना। मजाक कर रहा हूँ।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर मैसेज मसाला मिक्स चल रहा है। आप कहाँ हैं? आप भी आइए ना हमारे साथ जुड़ जाइए। जो आपको करना है वो ये है कि आज के टॉपिक पे आपको अपना बताना है कि आपके तरफ से क्या बहाना था। ये बहाना, बहाने की बात हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ कि जब आप छोटे बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तो आपने सबसे प्यारा बहाना, फनी बहाना क्या बताया था टीचर को कि जब आप होमवर्क नहीं करके आए थे। जी हाँ, हुआ होगा ना ऐसा, टीचर को बहाना बताया होगा, बड़े मासूम थे।

बच्चे, बड़े भोले भाले मासूम सा चेहरा बनाकर आप इतना प्यारा बहाना बनाते थे कि टीचर भी समझ जाता था, क्योंकि टीचर भी कभी बच्चे थे। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या फनी बहाना बनाया था जब आप होमवर्क करके नहीं गए थे टीचर को, तो वही आपको लिख कर भेजना है। लेकिन कई हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैं ऑफिस में था तब भी मैंने बहाना बनाया था, तो मेरे बॉस ने मेरे को पकड़ लिया था। तो आपका बगर बॉस भी है, बॉस को आपने कोई बहाना बनाया है तो वो भी आप बता सकते हैं। और छुट्टी लेने के लिए, छुट्टी आपने ली होगी कभी, बॉस ने कहा होगा ना आज छुट्टी नहीं देंगे, तो आपने भी कोई बहाना बताएगा, वो ही बता सकते हैं, ठीक है। और हमारे एक जो लिसनर हैं वो लिख के भेज रहे हैं कि पहले इनका नाम बता देते हैं। नीता अमरावती से लिखते हैं कि मैं तो निकली हूं घूमने और कार में बैठे बैठे आपका प्रोग्राम सुन रही हूं, सोचा मैसेज भी कर लूं। तहे दिल से शुक्रिया, आपने याद किया। मैं तो मेरी जो फ्रेंड अब्सेंट थी ना, जो मेरी एब्सेंट फ्रेंड थी, मतलब स्कूल में नहीं आई थी, आज क्लास में नहीं आई थी, मैं उसका बता देती थी और कि भाई उसको मैंने कॉपी दे दी और मैं पनिशमेंट से बच जाती थी। ऐसा चांस मुझे एक ही बार मिलता था, बिल्कुल वन टाइम ऑफर होता था ना। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपने कोई बहाना बताया है बचपन में जब होमवर्क नहीं किया, लिख के भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और नीर शर्मा झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट झज्जर से, हरियाणा से लिख के भेज रहे हैं कि हमारे स्कूल टाइम में मैथ्स टीचर अक्सर गांव से आने वाले बच्चों की पिटाई नहीं करते थे, सिर्फ सिटी वाले बच्चों की पिटाई करते थे। भाई ऐसा क्यों करते थे, भेदभाव है? उस टाइम गांव में होने का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था, क्या बात। हाँ, कई बार होता ना कि गांव से आते हैं तो टाइम लग जाता है रास्ते में, ठीक है, तो होता था टीचर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे कि भाई इतनी दूर से आ रहा है, तो होता था। तुम और भी कई ऐसे दोस्त हैं। अंशी शर्मा हस्तिनापुर से लिख के भेज रही हैं मेरठ से कि वीरू सर कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप भी बढ़िया होंगे। मैं तो आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूंगी कि सर जब हम स्कूल टाइम में हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता था तो मैं तो बोल देती थी कि मैम वो मेरी नोटबुक घर पर ही रह गई थी। ओहो, घर पर रह गई थी। तो कई बार ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल में टीचर ने कहा कि जाओ घर से लेकर आओ? कई बार ऐसा भी हो जाता था कि उनको पता था ये बच्चे बड़े ढीठ हैं, ये रोज यही बहाना बताता है कि आज लेके ही आ जा। तो हमने भी बहाना बताया। एक हमारे जो लिसनर लिख के भेज रहे हैं कि भाई आप भी बताइए, आपने भी कभी बहाना बनाया होगा? हमने भी डेफिनेटली, हम भी बच्चे थे, हम भी स्कूल गए हैं, तो ऐसा कभी हो सकता है हमने बहाना ना बताया हो? हमने भी बहाना बनाया। मैं भी बताऊंगा आपको प्रोग्राम के थोड़े से बीच में या कहीं एंड में, मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या बहाना बताया था कि जब हम स्कूल का होमवर्क नहीं करके गए थे। और हमारे कुछ और लिसनर भी हैं। अनिल शर्मा सरिता विहार से लिखते हैं कि मैं नौकरी में फनी बहाना बनाया था। नौकरी में? अरे वाह, ये हुए ना आगे शेर के सवा शेर। कहते कि नौकरी में फनी बहाना बनाया था कि साइकिल से गिर गया था इसलिए ऑफिस नहीं आया। उस वक्त बॉस भी मुस्कुराकर पूछ बैठे, कहीं खरोच आई है, दिखाओ। आखिर सच्चाई पता लग ही गई बॉस को और फिर माफी मांगनी पड़ी। अनिल शर्मा सरिता विहार से लिखते हैं, बॉस तो बॉस ही होता है ना, उसने भी कभी बहाना बनाया होगा तो इसलिए पकड़ लेते हैं, बहुत शातिर होते हैं बॉस, इसलिए बॉस से हमेशा बच के रहना चाहिए, है ना। नहीं सर, मेरे घर को, ये क्या है, ये अंशी शर्मा ने लिख के भेजा है, को 10 किलोमीटर दूर था। अरे वाह, इन्होंने लिख के भी भेज दिया कि 10 किलोमीटर दूर था इसलिए मैडम कभी घर नहीं भेजती थी। हाँ, ये भी है कि घर गए तो फिर ये घर में ही बैठ जाएंगे, इसलिए नहीं भेजते होंगे ना। और हिमांशु राणा मेरठ से लिखते हैं, बहाना हमारे घर में मेहमान आ गए थे। क्या बात है जी, मेहमान आ गए थे। रवि जोशी लिखते हैं, मैं होमवर्क को पूरा ना करने का कोई बहाना नहीं बनाता था, जब सच था वही कहता था। मेरी ईमानदारी पर मेरे टीचर, मेरे प्रशासन क्या थे, भरोसा करते थे। रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं, क्या बात है, आपके नाम की कस्में खाते होंगे कि भैया ये कभी झूठ नहीं बोल सकता, है ना, क्या बात है। और नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से लिखते हैं कि हमें तो बहाना बनाया था कि हमारे मास्टर जी को लस्सी बहुत पसंद थी, हमने कहा सर आज लेट इसलिए आए क्योंकि मम्मी ने लस्सी बनाई थी,
रोज लेकर जाता था बोतल भर के टीचर को। अच्छा, और लस्सी के साथ मक्खन भी लगाते होंगे ना टीचर को? ये क्या बात है, टीचर भी कहता होगा अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, क्या बात है, बड़ा फनी बहाना बताया जी आपने, बहुत बढ़िया नरेंद्र सोनी जी। ये अगला मैसेज हम तक पहुंच गया है, गोवा से लिखने वाले नवलू वरक मलपण, जिला उत्तर गोवा से। इस टॉपिक पर यही कहना चाहूंगा सर, मैं तो टीचर की मार की वजह से, ओहो टीचर की मार की वजह से मैं तो मेरा होमवर्क पूरा करके ही स्कूल जाता था, और होमवर्क नहीं किया तो टीचर की मार खानी पड़ती थी। सर मुझे तो, मुझको रेडियो सुनने का बहुत अच्छा लगता है, रेडियो एक ऐसा उपकरण है जो कल भी आज भी सुन सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। और दिल से दिल तक आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। और प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से लिखते हैं, मैंने एक बार बहाना बनाया था कि मेरी प्यारी पोती लवण्य शर्मा की, जो कि 5 साल की है, मैंने उससे पूछा बेटा आपने टीचर का दिया हुआ होमवर्क कर लिया? तो उसने बड़ी मासूमियत से मेरे वाला बहाना ही मुझे मार दिया। अरे बाबा जी, जिस कॉपी पर मैडम जी ने होमवर्क दिया था वो उस बिस्ते में मेरे टिफिन में भी रखा था, और टिफिन के साथ साथ वह कॉपी भी खरगोश उठाकर ले गया, इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। क्या बात है, मेरी मैडम जी से कह दीजिएगा ताकि मेरी पिटाई ना हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे ऐसा होता था, और हम भी बड़े यूनिक बहाने बनाते थे। मैं आपको बताऊं, मुझे याद आया कि मैं जब एक बार होमवर्क नहीं करके गया ना, तो मुझे टीचर ने पूछा भाई वीरधवन आपने होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैंने कहा एक्चुअली मैडम कल ना मेरी कॉपी स्कूल में ही रह गई थी, वो घर जाके मुझे पता लगा वो डेस्क के नीचे रखी रह गई, तो अभी सुबह आके मैंने देखा। अब मैडम भी क्या कहेगी, कहेगी सही कह रहा होगा। हम ऐसे यूनिक बहाने, बिल्कुल उम्दा बहाने निकालते थे ताकि टीचर भी हमें कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल आपने क्या बहाना बताया था बताइए, 9868107070 हमारा नंबर है फिलहाल आपके लिए आकाशवाणी 102.6 पर, दिल से दिल तक।

9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर लाकर भेजिए क्या बहाना आपने बनाया था। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है। जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, और आज का टॉपिक है कि आपने बचपन में कभी होमवर्क नहीं करके गए होंगे स्कूल में, तो आपने क्या ऐसा फनी बहाना बनाया टीचर को, तो वही आपने बताना है। नंबर है 9868107070, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और मैसेज मसाला मिक्स में एक और हमारा बड़ा प्यारा मैसेज आया है, आदिल कुमार ने हमें गन्नौर यूपी से लिख के भेजा है। बहाने से भी क्या बहाना बनाता मैं, खुद बहाना हो गया झूठ बोलता मैं। लिखते हैं कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार, झूठ से बचो, सच का ही इस्तकबाल करो। गन्नौर से आदिल कुमार तस्दीक अली मुजफ्फर अली लिखकर भेज रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब आपने बहुत ही प्यारा मैसेज लिखा है। अनूप कुमार झारखंड से लिखते हैं, क्या बात है, आपने लिख के नहीं भेजा कोई बहाना, लगता है कि कुछ ब्लैंक भेजा है आपने, मतलब कुछ सीक्रेट मैसेज है क्या, कि कौन सा बहाना बताया है। और हमारे कुछ और भी दोस्त हैं जिन्होंने हमें बहाने लिख के भेजे हैं, बहानों की बहुत लंबी लिस्ट लिख कर भेजी है, तो मैं उनके भी बहाने शामिल कर सकता हूँ। और पेट दर्द तो कॉमन बहाना था, है ना। जर्मनी से सनी कपूर लिखते हैं, हमारे घर में मैथ्स में हेल्प नहीं मिलती थी। ओके, तो क्या बहाना बनाते थे, ओहो आहा क्या बात है, हेल्प नहीं मिलती थी।

तो इसलिए मैं सर होमवर्क नहीं कर पाया क्या, ऐसा ही होता था क्या? और भुवनेश अशोक विहार से लिखते हैं, हाउ आर यू सर, टुडे टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट वंस द एक्सक्यूज आई गिव फॉर नॉट डूइंग होमवर्क was that I was celebrating Holi because it was the time of Holi on which I have not done my homework. कहते मैं क्योंकि होली खेल रहा था इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया. लेकिन पूरे साल होली तो नहीं खेलते हैं, पूरे साल होली खेलोगे तो फिर पिटाई झेलोगे, पिटाई. शमसूल कमर राही लिखते हैं गंज डुडवारा से, बचपन कितना प्यारा होता है और बचपन की मासूमियत शरारत भरी. बचपन में एक बार मैं होमवर्क करके नहीं गया था पर अपने हाथ पर फर्जी पट्टी बांध ली थी. ये तो और भी एडवांस वर्जन है. कह दिया कल मैं गिर गया था और हाथ पर चोट गहरी थी इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया, और अगर टीचर ने पट्टी खुलवा ली तो फिर क्या होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा. और प्रदीप सलूजा जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने मैसेज किया है लेकिन आपने लिख के नहीं भेजा कि आपने और क्या बहाना बनाया. जबरदस्त बहाना मारते थे, क्या बात है. अरे जबरदस्त बहाना बनाते हैं तो लिख के भेजिए ना. कौन सा बहाना, कैसा बहाना, जो आपने अभी तक अपनी नौकरी में भी कई बार होते हैं ना दोस्त, छुट्टी लेने के लिए बॉस को बहाना बता देते हैं. तो आप बता सकते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर तमन.

0: विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और 6:50 हो गए हैं। 10 मिनट अभी भी बचे हुए हैं, अगर आप कोई बहाना लिखकर भेज सकते हैं, मेरा मतलब है अगर आपने बचपन में कोई बहाना बनाया है, जब आप होमवर्क नहीं करके गए, टीचर को कोई बहाना स्कूल में बताया ही होगा ना कि आज मैं होमवर्क क्यों नहीं करके आया, तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। 9868107070 हमारा नंबर है और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। और अगला जो मैसेज हमें भेजा है, निधि ने पंचकुला से लिख के भेजा है, एक दिन होमवर्क नहीं किया और सुबह सुबह कॉपी खोलकर ऐसे बैठ गई जैसे रात भर पढ़ाई की हो। मैडम ने कॉपी देखी तो खाली पन्ने देखकर बोली, बहुत सफाई से काम किया है। मेरी एक्टिंग वहीं खत्म हो गई। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत जीनियस थे हमारे जो ये जनरेशन थी ना, बहुत जीनियस थी, क्या बात है। एंड और भी कई बहाने हैं, मेरे को लग रहा है पूरी किताब कम पड़ जाएगी, दूसरा जो है ना वर्जन वो भी निकालना पड़ेगा किताब का। गुद्दू धाकड़ उज्जैन जिले से बेड़वान गांव से लिखते हैं, पेन की इंक खत्म हो गई थी, दुकान बंद हो गई थी, इसलिए होमवर्क नहीं किया। बात सही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और कृष्णचंद श्रीवास्तव धामपुर से लिखते हैं, इस समय मैं अपने प्रिय मित्र प्रेमचंद जी के साथ बैठा हूँ और प्रोग्राम सुन रहा हूँ। क्या बात है जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और विजेंद्र घटोल अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं कि मैसेज सबके अच्छे लग रहे हैं और खाली हमारा नाम शामिल नहीं किया। अरे आपने बताया नहीं कि आपने क्या बहाना बनाया, लेकिन आपका नाम तो शामिल हमने कर ही लिया, तो आप भी बताइए ना आपने अगर कोई बहाना बनाया है विजेंद्र जी, तो आप भी लिख के भेज सकते हैं। और बचपन हर गम से बेगाना होता है, हर खुशी हर गम में बेगाना होता है, आगे की लाइन आपने नहीं लिख के भेजी लेकिन पूरा आप कर दीजिएगा, क्या बात है। और कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिखते हैं, हमारे यहाँ लाइट की बहुत परेशानी होती थी, कभी भी शामिल नहीं होती स्कूल की, आपने मैसेज दोबारा लिख के भेजिया, बहाने की जरूरत नहीं होती थी और मैं कभी भी होमवर्क पेंडिंग नहीं रखती थी, स्कूल की जिंदगी सबसे अच्छी होती थी, मैं हमेशा अपने टीचर से सदा झूठ बोलता था, एक दिन मुझे खूब पिटाई किया उसने और उस दिन से स्कूल जाना छोड़ दिया। नया पारा भिरई बसंत कुमार ठाकुर, बहुत अच्छा किया आपने ठाकुर साहब, स्कूल जाना ही छोड़ दिया, टीचर ने पिटाई की, उसके बाद टीचर ने कहा होगा भैया क्यों ही मारा इसको मैंने। अच्छा भला आ तो रहा था, होमवर्क नहीं कर रहा था ना सही, क्या बात है। ओहो हो, बहुत बढ़िया। और भी कोई है जिन्होंने बहाना बनाया हो, फिलहाल आपके लिए एक ब्यूटीफुल ट्रैक चला रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं किसी और ने अगर कोई बहाना बताया तो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और दोस्तों एक मैसेज आया है जोसेफ जॉन अहमदाबाद से गुजरात से लिखते हैं कि बहाना मारने में मैं बड़ा कमजोर था और टीचर का डोज मिल जाता था, पर ये जरूर देखते थे कि दोस्तों में होमवर्क ना करने के किसने दोस्ती निभाई है। मतलब एक दोस्त ने होमवर्क नहीं किया तो दूसरे ने भी नहीं की, क्या बात है। और 8:30 बजे, जी हाँ 8:30 पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अब मेरा आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। कंठ से मोहम्मद फुरकान लिखते हैं कि अभी लेट जुड़े हैं, लेकिन आपसे वादा है कि हम आगे से जल्दी जुड़ा करेंगे। एनीवे आप आए, आपका तहे दिल से स्वागत है। और दोस्त जिन्होंने भी हमें मैसेज भेजा है, एक और मैसेज आया है हमें भेजा है निहार वेस्ट बंगाल से, और ये है मारो गरम बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिख के भेजा, लेकिन कोई बात नहीं। और अब मेरा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है और 8:00 बजे आपसे मुलाकात होगी। 8:30 पर प्रोग्राम, जी हाँ म्यूजिक मस्ती लेकर आपके साथ रहूंगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। और ज्योति अहलावत आपके साथ रहेंगी अगला वेस्ट।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर धवन। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर

या यू आर इन लव, वी आर ऑल्सो इन लव. हमारे लिसनर्स जो है ना, उनका प्यार ही इतना होता है कि हम रह भी नहीं पाते. आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर चल रहा है म्यूजिक मस्ती, और हमारे साथ कई हमारे लिसनर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हमारे साथ प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी से जुड़े हुए हैं, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, अनूप कुमार झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे कई और ऐसे प्यारे लिसनर्स हैं जो इस वक्त हमारे को न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं. तो फिलहाल एक और ब्यूटीफुल ट्रैक म्यूजिक मस्ती में, और आवाज़ है आशा भोंसले की, फिल्म तक्षक.

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अगला प्रोग्राम ताहिर हसन लेकर आपके साथ रहेंगे। आपकी याद आती रही 9 बजे और 11 बजे आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे ताहिर प्रोग्राम रंगे महफिल लेकर। अब अपने दोस्त आरजे वीर दमन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा। और चलते चलते इतना ही कहूंगा कि दूर नजरों से हो सकते हैं, दिल से कहां जाओगे ए जाने वाले, जरा सुनो तुम बहुत याद आओगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा। बाय एंड टेक केयर।

आह्वान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार का जश्न मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान NIFT के दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेगी। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 781 हुई। अब तक 149 भारतीय को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। चीन में भारतीय दूतावास ने सूचित किया कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से के अधिकारियों ने नेपाल में हाल की अचानक बाढ़ में लापता विदेशी नागरिकों की सूचना देने के लिए 24 घंटे चलने वाली अंग्रेजी भाषा में हॉटलाइन शुरू की। उत्तरी जिला पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी मादक पदार्थ शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के तहत 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उड़ीसा में फिर से मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कम दबाव के क्षेत्र बनने से बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ रहा है। और भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगी। भारतीय समय अनुसार मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। ये थे अब तक के FM मुख्य समाचार।

जनाब, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, कैसे हैं आप? आज का प्रोग्राम शुरू होता है तो एक सवाल से शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। आपके फोन में देखिएगा कोई ऐसी चीज है जिसे देखते ही चेहरे पर बहुत अपने आप मुस्कुराहट सी आ जाती है, है ऐसा कोई फोटो हो, कोई मैसेज हो, या शायद कोई ऐसा नाम जिसे देखते ही मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है? थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। बस इसी छोटी सी बात में आज प्रोग्राम का पूरा है एहसास छुपा हुआ है। देखिएगा, एहसास होगा आहिस्ता आहिस्ता आपको। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फिर एक गाना बजता है और अचानक वही पुराना एहसास बिल्कुल नया सा लगने लगता है। हम आपके साथ आए और आप सुन रहे हैं आपकी याद आती रही आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है जनाब दिल से दिल तक। तो चलिए आज के गीतों को साथ ही कुछ ऐसे ही पलों को साथ जीते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर से अपने पास बुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे पास आ जाए ना जो हमारे दिल में छुपा हुआ है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही। आपने कभी नोटिस किया है कि किसी खास इंसान से बात करने के बाद हमारा मूड बिना किसी वजह से अच्छा हो जाता है? किया है कभी नोटिस ये बात? ना कोई बड़ी बात हुई, ना कोई खास टॉपिक था, बस थोड़ी सी गुफ्तगू और दिन का रंग बदल गया। शायद कुछ लोग अपने साथ एक अलग ही सुकून लेकर चलते हैं।

जनाब तो टॉपिक वापस लौटते हैं, अलमारी खोलते वक्त कभी कोई पुरानी चीज हाथ लग जाए तो उसे तुरंत वापस मत रखिएगा, दो मिनट उसे देखते रहिए, हो सकता है उसे उसके साथ जुड़ी कोई छोटी सी बात, कोई छोटी सी कहानी आपको फिर से वही वक्त दिखा दे। अजीब है ना, चीज वही होती है मगर उससे देखने वाले इंसान बदल चुके होते हैं। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई वक्त था, आपने कोई गीत सुना, कोई गाना सुना और वो आपके दिल को छू गया। उसके बाद 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए या 20 साल गुजर गए और दोबारा आपने वही गाना कहीं पर सुना तो उसी वक्त आपको वही टाइम याद आ जाता है, चाहे वो अच्छा हो या वो कहीं बुरा हो। नहीं, अच्छा ही होना चाहिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
7: आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ, यह प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ। ताहिर प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही एफ एम रेनबो दिल से दिल तक। किसी का नाम सुनते ही अगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए तो उसकी वजह ढूंढने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। कुछ रिश्ते एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते, बस एक नाम पूरी कहानी आपके सामने। इसी को शायद अपनापन कहते हैं। बताइए, कहते हैं या नहीं कहते हैं?

0: कभी किसी रास्ते पर जाते हुए अचानक गाड़ी धीमी पड़ने लगी। मन हुआ इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने का मंजर कुछ जाना पहचाना सा लगा। ऐसे पल बता देते हैं कि हमने जिंदगी में कितना कुछ देखा है और कितना कुछ अभी भी दिल के पास है ना? कभी हुआ हो तो बताइएगा। आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक आपकी याद आती रही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। ताहिर आप लोगों के बीच में हैं और एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद बहुत जल्दी वापस आएंगे आपके गीतों के साथ।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी एफएम रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार एफएम रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से

0: बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जनाब, कुछ लोग आपकी जिंदगी में बड़े बड़े वादे कर लेकर नहीं आते, बस छोटी छोटी फिक्र लेकर आते हैं। खाना खा लिया, घर पहुंच गए, थके तो नहीं, और धीरे धीरे ये छोटी बातें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। हकीकत बात यही है ना?

तो जनाब आज की ये मुलाकात फिलहाल यहीं रोक देते हैं, क्या करें, मजबूरी है, रोकनी पड़ेगी, वक्त की घड़ियां यानी कि सुइयां कह रही हैं कि जाओ फिलहाल। मैं हूं ताहिर और दिल से शुक्रिया आपका इतनी देर तक साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए खास तौर पे। लेकिन रात अभी बाकी है जनाब, रात 11 बजे मुलाकात होगी रंगे महफिल में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।

0: We're heading in for a very short little break. Dear listeners, stay with us because there are lots and lots on the other side of the break.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली।

लीजिए पेश हैं एफएम पर अब तक के मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीति साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में छात्राओं की भागीदारी और कृषि नवाचार का जश्न मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी

देने के लिए 24 घंटे तक चलने वाली अंग्रेजी भाषा में हॉटलाइन शुरू की। दिल्ली में उत्तरी जिला पुलिस ने 72 घंटों के अंदर ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी मादक पदार्थ शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के तहत कुल 154 मामलों में 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उड़ीसा में फिर से मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बंगाल की खाड़ी में के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम दबाव के क्षेत्र में बनने से बारिश और नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी ललियान ज्वाला चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम। इंसान और अल्फाज का रिश्ता बहुत पुराना है। जो बात हम सामने बैठकर नहीं कह पाते, अक्सर एक शेर कह पाता है। शायद इसी वजह से शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं, एक हुनर है। इंसान को समझने का एक तरीका भी है। एक मिसरा कभी पूरी जिंदगी का तजुर्बा समेट लेता है और एक गजल कभी बिना किसी के नाम लिए बहुत कुछ कह जाती है। मैं हूं आपके साथ ताहिर और आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं रंगे महफिल, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है दिल से दिल तक। आइए आज इस महफिल में कुछ ऐसे अल्फाजों के साथ चलते हैं जहां हर बात का अपना एक रंग है।
2: हुजूर आप कभी

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप सुन रहे हैं रंगे महफिल। आज की जिंदगी में हमारे पास बात करने के जरिए बहुत हैं, लेकिन दिल की बात कहने का वक्त शायद कम होता जा रहा है। मैसेज भेजना आसान है, कॉल करना आसान है, लेकिन किसी के सामने बैठकर उसकी बात पूरी सुनना अब एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। रिश्तों की बहुत दूरियां बढ़ गई हैं, मगर उन्हें गहराई सिर्फ वक्त देता है, वक्त देता है।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। गालिब का एक शेर है, दिल ही तो है ना संगो किश्त, दिल ही तो है ना संगो किश्त, दर से भर ना आए तो क्यों। कितनी सीधी सी बात है, लेकिन इसमें इंसान को की पूरी फितरत छुपी हुई है। हम कितना भी खुद को मजबूत समझ लें, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो अंदर तक असर करती हैं। और शायद मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस ही ना हो, बल्कि ये है कि दर्द के बावजूद इंसान अपनी जिंदगी को आगे ले जाए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रंगे महफिल। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम चीजों में खुश रह लेते हैं। उनके लिए बड़ी खुशी का मतलब हमेशा बड़ी चीज नहीं होता। घर में सब ठीक हो, किसी अपने की आवाज सुनाई दे जाए और दिन बिना किसी बड़ी परेशानी के निकल जाए। शायद सुकून की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होती है और जो अपनी डेफिनेशन समझ ले वह आधी जिंदगी की उलझन से बच जाता है। बहरहाल रफी साहब की आवाज में एक बेहतरीन गजल आपके सामने है।

एक छोटी सी बात और, हम अक्सर लोगों के चेहरे देखकर उन्हें उनका हाल का अंदाजा दिल से लगा लेते हैं, लेकिन चेहरा पूरी कहानी नहीं बताता जनाब। कोई बहुत खुश नजर आ सकता है और अंदर से परेशान भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ी नरमी, थोड़ा सब्र और दूसरों को समझने की कोशिश कभी जाया नहीं जाती। इंसान को समझना हो तो सिर्फ उसकी बात नहीं, उसके लहजे को भी सुनना पड़ता है और समझना पड़ता है।

0: पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ ताहिर, प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा, जिसे हम कहते हैं रंगे महफिल। कहते हैं ना, वक्त एक अजीब उस्ताद है जी। जो बात आज समझ नहीं आती, कभी सालों बाद उसका मतलब अपने आप खुल ही जाता है। कुछ फासले उस वक्त गलत लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये ठीक थे। उसके लिए रास्ते भी तैयार हो जाते हैं, इसलिए हर मुश्किल को सिर्फ मुश्किल समझना जरूरी नहीं होता है। हो सकता है वो जिंदगी का एक सबक हो जो अभी पूरा समझ में नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा।
10: अभी न जाओ छोड़ कर,

तो जनाब आज की रंगे महफिल अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई है। कुछ गजलें सुनी, कुछ बातें हुई और कुछ अल्फाज शायद अपने साथ ले जा रहे होंगे आप, मैं भी लेके जा रहा हूँ। महफिल का वक्त बोलने भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन अच्छे अल्फाज अपना सफ़र थोड़ी जल्दी ख़त्म नहीं करते। मैं हूँ ताहिर और आपका दिल से तहे दिल से शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक नई रात और एक नए सफ़र नए सांसों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और शब बख़ैर, और ख़ास तौर पर उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।

रात्रि के 12 बजे हैं, प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीति साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राज्य के सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में छात्राओं की भागीदारी और कृषि नवाचार का जश्न मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2026-27 में 7% या उससे अधिक की आर्थिक विकास दर बनाए रखने में सक्षम है। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 781 हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। भारत से भेजे गए विशेष सुरंग बचाव दल ने आज नेपाली सेना के साथ मिलकर चिलीमे और लॉन्गटोंग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। चीन में भारतीय दूतावास ने सूचित किया है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के

महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप स्तर के मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया और बल्लेबाजी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: रात्रि के 12:03 और 47 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम जीरो आवर शो और मैं हूं एसएम शरीफ की। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब।
2: हाय, सो वी मीट अगेन। अजीब इत्तेफाक है, आई मीन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। बट आई हैवंट सीन यू अराउंड योर एनीवेज, इट वाज नाइस टू मीट यू।
3: कौन है आप?
2: इस कनीस को, मेरा मतलब है इस नाचीस को, राज चोपड़ा कहते हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: What a beauty! आपका क्या ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: Point noted, Mr.
1: रोहित।
0: Mr.
1: रोहित।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

रात्रि का 1 बजा है। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीति साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में छात्राओं की भागीदारी और कृषि नवाचार का जश्न मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2026-27 में 7% या उससे अधिक की आर्थिक विकास दर बनाए रखने में सक्षम है। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 781 हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। भारत से गए विशेष सुरंग बचाव दल ने आज नेपाली सेना के साथ मिलकर चिली में और लोंगटोंग क्षेत्र की जल विद्युतीय सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। दिल्ली में उत्तरी जिला पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी, मादक पदार्थ, सशस्त्र तथा जुआ अधिनियम के तहत कुल 154 मामलों में 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान के कोटा से हिमांशु भाऊ सिंडिकेट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास तथा फायरिंग के कई मामलों में वांछित और इनामी अपराधी घोषित थे। ओडिशा में फिर से मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप स्तर के मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1

आपकी वाणी आकाशवाणी। 1:03 हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आए हाय।
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: गुले गुलजार रुक जा, ओ हरे दुपट्टे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीति साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में छात्राओं की भागीदारी और कृषि नवाचार का जश्न मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2026-27 में 7% या उससे अधिक की आर्थिक विकास दर बनाए रखने में सक्षम है। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 781 हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। भारत से गए विशेष सुरंग बचाव दल ने आज नेपाली सेना के साथ मिलकर चिलीमे में और लोंगटोंग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। दिल्ली में उत्तरी जिला पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी मादक पदार्थ शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के तहत कुल 154 मामलों में 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान के कोटा से हिमांशु भाऊ सिंडिकेट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास तथा फायरिंग के कई मामलों में वांछित और इनामी अपराधी घोषित थे। ओडिशा में फिर से मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दुबई में एशियाई कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप स्तर के मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मानो।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगी। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: Get lost।
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ नहीं मानो, जो करना कर ले। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
1: राजा। ठीक है।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान की ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2026-27 में 7% या उससे अधिक की आर्थिक विकास दर बनाए रखने में सक्षम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 781 हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। भारत से गए विशेष सुरंग बचाव दल ने आज नेपाली सेना के साथ मिलकर चिले में और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में CID ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। दिल्ली में उत्तरी जिला पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी मादक पदार्थ शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के तहत कुल 154 मामलों में 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार ने ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल पर अब तक लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरे का प्रसंस्करण कर 100 एकड़ भूमि को कचरे से मुक्त कर दोबारा उपयोग के लायक बनाया है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बालेश्वर, क्योंझर और म्यूरभंज में वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में ग्रुप स्तर के मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2026-27 में 7% या उससे अधिक की आर्थिक विकास दर बनाए रखने में सक्षम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 781 हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। भारत से गए विशेष सुरंग बचाव दल ने आज नेपाली सेना के साथ मिलकर चिली में और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। अमेरिका ने आज होर्मुज़ जल डमरू मध्य में ईरान के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया। करीब एक महीने में अमेरिका की यह पहली सैन्य कार्रवाई है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि लारक द्वीप पर अमेरिकी हमले में उसके कई जवान और नागरिक मारे गए तथा अन्य घायल हुए हैं। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में CID ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। दिल्ली सरकार ने ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल पर अब तक लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरे का प्रसंस्करण कर 100 एकड़ भूमि को कचरे से मुक्त कर दोबारा उपयोग में के लायक बनाया है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बालेश्वर, क्योंझर और म्यूरभंज में वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में ग्रुप स्तर के मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया और जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी एफएम रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर जुड़े रहिए हमारे अगले प्रोग्राम सारेगामा के साथ और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला।

0: सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ प्रातः 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में भाग लेंगी। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। कल 5वें दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। इस बीच त्रिशूली नदी में कल आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया। अमेरिका ने आज होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया। करीब एक महीने में अमेरिका की यह पहली सैन्य कार्रवाई है। ईरान ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया कि लारक द्वीप पर अमेरिकी हमले में उसके कई जवान और नागरिक मारे गए तथा अन्य घायल हुए हैं। झारखंड में JSSC CGL परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में CID ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बालेश्वर, क्योंझर और म्यूरभंज में वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में ग्रुप स्तर के मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया और जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 5:04 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।